नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपकी आवाज में, सिर्फ और सिर्फ वागर रेडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं दिन का ये खूबसूरत सफर हर रंग के साथ में। साथियों, सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना आप सुन पाएंगे। हर सुबह की शुरुआत हो ईश्वर के नाम के साथ। आरती, भजन और मन को शांति देने वाला ये कार्यक्रम समर्पित है आराधना को। तो जुड़िए प्रभु स्मरण में और कीजिए अपने दिन का शुभारंभ। इसी के साथ साथियों, अगला कार्यक्रम है 6:30 पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। किसान हमारे अन्नदाता है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की सलाह, ताकि खेत भी मुस्कुराए और अन्न भंडार भी भरे। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी के मैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है सच्चा बचपन। इसे आप सुन पाएंगे 7 बजे। श्रोताओं, बचपन की कहानियाँ, नैतिक शिक्षा और बच्चों के लिए मनोरंजन का खजाना, प्यारे नन्हे श्रोताओं के लिए एक खास कार्यक्रम जहाँ हंसी, ज्ञान और संस्कार साथ चलते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। आप सुन पाएंगे 7:30 पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज को, युवा शक्ति देश की असली ताकत। इस कार्यक्रम में उठेंगे युवाओं के मुद्दे, मिलेंगी करियर गाइडेंस, मोटिवेशंस और नए विचारों को मंच। जुड़िए और बनिए बदलाव की आवाज में। इस कार्यक्रम को लेकर आती है आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी के मैं। अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8 बजे सच्चा स्वराज। जी हाँ साथियों, स्वराज सिर्फ राजनीतिक नहीं, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में सुनिए स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और जानिए आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी के मैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे 8:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आप सुनेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास, लोक संगीत में बसती है हमारी आत्मा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों ढोलक, बांसुरी और मंजीरी की ताल पर झूमने के लिए। अगला कार्यक्रम सुन पाएंगे 9 बजे हमारा स्वास्थ्य। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर। साथियों, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, इस कार्यक्रम में जानिए घरेलू नुस्खे, डॉक्टरी सलाह और योग से जुड़ी बातें और खुद को रखिए तंदुरुस्त हर रोज। आगे बढ़ते हुए सुनेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे आप सुन पाएंगे 9:30 पर और इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। साथियों, आपको कार्यक्रम की रूपरेखा तो बता ही रही हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे 10 बजे और 10 बजे कार्यक्रम आता है हमारी बात आपके साथ। साथियों, ये कार्यक्रम समाज के मुद्दे, संवाद का एक मंच। आप कहिए हम सुने, क्योंकि आपकी बातों में है वो ताकत जो बदलाव ला सकती है। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 10 बजे और इसे लेकर आएंगे हमारी रेडियो साथी। दोपहर 11 से 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। आपकी फरमाइश सिर्फ आपके नाम, आपके पसंदीदा गानों की फरमाइश आपके संदेशों के साथ। आप अपने संदेश हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234 और आप अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं वागर रेडियो 90.8 FM पर। श्रोताओं, बजेंगे वही गाने जो आपके दिल की धड़कन है। तो जुड़े रहिए वागर रेडियो पर, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज है सबसे खास। तो श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

0: भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमारा वारा हंग्र किसान भाई बोनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हामरी रहो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणे मान स्वागत करा हूं अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की किसान भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी ज कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो आज हमारी अब तक की बातचीत नु विषय है कि आपड़े जे किसान भाई बोन है ई जलवायु परिवर्तन में प्राकृतिक जे ऊर्जा स्रोत है एना नु महत्व हरते हमसे। किमकी आपड़े देख हां कि आपड़े जे परिवर्तन थे रू है इनमें घणी एवी चीजें हैं जे जिम्मेदार हैं। तो आपड़े हरते हमस जे प्राकृतिक स्रोत है एना ने माध्यम तकी आपड़े जे आ जलवायु परिवर्तन थे रू है एने थावा तकी रोकी शका। तो आज आना विषय माते अमारी अब तक की कार्यक्रम खेतीवाड़ी में घणा आकानी वाते थाएंगा। पण कार्यक्रम शुरू कर इन्हे पहले आपने हमरा विदा गीत मोरे कर आपड़ी वाते। तो किसान भाई बोन आप हांभरता रहेजो आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: किसान भाई बुन गीत तो आई शुपुरु ने अणगीत बात एक वगत फेरी आप सबनु घणे मान स्वागत करह अमारे आज ने कार्यक्रम खेती वाड़ी में। जेम की किसान भाई बुनो अमे अपने गीत की पहले विषय बता दीदू तू के आजे अमे बात करवा वारा हूँ की आ जलवायु परिवर्तन में अपने जे प्राकृतिक स्त्रोत है एना नु हूँ महत्व है। तो आना विषय माते जानकारी आलवा बल्ले आज अपने स्टूडियो में पधार्या है श्रीमान प्रमोद जी रोकड़िया साहब। तो सप्ते की पहले अपने हमरी लड़ना नी बातें मोरे करा अपनी बातें। सर नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: वागड़ रेडियो के सभी श्रोता बंधुओं आपका बहुत बहुत नमस्कार।
0: सर जैसा कि आप जब भी हमारे किसान भाई बहनों से कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो खेती से लेकर हमारे पर्यावरण से लेकर ढेर सारी जानकारी आप हमारे किसान भाई बहनों को देते हैं। तो आज कार्यक्रम में आज हमारी आपसे बातचीत का विषय है कि जलवायु परिवर्तन में प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत जो होते हैं उनका क्या महत्व है और हम कैसे इसके महत्व को समझ सकते हैं।
1: किसान भाइयों, जैसा अपन बात कर रहे हैं कि आज प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में अपन बात करेंगे, प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत या कैसे है उसको अपारंपरिकत जो ऊर्जा स्रोत है
0: जी जी,
1: तो उनके बारे में कि वो कौन कौन से होते हैं और उसके लिए अपना क्या महत्व है ऊर्जा का जो
0: जी जी।
1: तो पहले तो ये देखेंगे अपन पारंपरिक क्या है
0: जी, बिल्कुल सर,
1: है ना, और अपारंपरिक क्या है। पारंपरिक तो अपन जैसे कह रहे हैं ऊर्जा में जैसे हम कहते हैं लाइट है
0: जी जी,
1: तो ऊर्जा लाइट बनती है तो उसके कई तरह से बनती है जिसमें कि वो कोयले का खर्च होता है और कंबरसम होता है, ईंधन का जलाव होता है और जलवायु का नुकसान होता है
0: जी, बिल्कुल सर।
1: तो ऐसे स्रोतों का पता करना कि जिसमें जलवायु का कम से कम नुकसान हो या बिल्कुल नुकसान ना हो और हमारी ऊर्जा भी पैदा हो जाए
0: जी, बिल्कुल,
1: यानी लाइट भी पैदा हो जाए और कोई पर्यावरण को नुकसान ना हो
0: जी, बिल्कुल।
1: तो पर्यावरण क्योंकि अपन कहते हैं जलवायु से संबंधित है, तो जलवायु को अगर बचाव करना है तो हम ऐसे ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करें जिसमें कि जो अपना पर्यावरण है उसका बिल्कुल भी बिगाड़ना
0: जी, बिल्कुल।
1: तो इस तरह के ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर हमारी जो दैनिक आवश्यकता है, खेती की आवश्यकता है और हमारे जो फसल

0: उत्पादन के लिए, जल के लिए, पानी सिंचाई के लिए, इनकी जो उत्पादन उस करने की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए जो अपने स्रोत उपयोग कर रहे हैं, तो उसके बारे में आज अपन बात कर रहे हैं। और अभी अपन देखते हैं कि भाई इनके क्या फायदे होते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: परंपरागत अभी अपन बात कर रहे हैं, तो ये क्या है कि अपन जैसे प्रकृति में जो बिल्कुल मुफ्त मिलते हैं, कि जैसे अपन बात करें लाइट की, सोलर लाइट, सोलर यानी सूर्य का प्रकाश, इसके कोई पैसे देने नहीं पड़ते अपने को।
1: जी बिल्कुल,
0: ये तो हमेशा अपने सूरज तो मिलता ही है। अगर सूरज प्रकाश के देखेंगे तो साल के अंदर 300 दिन सूरज का उगता है।
1: जी बिल्कुल,
0: और 300 दिन तक सूर्य का प्रकाश हमें प्राप्त होता है।
1: जी बिल्कुल,
0: तो अगर उस सूर्य के प्रकाश को हम प्राप्त करके ऊर्जा में इसको परिवर्तित करें तो वो हम फायदा ले सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: फिर दूसरा इसका फायदा ये होता है कि हमारे जो प्रदूषण की समस्या है, जिसे अपन कहते हैं पॉल्यूशन, प्रदूषण, जिससे कि कई बार हमारे वातावरण में भी विकार होता है, जलवायु का परिवर्तन का कारण भी है, हमारे जो शारीरिक जो बिगाड़ होते हैं वो भी प्रदूषण के कारण होते हैं, जैसे धूल मिट्टी और जो जहरीली वायु होती है, जो हमारे गैसेस होती है या जो हमारे रसायन तत्व हैं, इनकी वजह से कुछ प्रदूषण होता है जो हमारे शरीर को भी विकार करता है।
1: जी बिल्कुल सर,
0: और साथ साथ हमारे जो वातावरण को भी विकार करता है। वातावरण को बिगाड़ने से हमारी फसलों में, जो हमारे मौसम के परिवर्तन, ये सारे कारण बन जाते हैं इस प्रदूषण की वजह से।
1: जी बिल्कुल,
0: तो ये जो प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है ये प्रदूषण का जो समस्या है उसको कमी करते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: मतलब क्योंकि ये जो हमारे क्योंकि स्थानीय वातावरण से संबंधित होते हैं तो उसमें प्रदूषण बिल्कुल लगभग नहीं होता।
1: जी बिल्कुल,
0: और तीसरी जो बात अपन कहते हैं कि भाई इसमें क्या होगा कि जो महंगी ऊर्जा है, अभी अपन जैसे लाइट की बात करते हैं तो लाइट से हमारा बिजली जो आती है हमारे बिजली घर से आती है, और बिजली घर से आकर हम हमारे घर की जो लाइटें और जो रेडियो टीवी और जो उसका भी उपयोग करते हैं, साथ में हमारे खेती की जो सिंचाई के लिए मोटर चलाना और ये पंप वगैरह चलाना और वो सब का उपयोग करते हैं।
1: जी जी।
0: लेकिन जो बिजली बनती कहाँ से, तो बिजली बनने के लिए तो हमें कोयले को लाना पड़ता है।
1: जी बिल्कुल,
0: कोयले से बनती है, पानी से बनती है, तो इस तरह से जो बिजली कोयले से बन रही है ना, थर्मल बिजली जैसे अपन कहते हैं ना, तो कोयले का जलाना और कोयले से बिजली प्राप्त करना, कोयले को उपयोग करना, कोयला हमारे यहाँ होता नहीं तो उसके लिए हमें कोयले की खदानों से उसको मंगवाना, तो इसमें पूरा जो हमारा जो ऊर्जा को बनाने का काम है वो महंगा
1: हो जाता है। जी बिल्कुल,
0: तो इस महंगे ऊर्जा से बचाव के लिए हमें अपना जो प्राकृतिक स्थानीय स्रोत है उसका उपयोग करते हुए बनाए जाते हैं।
1: जी जी।
0: और इस तरह से जितने भी हमारे स्थानीय स्रोत हैं तो इनको उपयोग करके जो भी हमारी ऊर्जा की खपत जो हमारी आवश्यकता है उसके उपयोग कर लें, तो वो हमें कहते हैं कि ये अपरंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है उनका उपयोग करके हमारी ऊर्जा का बनाना।
1: जी बिल्कुल,
0: तो इस तरह से ये काम किया जाता है।
1: जी बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा। जैसा कि सर आपने बताया कि प्राकृतिक तरीके से जो ऊर्जा स्रोत जो होते हैं अगर उनको हम काम में लेते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि वो हमारी प्रगति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन जैसा कि सर आपने बताया कि अगर हम कोयले की खदानों वगैरह से कोयला मंगा कर उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महंगा भी हो जाता है, और साथ ही हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण हम बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं। तो इसके चलते प्राकृतिक तरीके से जो ऊर्जा स्रोत हमें मिल रहे हैं तो उसका उपयोग करना हमारे लिए ज्यादा लाभकारी होगा।
0: बिल्कुल, और अपन जब बात करेंगे प्राकृतिक स्रोत तो कौन कौन से होते हैं, ये भी अपन बात करेंगे। जैसे अपन कोयले को जान रहे हैं, कोयला अपने यहाँ होता नहीं और कोयले को अपन मंगाना पड़ता है जो खदानों से निकलता है।
1: जी जी।
0: उसको लाना, पहले तो निकालना खदानों को, खदानों का दोहन करना, उसका बाद में वहां से ट्रेनों द्वारा या जो भी हमारे परिवहन के साधन है उससे लाना और फिर यहाँ पर ऊर्जा बनाना, तो ये और उसमें हमारा जो ऊर्जा बनाने के साथ में जो वातावरण का बिगाड़, प्रदूषण होना, क्योंकि वो जलेगा कोयला तो वातावरण में जो गर्मी और उससे होकर हमारा जो स्थानीय जो वातावरण बिगड़ेगा और जलवायु परिवर्तन में वो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है।
1: जी बिल्कुल,
0: तो इसके मुकाबले जब हम देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन से ऊर्जा बनाए तो कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: तो जैसा अपन पहले ही बात की, एक सोलर ऊर्जा यानी सूर्य ऊर्जा
1: है ना,
0: तो सोलर की ऊर्जा से अपन बनाते हैं। जैसे अपन कई बार देखते हैं कि सोलर की ऊर्जा के जगह जगह प्लांट लगे हुए हैं, आजकल तो बहुत चलन में आ रहा है कि छतों के ऊपर लगाया जाए, सोलर प्लेट लगाई जाए, तो इस तरह की एक सोलर ऊर्जा होती है। एक होती है पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे अपन देखते हैं पवन चक्कियां, अपन बचपन में पढ़ते भी थे, और पवन चक्कियां जो होती है वो पवन ऊर्जा बनाने का काम करती है, जिसमें क्या है कि हवा जो होती है, हवा जो चल रही बह रही है तो उसका एक गति होती है, उसका एक वेग होता है, तो उस वेग का उपयोग करते हुए उसकी जो पंखे है वो चलाए जाते हैं, और पंखे चलाने से टर्बाइन के द्वारा जो है वो ऊर्जा का निर्माण कहते हैं। तो जो उसको कहते हैं हम पवन ऊर्जा। अब क्योंकि पवन जो है जरिए हवा है उसका तो कोई लागत नहीं लगती।
1: जी बिल्कुल,
0: ये तो प्रकृति में है, इसके तो कोई खर्चा नहीं आता। जैसे अपन सूरज की बात करें, सूरज पूरे साल के अंदर 300 दिन चमक रहा है
1: जी जी।
0: और उसका उपयोग वो सूरज कभी मना नहीं करता कि मेरे से क्या ऊर्जा ले रहे हो
1: जी, बिल्कुल।
0: और ना उसकी लागत लगती है ना उसमें कोई हमारा बिगाड़ होता है
1: जी जी।
0: तो इस तरह सूरज की है, इसी तरह से पवन की है। पवन का भी जैसे अपन बताया कि पवन जो गति चल रही है उससे हम चक्के लगाकर उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं
1: जी, बिल्कुल।
0: इसी तरह से एक बायोगैस होती है, बायोगैस जानते हैं ना अपन, बायोगैस जैसे हमारे जितने भी वातावरण में हमारे खेती के जितने भी चाहे गोबर है, चाहे हमारे जो लकड़ियों के वेस्ट है, या हमारा जो खरपतवार का जो बचा हुआ जो पौधे के तत्व हैं, या कुछ भी ऐसे जो वेस्टेज हैं
1: जी जी।
0: जिनका उपयोग विशेष नहीं है लेकिन वो प्रकृति के संसाधन है, तो उनका उपयोग करके हम बायोगैस का निर्माण करते हैं। और बायोगैस का निर्माण करके वो भी हमारी एक ऊर्जा का एक स्रोत बनता है
1: जी, बिल्कुल।
0: उससे भी हम किसी तरह से कई तरह से ईंधन का और हमारे जो दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए पंप चलाना वगैरह, लाइट बनाना, ये सब काम बायोगैस से भी कर सकते हैं
1: जी जी।
0: और एक उन्नत चूल्हा होता है, उन्नत चूल्हा जैसे हम जब भी जो चूल्हे का काम करते हैं घरों में, तो वो भी एक अपारंपरिक जो ऊर्जा स्रोत का एक साधन होता है, क्योंकि उसमें हमारा जो वो जिसको उन्नत चूल्हा या कहते हैं निर्धूम चूल्हा, निर्धूम चूल्हा ऐसा होता है कि जिसमें इस तरह का चूल्हा होता है जिसमें धुआं नहीं निकलता, क्योंकि जो महिलाएं होती है वो अगर जब खाना बनाती है तो उसमें धुआं निकलता है और वो भी वातावरण का बिगाड़ करता है
1: जी, बिल्कुल। क्योंकि
0: हम बात जलवायु परिवर्तन की भी कर रहे हैं और ऊर्जा की भी बात कर रहे हैं, तो हम इस चूल्हे को भी हम लेते हैं कि चूल्हे से ऐसी धुआं रहित चूल्हा हो, निर्धूम चूल्हा हो, जिसमें कि कोई वातावरण में बिगाड़ ना हो, और जब वातावरण में बिगाड़ नहीं होगा तो जलवायु परिवर्तन का कोई कारण नहीं बनेगा
1: जी, बिल्कुल।
0: तो इस तरह से जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो विभिन्न हमारे जो है वो ऊर्जा बनाते हैं। तो इस जैसे पवन ऊर्जा भी बता दिया अपन ने, बायोगैस का भी बता दिया। बायोगैस में भी क्या किया जाता है कि सब जो अपना गोबर है और इनको इकट्ठा करके और उसको बंद कर दिया जाता है और उसमें उसका विघटन किया जाता है, उनका
1: जी जी।
0: जो तत्व होते हैं उसका विघटन किया जाता है, विघटन करने से जो गैस का निर्माण होता है और उस गैस के निर्माण से जो हमारी ऊर्जा बनती है, और जो उसका बाद में जो अपघटन होने के बाद में जो भी तत्व बचेगा तो वो खाद के रूप में भी काम आता है
1: जी, बिल्कुल सर।
0: तो इस तरह से हमारे कई सारी चीजों का ये जितने ऊर्जा के स्रोत हैं वो कई सारे काम आते हैं। अब ये जैसे अपन सोलर ऊर्जा की बात करेंगे तो सोलर ऊर्जा से जो भी हमारी लाइट बनती है तो हमारे कई सारे जो अपने काम है, जैसे खेती बाड़ी के हमारे जो काम है, जैसे सिंचाई करना, मोटर चलाना, और हमारे जो जल का अभी अपन देखते हैं तो लाइट का उपयोग अपन दिमाग में आता है कि वो क्या है, तो लाइट के उपयोग के अलावा हमारा जो जल का शुद्धिकरण का काम है उसको भी हम कर सकते हैं। उसके बाद में हम जो से अपने कोल्ड स्टोरेज करते हैं
1: जी जी,
0: हमारे यहाँ काफी कमी है कि कोल्ड स्टोरेज नहीं है, मतलब जो शीत जो घर होते हैं जिसमें कि हम कुछ सब्जियों का और फलों का या फसलों का हम उसमें स्टोरेज करके उसका केंद्रीकरण करके और काफी समय तक उसका रख सकते हैं ताकि उसका बिगाड़ ना हो।
1: क्योंकि
0: अपन देखते हैं कि जितने भी हमारे फल है या सब्जियां हैं वो बहुत जल्दी खराब
1: हो जाते हैं जी जी।
0: अभी जैसे घरों में तो अपन कहते हैं फ्रिज में रख दिया तो उसमें शीतलन हो जाता है, उसमें ठंडा हो जाता है और उससे उसका लाइफ बढ़ जाती है
1: जी, बिल्कुल।
0: तो उसमें जो उसका बिगाड़ है, जब बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होते हैं तो उसमें भी हमारे अनाज और फसल और जो हमारी सब्जियों के बड़े बड़े उत्पाद हैं उनका बिगाड़ नहीं होता, तो उसके लिए भी क्योंकि अब जो कोल्ड स्टोरेज को चलाने के लिए लाइट की उपयोगिता होती
1: जी
0: है
1: जी।
0: और लाइट की उपयोगिता जो है वो अगर हमारे सोलर से बन रही है तो हमारे लिए वो एक बिल्कुल फ्री का साधन हो जाता है, तो उसका भी हमारा उपयोग करके हम उसका बहुत बड़े काम में लिया जाता है। इसके अलावा जो अभी हमारा जैसे आजकल अपन ग्रीन हाउसेस की बात करते हैं, जो हमारे बड़े बड़े जो ग्रीन हाउस नेट हाउस जिसमें कि कई तरह के स्टोरेज के लिए फव्वारा वगैरह चलाना, उसके वातावरण को मेंटेन करना, और इसके लिए भी हमें जो बिजली की आवश्यकता होती है वो हमारे सोलर लाइट से, जो सोलर ऊर्जा है
1: सूर्य ऊर्जा
0: से, उससे हमें उपयोग करके ली जाती है
1: जी।
0: तो और इसके अतिरिक्त तो बिजली का तो अपन उपयोग जानते हैं, जैसे अपने घरों की बिजली है, पंखे चलाना है, हमारे नल चलाना है, जो भी है हमारे जितने भी, तो उनका भी उपयोग करते हैं। तो इस तरह से जो ऐसे संसाधन जिसमें प्रकृति का ही संसाधन हो, प्रकृति में ही वापस से उसका परिवर्तन हो जाए और उसमें किसी तरह का प्रदूषण ना हो, इस तरह का जो ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके जो हम बिजली का उत्पादन करते हैं या हमारे घर के लिए या खेती के लिए जो आवश्यकता की आपूर्ति करते हैं, तो उसको हम उपयोग करते हुए जलवायु का जो परिवर्तन है उसको बिल्कुल बिगाड़ नहीं करने से बिल्कुल बचेंगे अपन, किसी तरह से उसका बिगाड़ ना हो, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा संसाधन होगा
1: जी, बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने बहुत अच्छी जानकारी के माध्यम से हमारे किसान भाई बहनों को ये बात समझा दी है कि जलवायु परिवर्तन में जो प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उन ऊर्जा स्रोतों का अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारी प्रकृति का बिगाड़ नहीं हो पाता है और साथ ही हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा बना रह सकता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे और हमारे किसान भाई बहनों को अपनी इतनी अच्छी जानकारी दी।
0: धन्यवाद।
1: जिम की किसान भाई बहनों अवड़े अपने वेस्ट में रुकड़िया जी सर जुड़ियो तक हता ने एना आपड़ा ने घनी असल तरीका तक बताड़ दीदू है कि हरते आपड़ा ने जे प्राकृतिक जो ऊर्जा स्त्रोत है आपड़े बल्ले एना नु महत्व समझू है ने हरते आपड़े भी जे खेती करा हा तो इनमें भी एना नु घना आका नु महत्व है। तो आशा करा हा कि आ सब बातें आप समझी गया होंगे ने अभी अमे देखी रहा कि टाइम थी गयो है अमारे अणस कार्यक्रम तक सूटा पड़वा नो तो मैं सूटा तो पड़ा पर जाते पहले हामरी लायक और गीत ने मोरे पड़ा सूटा।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, क्या आपने बच्चों को मौसम बदलते ही सर्दी जुखाम या बुखार होते देखा है? क्या बरसात के दिनों में बच्चों को दस्त उल्टी या मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है?
0: जी जी।
1: क्या आप जानना चाहते हैं श्रोता साथियों कि कुछ आसान सावधानियों से बच्चों को मौसमी बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है?
0: बिल्कुल।
1: तो आज का हमारा विशेष कार्यक्रम बच्चों को मौसमी बीमारियों से कैसे बचाएं उसको लेकर ही है।
0: जी हाँ।
1: बच्चे हमारे परिवार की सबसे अनमोल पूंजी होते हैं कशिश। उनका स्वस्थ रहना केवल माता पिता के लिए ही नहीं बल्कि समाज की जिम्मेदारी है। तो आइए जानते हैं कि बदलते मौसम में बच्चों की देखभाल कैसे करें और उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित कैसे रखें।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी होंगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसा कि हमारे साथी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत के साथ हम उन्हें कार्यक्रम के माध्यम से पहले मनोरंजन करवाते हैं, तो क्यों ना आज भी शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ हम करें।
1: बिल्कुल। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को मौसमी बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अंजलि जी आपने गीत से पहले हमारे श्रोता साथियों को ये बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि जब भी मौसम में थोड़ा सा भी अगर परिवर्तन होता है तो सबसे पहले बीमार हमारे बच्चे ही पड़ते हैं। क्योंकि श्रोता साथियों, बचपन जो है वो जीवन का सबसे कोमल और संवेदनशील समय होता है।
1: जी जी,
0: इस उम्र में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं हो पाती है, इसलिए मौसम बदलते ही वे जल्दी बीमार पड़ सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि कभी सर्दी खांसी हो जाती है तो कभी बुखार आ जाता है बच्चों को, कभी दस्त तो कभी त्वचा संबंधित समस्याएं बच्चों को परेशान करने लगती है।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, विशेषकर हम बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में और सर्दी के मौसम में बच्चों को संक्रमित होते हुए देखते हैं। लेकिन इन सभी बातों में अच्छी बात यह है दोस्तों कि थोड़ी सी सावधानी, संतुलित आहार, स्वच्छता और सही देखभाल के माध्यम से हम अपने बच्चों को कई मौसमी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो आइए श्रोता साथियों, जानते हैं कि बच्चों को मौसमी बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है।
1: जी हाँ, श्रोता साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि मौसमी बीमारियां वे बीमारियां हैं जो मौसम में परिवर्तन होने पर अधिक फैलती हैं। बच्चों में सामान्यतः हम देखते हैं कशिश, सर्दी, जुखाम, वायरल बुखार, खांसी, दस्त, उल्टी, डेंगू, मलेरिया, त्वचा संक्रमण, आंखों का संक्रमण, एलर्जी और सांस संबंधित समस्याएं फैलती हैं। इन बीमारियों का मुख्य कारण संक्रमण, गंदगी, दूषित पानी, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता और मौसम के अनुसार उचित देखभाल का अभाव होता है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कशिश कार्यक्रम के माध्यम से कि बच्चों को बीमारियों से बचाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है स्वच्छता।
0: जी जी
1: जी हाँ श्रोता साथियों, बच्चों को भोजन से पहले और सोच के बाद साबुन से हाथ धोने की आदत डालें, नाखून नियमित रूप से काटें, घर और आसपास का वातावरण साफ रखें, पीने का जो पानी है वो हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रखें, बच्चों के खिलौनों की समय समय पर सफाई करें, खुले में रखे भोजन से बच्चों को दूर रखें, क्योंकि स्वच्छता न केवल बीमारी को रोकती है बल्कि बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। अब यही साथियों को अगर बताएं कि पौष्टिक भोजन बच्चों के लिए किस प्रकार से सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हो सकता है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर होती है।
1: जी जी,
0: ऐसे में साथियों, बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाने में संतुलित भोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के भोजन में हम हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, दालें, अंकुरित अनाज, दूध और दुग्ध से बने उत्पाद, सूखे मेवे, मोटे अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार और रागी, ये शामिल कर सकते हैं।
1: जी जी,
0: साथ ही श्रोता साथियों, जंक फूड, अधिक तली भुनी चीजें और बाजार के खुले जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनसे हमारे बच्चों को हमें दूर रखना है।
1: बिल्कुल,
0: पौष्टिक भोजन जो है वो बच्चों को अंदर से मजबूत बनाता है अंजलि जी, साथ ही संक्रमण से लड़ने की क्षमता भी बच्चों में बढ़ाता है।
1: जी हाँ, यही कशिश अब बात आती है कि अक्सर माता पिता मौसम के बदलाव को नजरअंदाज कर देते हैं जिससे बच्चे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। जैसे कि अगर गर्मियों का मौसम है तो हमें बच्चों को हल्के सूती कपड़े पहनाने चाहिए, पर्याप्त पानी पिलाना चाहिए, तेज धूप में बाहर जाने से बचाना चाहिए, और अगर बरसात का मौसम हो तो बच्चों के जो भीगे कपड़े होते हैं उन्हें हमें तुरंत बदलना है।
0: जी
1: हाँ, साफ और सूखे कपड़े पहनाने हैं, मच्छरों से सुरक्षा करनी है, और सर्दियों का मौसम होता है तो उसमें हमें बच्चों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनाने हैं, सिर, कान और पैरों को ढककर रखना है, और सुबह शाम की ठंडी हवा से बचाने की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि अंजलि जी, हमारी बातें हमारे श्रोता साथियों से बहुत अच्छी चल रही है, और हम जान रहे हैं कि किस प्रकार से मौसमी बीमारियों से हम अपने बच्चों को बचाएं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें आगे भी ऐसे ही चलती रहेंगी, लेकिन अभी क्यों ना यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि किस तरीके से हमें बच्चों को मौसमी बीमारियों से बचाने की जरूरत है, मौसमी बीमारियों से क्या होता है, विशेष सावधानी हमें क्या रखनी है, पौष्टिक भोजन किस तरीके से कशिश सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन सकता है, साथ ही हमने जाना कि मौसम के अनुसार कपड़ों का चयन और बच्चों का ध्यान रखने की हमें जरूरत है।
1: बिल्कुल।
0: यही बात करें टीकाकरण के महत्व की, तो श्रोता साथियों, टीकाकरण बच्चों को कई गंभीर बीमारियों से बचाता है। हर माता पिता को चाहिए कि बच्चों का समय पर टीकाकरण करवाएं, टीकाकरण कार्ड सुरक्षित रखें, किसी भी टीके की खुराक न छूटने दें। टीके बच्चों के स्वास्थ्य की मजबूत नींव तैयार करते हैं।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ बरसात के मौसम में डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए घर के आसपास पानी जमा न होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, बच्चों को पूरे कपड़े पहनाएं, कूलर और पानी की टंकियों की नियमित सफाई करें। इसी के साथ एक छोटी सी लापरवाही श्रोता साथियों बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए स्वस्थ शरीर के लिए बच्चों के लिए पर्याप्त नींद बेहतर आवश्यक है।
1: जी
0: छोटे
1: हाँ,
0: बच्चों को उम्र के अनुसार पूरी नींद मिलनी चाहिए। बच्चों को मोबाइल और टीवी से दूर रखकर खेल कूद के लिए प्रेरित करना है। योग और हल्की शारीरिक गतिविधियां भी जरूरी है, क्योंकि कशिश, अच्छी नींद और नियमित गतिविधियां शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो ये तो आपने बात करी कि हमारे बच्चों को मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए हम क्या सावधानी बरत सकते हैं और कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है।
0: बिल्कुल।
1: यही अगर साथियों बात करें कि बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। जैसे कि यदि आपके बच्चे में कुछ लक्षण दिखाई दे तो श्रोता साथियों उन पर आप तुरंत ध्यान दें। जैसे कि बच्चे को लगातार बुखार बना रहता है, खांसी या सांस लेने में परेशानी है, बार बार दस्त या उल्टी बनी रहती है, अत्यधिक कमजोरी है बच्चों में और भूख न लगना भी एक कह सकते हैं अंजलि जी लक्षण हो सकता है मौसमी बीमारियों की शुरुआत का।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे में साथियों समय पर चिकित्सीय सलाह लेने से बीमारी गंभीर होने से बच सकती है। अगर अंजलि जी हम ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में विशेष सावधानियों को लेकर बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वागड़ क्षेत्र सहित ग्रामीण इलाकों में बच्चों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पूरे समुदाय की होती है।
0: जी हाँ।
1: ऐसे में आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों से नियमित संपर्क बनाकर रखें साथियों। बच्चों का वजन और स्वास्थ्य जांच करवाते रहें समय समय पर। साफ पानी और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित आप करें और गांव में स्वच्छता अभियान और जन जागरूकता गतिविधियों में भी आप बच्चों के साथ भाग ले सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि अंजलि जी जब पूरा समुदाय जागरूक होता है तब बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनता है।
0: जी हाँ। यही श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगे कि बच्चे केवल हमारे परिवार की ही नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं।
1: जी हाँ।
0: उनका स्वस्थ रहना हमारे आने वाले कल की मजबूती का आधार है। मौसम बदलना प्रकृति का नियम है, लेकिन सही जानकारी और समय पर सावधानी अपनाकर हम बच्चों को कई बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: स्वच्छता, पौष्टिक भोजन, समय पर टीकाकरण, पर्याप्त नींद और प्यार भरी देखभाल बच्चों के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा की ढाल है। हम सभी को मिलकर यह संकल्प लेना होगा कि अपने घर, आंगन और गांव के हर बच्चे के स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि स्वस्थ बच्चा ही स्वस्थ समाज और उज्जवल भविष्य की पहचान है। क्योंकि श्रोता साथियों किसी भी समाज की असली पहचान उनके बच्चों की मुस्कान, उनके स्वास्थ्य और उनके सुरक्षित भविष्य से होती है।
1: जी जी।
0: जब कशिश बच्चे स्वस्थ होते हैं तभी वे खुलकर सीखते हैं, खेलते हैं, सपने देखते हैं और आगे चलकर समाज के जिम्मेदार नागरिक बनते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए बच्चों की देख

0: देखभाल केवल माता पिता की ही नहीं बल्कि पूरे समुदाय का दायित्व है। घर, विद्यालय, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र और गांव, प्रत्येक व्यक्ति यदि बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे तो मौसमी बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, साथ ही हमारे श्रोता साथियों से हम ये भी कहना चाहेंगे कि दोस्तों आज के समय में जानकारी की कमी नहीं है, आवश्यकता है तो सिर्फ सही जानकारी को अपनाने की और उसे व्यवहार में लाने की।
0: बिल्कुल
1: अंजलि जी, कई बार छोटी छोटी सावधानियां जैसे कि साफ पानी पीना, साफ पानी का उपयोग करना, हाथ धोने की आदत, समय पर डॉक्टर की सलाह और पौष्टिक भोजन के साथ साथ स्वच्छ वातावरण बच्चों को कई परेशानियों से बचा सकता है।
0: जी हाँ
1: साथियों, बीमारी का इलाज जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बीमारी को होने से रोका जाए। यही समझ अंजलि जी एक स्वस्थ और जागरूक समाज की पहचान मानी जाती है। ऐसे में दोस्तों हमें अपने बच्चों को केवल अच्छा जीवन ही नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन देने का संकल्प भी लेना चाहिए।
0: जी हाँ,
1: उन्हें ऐसा वातावरण दे जहाँ वे निडर होकर आगे बढ़ सके, अपनी प्रतिभा को पहचान सके और अपने सपनों को साकार कर सके। श्रोता साथियों, आज बच्चों के स्वास्थ्य पर किया गया निवेश आने वाले कल के मजबूत समृद्ध समाज की नींव बनता है।
0: बिल्कुल कशिश, तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम ये जान पाए कि मौसमी बीमारियों से हमें हमारे बच्चों को कैसे बचाना है और किन किन विशेष बातों का माता पिता को ध्यान रखने की जरूरत है।
1: बिल्कुल,
0: आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक रुपया से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल अंजलि जी।
2: चकरक चीचा चो चकलो रम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई विडी पाई चिकी चक चो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकनक हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिली सिली सिली गो बगड़ दुम चकड़ दुम चिकी चक चो।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही कि हम अपने बच्चों को मौसमी बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं और इसमें हमें क्या सावधानी बरतनी है, ये भी हम कार्यक्रम के माध्यम से जान पाए हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये सभी बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। नमस्कार।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं युवा और सामाजिक सद्भाव को लेकर। जैसा कि कशिश, हम अलग अलग रंगों से मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं, अलग अलग सुरों से मिलकर एक मधुर संगीत बनाते हैं और अलग अलग विचारों से मिलकर एक मजबूत समाज बनाते हैं।
0: जी हाँ।
1: तो साथियों, आज का हमारा विषय भी है कि युवा और सामाजिक सद्भाव, विविधता में एकता को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम ये बातें जरूर करेंगे, लेकिन शुरुआत में सुन लेते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।
0: जी
1: आप
0: हाँ।
1: बने रहे श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय से रूबरू आपको करा ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं युवा और सामाजिक सद्भाव को लेकर, यानी कि विविधता में एकता को लेकर आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि जागृति जी, हम सभी जानते हैं कि भारत हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग खानपान है, पहनावा अलग है, परंपराएं अलग है और जीवन जीने के तरीके भी अलग अलग हैं साथियों। फिर भी इन सभी विविधताओं के बीच एक भावना जो है वो हमें जोड़ती है कि हम भारतीय हैं और हमारा समाज हम सबका साझा समाज है। इस विविधता को ताकत में बदलने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवा केवल समाज का वर्तमान नहीं बल्कि उसका आने वाला भविष्य भी है।
1: बिल्कुल कशिश, विविधता का अर्थ है अलग अलग होना और फिर भी साथ रहना। हमारे आसपास ही देखिए तो कोई अलग भाषा बोलता है, कोई दूसरी बोली, किसी की पसंद अलग है तो किसी की सोच अलग है
0: जी,
1: किसी की पारिवारिक परंपरा अलग है तो किसी का रहन सहन अलग है। लेकिन अलग होना गलत नहीं, वास्तव में विविधता समाज को समृद्ध बनाती है।
0: बिल्कुल,
1: अगर किसी बगीचे में केवल एक ही तरह के फूल हो तो वो सुंदर जरूर लगेगा, लेकिन अलग अलग रंगों और खुशबू वाले फूल उस बगीचे की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं।
0: जी हाँ,
1: ठीक उसी तरह हमारा समाज भी अलग अलग लोगों, संस्कृति और विचारों से मिलकर सुंदर बनता है।
0: जी हाँ जागृति जी, साथ ही अगर बात करें सामाजिक सद्भाव की, तो साथियों सामाजिक सद्भाव होता है एक दूसरे के प्रति सम्मान, सहयोग, अपनापन और भाईचारे की भावना रखना। जब समाज में जागृति जी सद्भाव होता है तो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, समस्याओं का मिलकर समाधान खोजते हैं और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ भी देते हैं। दोस्तों इसके विपरीत अगर बात करें तो जब लोगों के बीच भेदभाव, नफरत, गलतफहमियां और असम्मान बढ़ने लगे तो समाज कमजोर होने लगता है। इसलिए सामाजिक सद्भाव केवल समाज की जिम्मेदारी नहीं है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है और युवाओं की भूमिका इसमें विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जागृति जी।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि युवा ऊर्जा, उत्साह, नए विचार और बदलाव की क्षमता से भरे होते हैं। और आज का युवा सोशल मीडिया से लेकर शिक्षा, रोजगार, कला, खेल और तकनीक तक हर क्षेत्र में सक्रिय है। उसके विचार और व्यवहार समाज के दूसरे लोगों को भी प्रभावित करते हैं।
0: जी हाँ।
1: हम देखते हैं कि अगर युवा आपसी सम्मान, सहयोग और सकारात्मक सोच को अपनाएंगे तो इसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। युवा ये तय कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पर उन्हें नफरत फैलाने वाली बातों को आगे बढ़ाना है या सकारात्मक संदेशों को फैलाना है। वो ये तय कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को उसकी भाषा, पहनावे या पृष्ठभूमि के आधार पर जज करना है या उसके व्यक्तित्व को समझना है। यही छोटे छोटे निर्णय सामाजिक सद्भाव की बड़ी नींव बनते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, साथ ही हमारे युवा साथियों को ये भी समझना है कि विविधता में एकता केवल नारा नहीं है बल्कि हमारी ताकत है। श्रोता साथियों, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं विविधता में एकता ही हमारी पहचान है, लेकिन इस वाक्य का वास्तविक अर्थ तभी समझ में आता है जब हम दूसरों की अलग पहचान और विचारों का सम्मान करना सीखते हैं। जागृति जी, एकता का मतलब ये नहीं है कि सभी लोग एक जैसा सोचें। एकता का मतलब होता है अलग सोच रखने के बावजूद भी एक दूसरे का सम्मान करना।
1: बिल्कुल,
0: अगर दो युवाओं की किसी मुद्दे पर अलग राय है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे एक दूसरे के दुश्मन हैं। वे अपनी अपनी बात रख सकते हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं और असहमति के बावजूद भी सम्मान बनाए रख सकते हैं और यही स्वस्थ समाज की पहचान है जागृति जी।
1: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि

0: और सामाजिक सद्भाव, विविधता में एकता को लेकर, तो ये बातें निरंतर हमारी बनी रहेंगी। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथ ही इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। हमारी बात चल रही थी युवा और सामाजिक सद्भाव विविधता में एकता को लेकर। तो कशिश, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं और बोलियां भी बोली जाती है। युवाओं की समझना होगा कि किसी की भाषा या बोली उसका मजाक उड़ाने की चीज नहीं है।
1: जी हाँ।
0: भाषा व्यक्ति की संस्कृति, इतिहास और पहचान से जुड़ी होती है।
1: बिल्कुल।
0: अगर कोई युवा अलग बोली बोलता है तो उसका मजाक बनाने की बजाय उससे उस बोली के नए शब्द सीखना ज्यादा खूबसूरत व्यवहार है। किसी की भाषा का सम्मान करना उसकी पहचान का सम्मान करना है।
1: जी हाँ। साथ ही जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में सोशल मीडिया युवाओं के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक पोस्ट कुछ ही सेकंड में हजारों लोगों तक पहुंच सकती है, इसलिए श्रोता साथियों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। किसी समुदाय, भाषा, क्षेत्र या व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री को बिना सोचे समझे शेयर करना सामाजिक तनाव बढ़ा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए युवा साथियों को जागृत दीजिए, कोई भी जानकारी शेयर करने से पहले खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या ये जो वो कर रहे हैं वो सच है, क्या ये किसी को नुकसान पहुंचा सकती है या नहीं, क्या इससे समाज में नफरत बढ़ेगी या समझ बढ़ेगी। दोस्तों, अगर जवाब संतोषजनक नहीं है तो उसे आगे बढ़ाने से आपको बचना चाहिए और यही आपकी समझदारी होगी।
0: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हमारे युवा साथियों को हम कहना चाहेंगे कि समाज में अलग अलग विचार होना स्वाभाविक है। युवाओं को ये सीखना जरूरी है कि असहमति और दुश्मनी एक ही चीज नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: हम किसी की बात से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी उसके प्रति सम्मान रख सकते हैं। वास्तविक समझदारी यही है कि हम बहस को लड़ाई न बनने दें और अपनी बात रखने के साथ साथ दूसरे की बात सुनने की आदत भी विकसित करें।
1: बिल्कुल।
0: सामाजिक सद्भाव के लिए हमेशा बड़े अभियान की जरूरत नहीं होती। एक युवा अपने स्तर पर भी शुरुआत कर सकता है। अपने पड़ोस में किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी नए व्यक्ति को अपनापन देना, किसी की भाषा या संस्कृति का सम्मान करना, भेदभाव का हिस्सा न बनना, गलत अफवाहों को आगे न बढ़ाना, दो लोगों के बीच गलत फहमी को बातचीत से दूर करना, ये सभी सामाजिक सद्भाव की दिशा में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
1: जी हाँ जागृति जी। साथ ही अगर बात करें शैक्षणिक संस्थान की, तो दोस्तों शैक्षणिक संस्थान युवाओं में केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी विकसित कर सकते हैं। जैसे कि अलग अलग संस्कृति, भाषा और परंपराओं को समझने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, संवाद, समूह गतिविधियाँ और सामुदायिक सेवा जैसे प्रयास युवाओं को एक दूसरे के करीब ला सकते हैं। जागृति जी,
0: बिल्कुल।
1: जब अलग अलग पृष्ठभूमि के साथ युवा साथ में बैठते हैं, साथ काम करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो कई गलत धारणाएं अपने आप ही खत्म होने लगती है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि कई बार हम किसी व्यक्ति के बारे में बिना जाने ही धारणा बना लेते हैं, ये ऐसा होगा, ये लोग ऐसे होते होंगे, इसकी भाषा ऐसी है तो इसकी सोच भी ऐसी होगी।
1: बिल्कुल।
0: ऐसी धारणाएं सामाजिक दूरी पैदा करती है। श्रोता साथियों, हमारे युवा साथियों को चाहिए कि वे किसी व्यक्ति को उसकी पहचान के आधार पर नहीं बल्कि उसके व्यवहार, विचार और व्यक्तित्व के आधार पर समझने की कोशिश करें।
1: जी
0: हाँ। किसी को जानने से पहले उसके बारे में फैसला न करना ही सच्ची सामाजिक समझ है।
1: जी हाँ।
0: भारत का भविष्य हमारे युवाओं के हाथों में है। अगर युवा आपसी सम्मान, सहयोग और सद्भाव को अपनाते हैं कशिश, तो देश की सामाजिक शक्ति मजबूत होती है। देश केवल सड़कों, इमारतों और तकनीकों से मजबूत नहीं बनता, देश तब मजबूत बनता है जब उसके नागरिक एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अगर हमारे युवा साथी समाज में जोड़ने का काम करेंगे तो वे केवल अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे बल्कि राष्ट्र निर्माण के सक्रिय भागीदार भी बनेंगे।
1: जी हाँ जागृति जी, ऐसे में हमारे युवा साथियों को कुछ संकल्प लेने की जरूरत है। जैसे कि साथियों, पहला संकल्प आप ये ले कि हम किसी भी भाषा, संस्कृति या पहचान का कभी मजाक नहीं बनाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा यह है कि हम सोशल मीडिया पर बिना सत्यापन के कोई अफवाह आगे नहीं बढ़ाएंगे। तीसरा यह साथियों कि हम अपनी असहमति को सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करेंगे। चौथा यह कि हम भेदभाव के बजाय समानता और सहयोग को महत्व देंगे। हम अपने आसपास लोगों के बीच प्रेम, सम्मान और संवाद को बढ़ाने की कोशिश करेंगे साथियों। और हम किसी व्यक्ति को केवल उसकी पहचान देखकर नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व और व्यवहार से समझने की कोशिश करेंगे।
0: बिल्कुल।
1: यानी कि जागृति जी, अगर ऐसे संकल्प हमारे युवा साथी लेते हैं तो वो कई हद तक राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।
0: जी हाँ, और हम कह सकते हैं कि आज की बातचीत से हमें समझने की जरूरत है कि विविधता हमारे बीच की दूरी नहीं बल्कि हमारी खूबसूरती है। हम अलग हो सकते हैं लेकिन अलगाव में रहना जरूरी नहीं है।
1: जी।
0: हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारी पसंद अलग हो सकती है, हमारी परंपराएं अलग हो सकती है, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के सम्मान के साथ चल सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: याद रखिए दोस्तों, एकता का मतलब एक जैसा होना नहीं बल्कि अलग अलग होकर भी एक दूसरे का सम्मान करना है। आज का युवा अगर नफरत के बजाय संवाद को, भेदभाव के बजाय समानता को और दूरी के बजाय सहयोग को चुनेगा तो हमारा समाज निश्चित रूप से मजबूत बनेगा।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि सामाजिक सद्भाव किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, हम सब की साझी जिम्मेदारी है।
1: जी
0: और
1: हाँ।
0: इसकी शुरुआत किसी और से नहीं, हमसे और हमारे छोटे छोटे व्यवहारों से होती है।
1: बिल्कुल,
0: इसी सकारात्मक सोच के साथ श्रोता साथियों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि मुस्कुराते रहिए और अपने समाज में सद्भाव की छोटी सी रोशनी जरूर जलाते रहिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी रही, युवा और सामाजिक सद्भाव को लेकर, और जैसा कि ये बातें पूरी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ।

0: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर।
0: इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
1: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
0: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखा है, तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
1: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरी निःशुल्क मले है।
0: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
1: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा, तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर एक कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है मुसीबत में घर बनेगा आर्थिक सहारे को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि अंजलि हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं तो ये विषय जो है वो भावनात्मक और व्यवहारिक दोनों ही दृष्टि से अच्छा है। यानी कि मुसीबत कभी बताकर नहीं आती, लेकिन अगर परिवार आर्थिक रूप से तैयार हो तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी लगने लगती है। श्रोताओं, घर केवल रहने की जगह नहीं बल्कि सुरक्षा, अपनापन और भविष्य की उम्मीद का केंद्र होता है।
0: जी जी,
1: इसलिए आज की छोटी छोटी आर्थिक बचत और सही योजना कल मुश्किल समय में पूरे परिवार का सहारा बन सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं मुसीबत में घर बनेगा आर्थिक सहारा। अंजलि, मुसीबत कभी दस्तक देकर नहीं आती, जैसा कि हमने पहले भी हमारे श्रोता साथियों को गीत से पहले बताया था। कभी अचानक बीमारी सामने खड़ी हो जाती है, कभी रोजगार का संकट पैदा हो जाता है, कभी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, परिवार की जमा पूंजी जो होती है वो हमें प्रभावित कर देती है।
1: जी जी।
0: कभी किसी अनपेक्षित जरूरत के सामने आर्थिक कठिनाइयां भी आ जाती है। ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हम अपने परिवार को इस मुश्किल से कैसे संभालें।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसलिए आर्थिक सुरक्षा केवल अमीर बनने का विषय नहीं है बल्कि हर परिवार की जरूरत है, क्योंकि कम आय वाला परिवार भी यदि अपनी आमदनी के अनुसार बचत करे, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखे, स्थायी संसाधनों का सही उपयोग करे और आय के नए संसाधन विकसित करे तो कठिन समय में किसी के सामने हाथ फैलाने की मजबूरी कम हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: सच्चा स्वराज केवल श्रोता साथियों राजनीतिक स्वतंत्रता का नाम नहीं है। सच्चा स्वराज तब मजबूत होता है जब व्यक्ति, परिवार और समुदाय अपने जीवन के जरूरी निर्णयों में आत्मनिर्भर बने, क्योंकि जागृति जी आर्थिक रूप से सक्षम परिवार इस स्वराज की मजबूत नींव है। इसलिए कहा जा सकता है कि मुसीबत के समय अपना घर ही पहला आर्थिक सहारा बने, यही आर्थिक स्वावलंबन ही सच्ची शुरुआत है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। कभी बीमारी, दुर्घटना, रोजगार में बदलाव, फसल खराब होना, प्राकृतिक आपदा आना या अचानक होने वाला बड़ा खर्च, किसी भी परिवार के सामने ये आ सकता है। दोस्तों, अगर परिवार के पास कोई आर्थिक तैयारी नहीं है तो छोटी सी परेशानी भी बड़ा संकट हमारे सामने बन सकती है।
1: जी जी।
0: इसके विपरीत अंजलि, अगर हम बात करें कि परिवार ने नियमित बचत की है और अपनी जरूरत के अनुसार आर्थिक योजना बनाई है तो संकट के समय निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि आर्थिक सुरक्षा का मतलब बहुत अधिक धन होना नहीं होता, इसका अर्थ है कि आमदनी के अनुसार जिम्मेदारी से खर्च करना, कुछ हिस्सा बचाना और भविष्य की अनिश्चित परिस्थितियों के लिए तैयार रहना।
1: बिल्कुल जागृति जी, अक्सर हम सोचते हैं कि बचत जो है वो तभी संभव है जब आमदनी बहुत अधिक हो।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोता साथियों, बचत का संबंध केवल आय से नहीं बल्कि आदत और अनुशासन से भी है। हम हर महीने अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ी राशि अलग रख सकते हैं ताकि भविष्य जो है वो हमारा सुरक्षित रहे।
0: बिल्कुल।
1: छोटी छोटी बचत मिलकर बड़ी सहायता बन सकती है। जैसे बूंद बूंद पानी मिलकर घड़ा भरता है, वैसे ही नियमित बचत धीरे धीरे आर्थिक सुरक्षा का आधार बनाती है। परिवार को यह तय करना चाहिए कि आमदनी में से कितना हिस्सा आवश्यक खर्चों में जाएगा और कितना भविष्य के लिए सुरक्षित रहा जा सकता है।
0: जी हाँ।
1: बचत को बोझ नहीं बल्कि परिवार की सुरक्षा की आदत समझना चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि, एक बात है कि जरूरत और इच्छा में अंतर होता है, यानी कि श्रोता साथियों आर्थिक परेशानी का एक कारण यह भी है कि कई बार हम जरूरत और इच्छा के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं। जो चीज हमें पसंद है वो जरूरी हो या आवश्यक नहीं। अगर परिवार खर्च करने से पहले ये सोच ले अंजलि कि क्या ये वास्तव में जरूरी है, तो अनावश्यक खर्च कम किए जा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: दिखावे, जल्दबाजी में खरीदारी और बिना योजना के खर्च से बचना आर्थिक मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका अर्थ ये नहीं है दोस्तों कि जीवन में खुशियों पर खर्च न किया जाए, बल्कि उद्देश्य ये है कि आज की खुशी के साथ कल की जरूरत को भी ध्यान में रखा जाएगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हर परिवार को अपनी क्षमता के अनुसार आपातकालीन बचत रखने की कोशिश करनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: यह पैसा रोजमर्रा के खर्चों के लिए नहीं श्रोता साथियों, बल्कि अचानक आने वाली जरूरी परिस्थितियों के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। बीमारी, रोजगार में अस्थायी रुकावट या घर की किसी जरूरी मरम्मत जैसी परिस्थिति में यह बचत बहुत उपयोगी हो सकती है। इससे परिवार को तुरंत किसी से उधार लेने की जरूरत कम पड़ सकती है। यही आर्थिक स्वराज की भावना जागृति जी मुसीबत में सबसे पहले अपने परिवार की तैयारी में काम आती है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से मुसीबत में घर बनेगा हमारा आर्थिक सहारा, तो ये बातें निरंतर ऐसे ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि आर्थिक सुरक्षा क्यों जरूरी है, छोटी बचत से किस तरीके से हमें बड़ा सहारा मिल सकता है, जरूरत और इच्छा में क्या अंतर है, और इसी के साथ हमने जाना कि आपातकालीन जो निधि है वो मुसीबत के समय में कैसे सुरक्षा कवच बन सकती है। यही बात करें गांव और स्थानीय अर्थव्यवस्था की भूमिका की, तो श्रोता साथियों, सच्चा स्वराज केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि गांव और समुदाय के स्तर पर भी जरूरी है। यदि गांव में ही रोजगार और आय के अवसर बढ़े, जागृति जी, तो लोगों को मजबूरी में पलायन करने की आवश्यकता कम हो सकती है। स्थानीय खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, स्थानीय उत्पाद और छोटे व्यवसाय परिवार की आय बढ़ाने में भूमिका निभा सकते हैं। गांव के संसाधनों और स्थायी कौशल का उपयोग करके आय के नए रास्ते बनाए जा सकते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, जब गांव का पैसा गांव में ही अधिक समय तक घूमता है तो स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलता है और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, तो पूरी सामुदायिक जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत बन पाती है।
1: बिल्कुल अंजलि, हम देखते हैं कि केवल एक आय के स्रोत पर निर्भर रहना कई परिवारों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। परिवार अपनी क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार अतिरिक्त आय के अवसर तलाश सकता है। खेती के साथ पशुपालन कर सकता है, छोटे व्यवसाय, हस्तकला, सिलाई, खाद्य उत्पाद, स्थानीय सेवा या अन्य कौशल आधारित कार्य आय के अतिरिक्त साधन बन सकते हैं। श्रोताओं, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आय बढ़ाने का मतलब केवल अधिक काम करना नहीं बल्कि अपने कौशल और संसाधनों का बेहतर उपयोग करना भी है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं अंजलि कि परिवार की आर्थिक मजबूती में महिलाओं की भूमिका बहुत जरूरी होती है। महिलाओं के पास अक्सर बचत, घरेलू प्रबंध, कृषि, पशुपालन, हस्तकला और अन्य कई क्षेत्रों का अनुभव होता है।
0: बिल्कुल,
1: अगर महिलाएं चाहें तो कौशल, बाजार और उचित अवसर उन्हें मिलेंगे तो वे परिवार की आय में योगदान देने के साथ साथ आर्थिक निर्णयों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। श्रोताओं, हम देखते हैं कि महिलाएं स्वयं सहायता समूह इस दिशा में सामूहिक प्रयास का उदाहरण मिला है। मिलकर बचत करना, कौशल विकसित करना और छोटे आर्थिक कार्य शुरू करना परिवार और समुदाय दोनों को मजबूत कर सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसके लिए हमें बच्चों में बचपन से ही आर्थिक समझ विकसित करने की जरूरत है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, आर्थिक स्वराज की शुरुआत अगली पीढ़ी से भी होती है। बच्चों को पैसों का महत्व समझाना जरूरी है। उन्हें यह सिखाया जा सकता है कि पैसा मेहनत से आता है, इसलिए उसका उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। बच्चों में बचत, जिम्मेदारी और जरूरत के अनुसार खर्च करने की आदत विकसित करना भविष्य के लिए उपयोगी है। इससे वे बड़े होकर आर्थिक फैसले अधिक समझदारी से ले सकेंगे।
1: बिल्कुल,
0: मुसीबत में कर्ज कभी कभी जरूरी हो सकता है, लेकिन श्रोता साथियों, बिना सोचे समझे लिया गया कर्ज परिवार पर लंबे समय तक आर्थिक दबाव डाल सकता है। किसी भी ऋण को लेने से पहले उसकी शर्तें, ब्याज, किश्त और उसे चुकाने की अपनी क्षमता को समझना आवश्यक है। जरूरत और दिखावे के बीच अंतर करना भी जरूरी है, क्योंकि आर्थिक स्वराज का अर्थ यह नहीं है कि कभी कर्ज न लेना पड़े, बल्कि इसका अर्थ है कि आर्थिक निर्णय समझदारी और जिम्मेदारी से लिए जाएं।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, हमारे घर और गांव में कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम स्वयं तैयार कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर उत्पादन और उपभोग बढ़ाने से खर्च कम करने और स्थानीय रोजगार बढ़ाने में मदद भी मिल सकती है। अगर किसान अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए प्रसंस्करण, पैकेजिंग या सामूहिक विपणन की दिशा में आगे बढ़े अंजलि, तो उनकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसी प्रकार श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ये भी कहना चाहेंगे कि स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्यमियों के उत्पादों को प्राथमिकता देना भी आर्थिक स्वराज की भावना को मजबूत करता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि सच्चा स्वराज व्यक्ति को केवल अधिकारों का बोध नहीं कराता बल्कि जिम्मेदारियों का भी एहसास कराता है।
1: बिल्कुल,
0: आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने परिवार के फैसलों में अधिक स्वतंत्रता महसूस करता है। आर्थिक रूप से मजबूत परिवार संकट में अधिक मजबूती से खड़ा हो सकता है और आर्थिक रूप से सक्षम गांव अपने विकास के लिए बाहरी सहायता पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहता।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए सच्चे स्वराज की यात्रा में बचत, आत्मनिर्भरता, स्थानीय रोजगार, कौशल विकास, जिम्मेदार खर्च और सामुदायिक सहयोग सभी महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ मुसीबत केवल एक परिवार की समस्या नहीं होती दोस्तों, कई बार पूरा समुदाय किसी संकट से प्रभावित होता है अंजलि। ऐसे समय में सामूहिक सहयोग बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। गांव में आपसी सहयोग, स्वयं सहायता समूह, सामुदायिक संस्थाएं और स्थानीय संगठन जरूरतमंद परिवारों को सही जानकारी और उचित सहायता उपलब्ध कराने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन सबसे मजबूत व्यवस्था वही होगी श्रोताओं, जिसमें सहायता के साथ साथ परिवार को भविष्य में स्वयं मजबूत बनने का अवसर भी मिले।
0: बिल्कुल जागृति जी, कह सकते हैं कि आर्थिक सुरक्षा कोई एक दिन बनने वाली व्यवस्था नहीं है, छोटी छोटी आदतों से बनती है। थोड़ी बचत, सोच समझ कर खर्च, सही योजना, कौशल विकास, स्थानीय संसाधनों का उपयोग और परिवार के सभी सदस्यों की भागीदारी, क्योंकि श्रोता साथियों, मुसीबत आने के बाद तैयारी शुरू करने से बेहतर है कि तैयारी आज से ही शुरू कर दी जाए, क्योंकि संकट के समय दूसरों की सहायता महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन हमारा अपना घर आर्थिक रूप से थोड़ा तैयार है तो मुश्किल का सामना करने का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। सच्चा स्वराज तभी सार्थक है श्रोता साथियों, जब हमारा परिवार मजबूत नहीं सक्षम हो, हमारा गांव निर्भर नहीं आत्मनिर्भर हो, हमारी अर्थव्यवस्था केवल जरूरत के समय सहारा मांगने वाली नहीं जागृति जी, बल्कि संकट के समय दूसरों को भी सहारा देने वाली बने।
1: बिल्कुल अंजलि, तो हम यही कहना चाहेंगे कि बचत की छोटी सी आदत श्रोताओं आत्मनिर्भरता की बड़ी शुरुआत होती है। आज अपने घर को आर्थिक रूप से आप मजबूत बनाइए, ताकि कल मुसीबत आए तो घर टूटे नहीं, बल्कि अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा रहे। यही आर्थिक आत्मनिर्भरता है और यही सच्चे स्वराज की मजबूत नींव है।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि जागृति जी कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बातें ढेर सारी हो गई है, अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: लूटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ।
1: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
2: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
3: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
4: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
3: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1444 पर

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: माटी में जमीन माटी तकीस जाना चाहूँ, मैं खेत हमारा बीज बोया वो पसंद बहाई वो आश्रम करो तो पसे बाप दादा ने जमीन माते मारो अधिकार किम नती। सूरी जन्म तकीस हकदार है, कानून ने आवात मानी है, न पन्या पूटे न हक को ले सके, न रिवाज न सच ने बदली सके। बाप दादा ने जमीन सूर्य नो अधिकार, सूर्य नो हक, इन्हें पहचान।
4: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाल जीवन और बेहतर भविष्य से जुड़ा हुआ है। आज कार्यक्रम में बातचीत का विषय है स्वस्थ रहने के लिए नियमित शारीरिक गतिविधियों के महत्व को लेकर।
0: बिल्कुल
1: मनीषा, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि शरीर की देखभाल के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। हम देखते हैं कि सुबह से शाम तक काम, फिर मोबाइल, टीवी और बहुत सारी अन्य जिम्मेदारियों के बीच हमारा शरीर जो है वो धीरे धीरे निष्क्रिय होता जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: और इसका परिणाम ये होता है कि कम उम्र में ही लोग मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, जोड़ों के दर्द और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना करने लगते हैं। विश्व स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि स्वस्थ जीवन के लिए नियमित शारीरिक गतिविधियां उतनी ही आवश्यक हैं जितना कि संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय अपने शरीर को सक्रिय रखने के लिए समय निकालें तो कई बीमारियों से हम बच सकते हैं और एक ऊर्जावान जीवन जी सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी जी,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दी।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय से तो रूबरू कराई चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं स्वस्थ रहने के लिए नियमित गतिविधियों की क्या भूमिका होती है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि स्वास्थ्य मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तभी श्रोता साथियों हम अपने दैनिक कार्यों को अच्छी तरह से कर पाते हैं और जीवन का आनंद ले पाते हैं। साथियों, कहना चाहेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए केवल पौष्टिक भोजन करना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियां करना भी जरूरी है। शारीरिक गतिविधियों का अर्थ केवल श्रोता साथियों कठिन व्यायाम या जिम जाना नहीं है। पैदल चलना, दौड़ना, योग करना, साइकिल चलाना, तैरना, खेलना या घर के छोटे बड़े कार्य है वो भी अंजलि जी हम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जिससे साथियों हम देखते हैं कि हमारा शरीर है वो सक्रिय रहता है। हम देखते हैं कि आज की आधुनिक जीवन शैली में शारीरिक गतिविधियों का महत्व है वो और भी बढ़ गया है। पहले लोग अपने दैनिक कामों में अधिक चलते फिरते थे, लेकिन श्रोता साथियों आज तकनीकी और सुविधाओं के कारण हमारा जीवन काफी आनंददायक हो गया है।
1: बिल्कुल,
0: थोड़ी दूरी के लिए भी वाहन का उपयोग करना, घंटों मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना, साथ ही अंजलि जी हम देखते हैं कि लंबे समय तक बैठे रहना हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है।
1: बिल्कुल,
0: इसका सीधा प्रभाव श्रोता साथियों हम देखते हैं कि हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है।
1: जी हां,
0: इसलिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए नियमित शारीरिक गतिविधियां करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल मनीषा, शारीरिक गतिविधि का अर्थ केवल व्यायाम करना नहीं है। शरीर को चलाने वाली हर गतिविधि शारीरिक गतिविधि कहलाती है, जैसे कि सुबह टहलना, दौड़ लगाना, योग करना, साइकिल चलाना, खेतों में काम करना, घर की साफ सफाई करना, सीढ़ियां चढ़ना उतरना, खेल कूद में भाग लेना, नृत्य करना, ये सभी गतिविधियां शरीर को सक्रिय बनाती है और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि नियमित शारीरिक गतिविधियों का महत्व बहुत अलग है, जिससे शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने में मदद मिलती है। श्रोता साथियों, अगर नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियां मजबूत होती है, शरीर में लचीलापन पड़ता है, हड्डियां मजबूत होती है, इससे व्यक्ति अधिक समय तक सक्रिय और सक्षम बना रहता है।
0: जी हाँ,
1: इसी के साथ चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना जैसी गतिविधियां जो है वो हृदय की क्षमता को बढ़ाती है। इससे रक्त संचार बेहतर होता है और हृदय रोगों का खतरा कम होता है।
0: जी हाँ,
1: श्रोता साथियों, आज हम देख रहे हैं कि मोटापा एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। शारीरिक गतिविधियों से शरीर की अतिरिक्त कैलोरी खर्च होती है, जिससे वजन नियंत्रित रहता है और मोटापे की संभावनाएं कम होती हैं।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे कि नियमित व्यायाम शरीर में शुगर के स्तर को संतुलित रखने में मदद करता है, साथ ही रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए जब हम शारीरिक गतिविधियां करते हैं मनीषा, तो शरीर में ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो खुशी और सकारात्मकता का अनुभव कराते हैं।
0: जी हाँ,
1: इससे तनाव, चिंता, अवसाद जैसी समस्याएं कम होती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोगों से मुक्त होना नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी श्रोता साथियों उतना ही आवश्यक है। आज पढ़ाई, काम, परिवार की जिम्मेदारी और जीवन की अन्य परिस्थितियों के कारण अंजलि जी हम देखते हैं कि तनाव है वो बढ़ता जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: शारीरिक गतिविधियां मन को सक्रिय और सकारात्मक बनाए रखने में सहायता कर सकती हैं। पैदल चलने, योग करने, खेल खेलने या अपनी पसंद की कोई सक्रिय गतिविधि करने से श्रोता साथियों हमारे मन को आराम महसूस होता है।
1: जी जी,
0: खुली हवा में कुछ समय पैदल चलना और प्रकृति के बीच रहना हमारे मन को अच्छा रखता है और हमारे मन को शांति देता है।
1: जी जी,
0: इससे अंजलि जी हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में तनाव कुछ समय के लिए भूल जाता है और अपने जीवन का आनंद लेता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि आजकल बच्चे अधिक समय तक मोबाइल और टीवी देखने लगे हैं, इससे उनका शारीरिक विकास प्रभावित होता है। बच्चों को प्रतिदिन हमें खेल कूद, दौड़, रस्सी कूद, कबड्डी, खो खो और अन्य खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
0: जी हाँ,
1: खेल कूद से बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं, एकाग्रता बढ़ती है, आत्मविश्वास विकसित होता है, इसी के साथ अनुशासन की भावना आती है और टीम भावना विकसित होती है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि महिलाओं के लिए भी शारीरिक गतिविधियों का एक अलग महत्व है। महिलाएं घर और परिवार की जिम्मेदारी में व्यस्त रहती हैं, लेकिन उन्हें भी मनीषा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। नियमित योग, तेज चाल से चलना, हल्के व्यायाम महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है। इससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, हड्डियां मजबूत होती है, तनाव कम रहता है, गर्भावस्था और प्रसव के बाद स्वास्थ्य बेहतर रहता है और बढ़ती उम्र में होने वाली समस्याओं का खतरा भी कम होता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं, तो ये बातें हमारी आगे भी हमारे साथियों से ऐसे ही जारी रहेंगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य की ओर रुख करते हैं। आशा करते हैं कि जो बातचीत कार्यक्रम के माध्यम से चल रही है वो आपको अवश्य पसंद आ रही होगी। श्रोता साथियों, अब यही बात करें बुजुर्गों की तो मनीषा, बढ़ती उम्र के साथ शरीर को सक्रिय रखना और भी आवश्यक हो जाता है।
1: जी हाँ,
0: बुजुर्गों को अपनी क्षमता के अनुसार नियमित रूप से टहलना, योग और हल्के व्यायाम करने चाहिए। इससे जोड़ों में जकड़न कम होती है, संतुलन बना रहता है, गिरने का खतरा कम होता है, मानसिक सक्रियता बनी रहती है, जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है।
1: जी हाँ,
0: कहना चाहेंगे कि ग्रामीण जीवन में पहले लोग जो है वो खेतों में काम करते थे, पैदल चलते थे, प्राकृतिक रूप से सक्रिय रहते थे, लेकिन अब मशीनें और सुविधाओं के बढ़ते उपयोग से शारीरिक श्रम कम हो गया है। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने दैनिक जीवन में कुछ समय व्यायाम और सक्रिय गतिविधियों के लिए समय निकालें। गांव में लोग जो हैं वो सुबह सामुदायिक योग कर सकते हैं, खेल प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं, पैदल चलने की आदत विकसित कर सकते हैं, बच्चों को खेल कूद के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। श्रोता साथियों, स्वस्थ जीवन के लिए कुछ सरल नियम है जो हमें बनाने होंगे, जैसे कि प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तेज चाल हम चलें, सुबह शाम योग करें, लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का प्रयोग करें, लंबे समय तक एक जगह बैठे न रहें, बच्चों के साथ खेलें, पर्याप्त पानी पिएं, संतुलित भोजन लें और पर्याप्त नींद लें।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ आज के समय में हम ज्यादातर देख रहे हैं कि मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। इसका सही उपयोग भी हमारे लिए श्रोता साथी बहुत जरूरी है, लेकिन लगातार कई घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रहने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य वो बिगड़ सकता है।
0: बिल्कुल,
1: लंबे समय तक बैठे रहने से शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है। इसलिए श्रोता साथियों, पढ़ाई करते समय या काम करते समय हमें छोटे छोटे ब्रेक लेने हैं। उसमें हमें चलना फिरना है, लोगों से बातें करनी है, हमारी जो भी छोटी मोटी गतिविधियां हैं वो हमें करनी है, जिससे अंजलि जी हम देखते हैं कि हमारा पढ़ाई में और अन्य कार्य है उनमें भी मन लगता है और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी बेहतर रहता है। खासकर श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि बच्चों और युवाओं को स्क्रीन के साथ साथ खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए भी पर्याप्त समय निकालना चाहिए।
0: जी हाँ बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। इसलिए हम सकते हैं कार्यक्रम के माध्यम से कि कई लोग सोचते हैं कि केवल जिम जाने से ही स्वास्थ्य अच्छा रहता है, यह पूरी तरह सही नहीं है। नियमित चलना, योग करना, खेतों में काम करना या घर के काम करना भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जरूरी यह है कि शरीर रोज सक्रिय रहे। श्रोता साथियों, स्वस्थ जीवन किसी दवा के दिन नहीं बल्कि हमारी अच्छी आदतों का परिणाम है। नियमित शारीरिक गतिविधियां हमें केवल बीमारियों से नहीं बचाती है बल्कि जीवन में उत्साह, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा भी भरती है। स्वस्थ शरीर ही हमारे सपनों को पूरा करने का सबसे बड़ा साधन है। इसलिए आज ही संकल्प लें कि हम अपने दिन का कुछ समय शारीरिक गतिविधियों के लिए अवश्य निकालेंगे, चाहे वह सुबह की सैर हो, योग हो, खेलकूद हो या कोई अन्य सक्रिय कार्य। हर कदम हमें बेहतर स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। इसलिए स्वयं स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें और एक स्वस्थ, जागरूक और सशक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान अवश्य दें।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से स्वस्थ रहने के लिए हमारे जीवन में शारीरिक गतिविधियां वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं।
0: बिल्कुल,
1: और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपनी राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो बात करते हैं एक नए विषय को लेकर। तो आज भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान के माध्यम से हम बात करेंगे दोस्तों उन सपनों की जो हमारी आंखों में ही नहीं बल्कि हमारे दिल में भी बसे होते हैं। साथियों, आपने सुना ही होगा कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि जिंदगी एक सीधी सड़क नहीं है, कभी रास्ते आसान होते हैं तो कभी अचानक कोई मोड़ आ जाता है। कई बार साथियों, जिस रास्ते पर उम्मीद से चलते हैं कुछ दूर जाकर लगता है कि शायद हमने गलत रास्ता चुन लिया, कोई फैसला गलत हो सकता है, कोई अवसर हाथ से निकल जाता है और किसी काम में सफलता हमें मिलती है या फिर बनाई हुई हमारी योजना दोस्तों अचानक बदल जाती है। ये सारी जो चीजें हैं वो कई बार हमारे साथ होती है श्रोता साथियों, और हमें ऐसा लगता है कि हमने गलत रास्ता चुन लिया है और अब हमें असफलता ही मिलेगी, सफलता हमें नहीं मिलेगी और हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, उस समय हमारे मन में सिर्फ एक सवाल रहता है और वो है कि क्या सच में मैंने गलत फैसला ले लिया। लेकिन आज का जो हमारा विषय है श्रोता साथियों, वो इसी सोच को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करेगा। जी हाँ साथियों, हम बात करेंगे गलत मोड़ हमेशा गलत मंजिल नहीं देता। तो इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाने का भी कार्यक्रम का दस्तूर है, तो आइए साथियों पहले मनोरंजन करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं और स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले बातचीत की शुरुआत हो चुकी है और बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि गलत मोड़ हमेशा गलत मंजिल नहीं देता, इस विषय को लेकर। श्रोता साथियों, ये जो विषय है वो आज हमारी सोच को बदल देगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जिंदगी में कुछ मोड़ हमेशा मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं होते, बल्कि हमें उस इंसान में बदलने के लिए होते हैं जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के योग्य बन सके। यानी कि साथियों, कई बार असफलता हमें सफलता के और करीब लेकर जाती है। कई बार हमारे द्वारा लिए गए कुछ गलत फैसले श्रोता साथियों हमें आगे के सही फैसलों के लिए तैयार करती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है साथियों कि हर गलत फैसला जिंदगी की हार नहीं होता। हम देखते हैं कि युवावस्था में हम कई फैसले लेते हैं, पढ़ाई से जुड़े हुए, करियर से जुड़े हुए, नौकरी, दोस्ती या फिर हमारे हुनर और भविष्य को लेकर। कभी श्रोता साथियों हमारा फैसला सही साबित होता है तो कभी हम पीछे मुड़कर सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। लेकिन किसी फैसले का मनचाहा परिणाम न मिलना साथियों ये साबित नहीं करता कि आपकी पूरी जिंदगी गलत दिशा में चली गई है। कई बार हमें अपने फैसलों से ये पता चलता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। और श्रोता साथियों आपको बताऊं तो ये समझ भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जब आपको ये पता चलता है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही नहीं है तो आप धीरे धीरे उस रास्ते की ओर बढ़ने लगते हैं जो वास्तव में आपके लिए बेहतर होता है साथियों। इसलिए आप हमेशा ये बात ध्यान में रखें कि हर गलत फैसला जिंदगी की हार नहीं होता। कई बार साथियों गलत फैसले हमें सही फैसले लेने के लिए मजबूत करते हैं। इसी के साथ आपको बताऊं तो रास्ता बदलना और हार मान लेना दो अलग अलग बातें होती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कई युवा साथी ऐसा सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपना लक्ष्य या रास्ता बदल लिया तो इसका मतलब है कि वे असफल हो गए हैं। लेकिन युवा साथियों ऐसा वास्तव में नहीं होता। कभी कभी रास्ता बदलना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी होती है। मान लीजिए कि किसी युवा ने एक क्षेत्र को अपना करियर बनाने का फैसला लिया है, उसने मेहनत उसमें बहुत सारी की, लेकिन कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी रुचि और क्षमता किसी दूसरे क्षेत्र में ज्यादा है। अब श्रोता साथियों अगर वह अपनी गलती समझकर दिशा बदलता है तो ये उसकी हार नहीं होगी, बल्कि ये खुद को बेहतर तरीके से समझने की शुरुआत होगी। साथियों किसी ने सही कहा है कि मंजिल वही हो ये जरूरी नहीं है, जरूरी तो ये है कि यात्रा आपको आगे ले जा रही है या नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों, जैसा कि कार्यक्रम में मेरी आपसे बातें बहुत अच्छी चल रही है और हम बात कर रहे हैं कि गलत मोड़ हमेशा गलत मंजिल हमें नहीं देता है, तो ये बातें मेरी आगे आपसे और भी जारी रहेंगी ऐसे ही। लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवाऊं। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा गीत। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और सुनते रहिएगा आपका अपना वागड़ रेडियो 90.8 FM।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करती हूँ हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों बातें हम ढेर सारी कर रहे थे गीत से पहले भी, और हमने जाना था कि घर गलत फैसला जिंदगी की हार नहीं होता। साथ ही हम ये भी जान पाए थे कि रास्ता बदलना और हार मान लेना दो अलग अलग बातें होती हैं, और उन दोनों बातों की श्रोता साथियों अलग अलग महत्वता होती है। यही अगर बात बताऊं तो कुछ गलत मोड़ हमें खुद से भी मिलाते हैं। हम अक्सर श्रोता साथियों मंजिल की चिंता में ये भूल जाते हैं कि रास्ते हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। कभी असफलता हमें धैर्य सिखाती है, कभी रिजेक्शन हमें अपनी कमियां पहचानने का अवसर देता है, तो कभी श्रोता साथियों किसी का अवसर छूट जाना हमें नए अवसर तलाशना सिखाता है, और कभी कोई गलत निर्णय हमें ये समझा देता है कि मुझे वास्तव में जिंदगी में चाहिए क्या। इसलिए श्रोता साथियों हर मुश्किल अनुभव को सिर्फ नुकसान के रूप में आप मत देखिए, बल्कि उसे मिलने वाली सीख को भी आपको देखना चाहिए। हम फिल्मों और कहानियों में अक्सर देखते हैं श्रोता साथियों कि किसी व्यक्ति ने लक्ष्य बनाया और लगातार मेहनत की, फिर सीधे सफलता हासिल कर ली। लेकिन असली जिंदगी ऐसी नहीं होती दोस्तों। किसी की यात्रा में कई बार रुकावट आती है, किसी को दिशा बदलनी पड़ती है, किसी को दोबारा शुरुआत करनी पड़ती है साथियों, तो किसी को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। अगर आपकी जिंदगी में अभी भी कोई चीज आपकी योजना के अनुसार नहीं चल रही है, तो तुरंत ये निष्कर्ष मत निकालिए साथियों कि सब कुछ खत्म हो चुका है। हो सकता है कि आपकी कहानी अभी उस मोड़ पर हो जहां से एक नई दिशा शुरू होने वाली हो। बिल्कुल साथियों, अगर आप इस तरीके का सकारात्मक विचार अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। साथ ही दूसरों की मंजिल देखकर अपनी यात्रा को गलत भी आप मत समझा कीजिए। आज श्रोता साथियों जैसा कि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के दौर में तुलना करना बहुत आसान हो चुका है। हम किसी की नौकरी देखते हैं, किसी की सफलता देखते हैं, तो किसी का करियर देखते हैं, और सोचने लगते हैं कि सब आगे निकल गए हैं तो मैं पीछे कैसे रह गया। लेकिन हमें साथ में ये भी याद रखना चाहिए कि हम किसी और के जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा देख रहे हैं। हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, हर व्यक्ति की शुरुआत अलग होती है साथियों, हर व्यक्ति की क्षमता और प्राथमिकताएं अलग होती हैं। इसलिए किसी और की यात्रा में अपनी यात्रा की कीमत तय करना बिल्कुल गलत है। आपकी गति अलग हो सकती है, लेकिन आपकी यात्रा कम महत्वपूर्ण नहीं मानी जा सकती साथियों। अगर आपको महसूस हो गया है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, तो सबसे जरूरी काम है रुक कर सोचना। साथियों आप खुद से ये पूछिए कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, और अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, मेरे पिछले फैसले में मैंने क्या सीखा, आगे मुझे क्या अलग करना चाहिए, क्या मुझे अपनी दिशा बदलने की जरूरत है या नहीं। कभी कभी श्रोता साथियों जिंदगी में सबसे बहादुर कम आगे बढ़ने वाले नहीं, बल्कि यह स्वीकार करने वाले होते हैं कि ये रास्ता मेरे लिए सही नहीं है, इसलिए मैं दिशा बदल रहा हूँ। एक गलती श्रोता साथियों आपकी पूरी पहचान कभी नहीं बन सकती। अगर किसी परीक्षा में सफलता आपको नहीं मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप असफल व्यक्ति हैं। अगर किसी काम में उम्मीद के अनुसार आपको परिणाम नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। गलती को श्रोता साथियों एक घटना की तरह देखिए, अपनी पहचान की तरह नहीं। आप खुद से ये कहिए कि मुझसे गलती हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी गलती से सीख जरूर सकता हूँ। फिर श्रोता साथियों आप खुद ही ये देखेंगे कि आपकी ये जो सोच है वो आपको कई गुना आगे बढ़ा देगी। जीवन में परिस्थितियाँ बदल सकती है साथियों। जिस करियर का सपना आपने 18 साल की उम्र में देखा होगा, वो हो सकता है कि कुछ साल बाद आपकी रुचि में बदल जाए। ये बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि इंसान के साथ उसकी सोच भी विकसित होती है। जरूरी नहीं है कि सपना हमेशा बिल्कुल उसी रूप में पूरा हो जैसा आपने पहली बार सोचा था। कभी सपना अपना रूप बदलता है साथियों, लेकिन उसके पीछे की भावना वही रहती है, कुछ अच्छा करना, आगे बढ़ना और अपनी पहचान बनाना। ऐसे में कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आज आपको लगता है युवा साथियों कि आपकी जिंदगी में कोई गलत मोड़ आ गया है, तो आपको थोड़ा सा रुकना है और खुद से ये कहना है कि ये मेरी कहानी का अंत नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक मोड़ है। हो सकता है कि इस मोड़ ने आपको थोड़ा धीमा कर दिया हो, लेकिन दोस्तों इसने आपको कोई ऐसी सीख दी है जो आगे आपकी बहुत मदद करेगी। इसलिए अपने बीते हुए फैसले को लेकर खुद को लगातार दोष देने के बजाय उनसे आप सीखिए। बीता हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन उससे मिलने वाली सीख आपके आने वाले समय को जरूर बदल सकती है। एक छोटी सी बात आप हमेशा याद रखिए साथियों, अगर सड़क चलते हमें पता चले कि रास्ता गलत है, तो क्या हम उसी रास्ते पर सिर्फ इसलिए चलते रहेंगे क्योंकि हमने कुछ दूरी तय कर ली है? हम दिशा बदलेंगे साथियों। ठीक उसी तरह
जिंदगी में भी अगर आपको महसूस होता है कि कोई दिशा आपके लिए सही नहीं है, तो बदलाव से डरिए मत। कभी कभी पीछे हटना भी आगे बढ़ने की एक तैयारी होती है। तो युवा साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से बस इतना याद रखिए कि हर गलत मोड़ आपकी मंजिल छीनने नहीं आता, कुछ मोड़ आपको आपकी असली मंजिल दिखाने भी आते हैं। अगर जिंदगी में कोई फैसला उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा साथियों, तो खुद को खत्म समझने की जरूरत नहीं है। रुकिए, सोचिए और फिर सीखिए, और साथ ही जरूरत पड़े तो अपनी दिशा बदल दीजिए, क्योंकि जिंदगी की खूबसूरती यही है कि हमें हर मोड़ पर एक नई शुरुआत का अवसर मिल सकता है। और शायद आपकी जिंदगी का आज का मुश्किल मोड़ ही आपकी कल की सफलता बनेगा। तो चलिए साथियों, सीखते रहिए, बदलते रहिए और अपने सपनों को उड़ान देते रहिए। इन्हीं बातों के साथ और इन्हीं उम्मीदों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। जाने से पहले दोस्तों, आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और प्यारे से गीत के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्र द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं साथियों, हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी
1: कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है सद्भावना दिवस और अक्षय ऊर्जा दिवस को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: आज कार्यक्रम में इन दोनों ही महत्वपूर्ण विषय पर हमारी श्रोता साथियों से बातचीत रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम के शुरुआती दस्तूर को निभाते हुए क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों, गीत से पहले बातचीत की शुरुआत हो चुकी है और विषय से रूबरू भी आपको हम करा ही चुके हैं कि आज के दिन हम जिस विषय को लेकर बात कर रहे हैं वो हमें प्रेम, शांति, सहिष्णुता और आपसी सम्मान संदेश देता है अंजलि जी।
1: बिल्कुल।
0: और वो है सद्भावना दिवस। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि हर साल आज ही के दिन को भारत में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1: जी जी।
0: ये जो दिन है वो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, क्योंकि अंजलि जी सद्भावना का मतलब होता है दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखना, भेदभाव से दूर रहना और समाज में प्रेम के साथ साथ भाईचारे के साथ रहना। हम देख सकते हैं श्रोता साथियों कि हमारा जो भारत देश है वो अनेकता में एकता का देश माना जाता है। यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां, परंपराएं और जीवन शैलियां जीवित है अंजलि जी। हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है श्रोता साथियों।
1: जी जी।
0: लेकिन ये विविधता तभी सुंदर बनती है जब हम एक दूसरे की भावनाओं और मान्यताओं का सम्मान करें।
1: बिल्कुल कशिश, हमारा समाज अलग अलग रंगों से मिलकर बना है। किसी की भाषा अलग है तो किसी की बोली अलग है, किसी का पहनावा अलग है तो किसी की परंपरा अलग है, किसी के विचार हमसे मिलते हैं तो किसी के विचार हमसे बिल्कुल अलग हो सकते हैं। लेकिन श्रोता साथियों, इन्हीं सभी अलग अलग पहचानों के बीच एक चीज ऐसी है जो हम सभी को एक दूसरे से जोड़ती है, वो है इंसानियत और सद्भाव।
0: जी जी।
1: इसी सद्भावना को मजबूत करने के लिए हर वर्ष 20 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: यह दिन हमें याद दिलाता है कि समाज की असली ताकत केवल उसकी आर्थिक संपन्नता या बड़ी ईमानदारियों से नहीं होती, बल्कि इस बात में होती है कि वहाँ रहने वाले लोग एक दूसरे के सुख दुख में कितनी मजबूती से साथ खड़े होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सद्भावना का अर्थ श्रोता साथियों केवल किसी से प्रेम पूर्वक बात करना नहीं है। सद्भावना का अर्थ है दूसरे व्यक्ति को समझने की कोशिश करना, उसके सम्मान को स्वीकार करना, मतभेद होने पर भी संबंधों को बनाए रखना और समाज में सहयोग, शांति और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो सद्भावना है वो केवल एक दिन मनाने का विषय नहीं है। ये हमारे श्रोता साथियों दैनिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, किसी बुजुर्ग का सम्मान करते हैं या किसी बच्चे को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं साथियों, पड़ोसी के सुख दुख में साथ खड़े होते हैं या किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करते, तभी हम वास्तव में सद्भावना को अपने जीवन में उतार पाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, जरा सोचिएगा कि अगर हमारे गांव, मोहल्ले और कस्बे में हर व्यक्ति दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहे तो हमारा समाज कितना सुंदर बन सकता है अंजलि जी। सद्भावना की शुरुआत हमारे अपने घर से ही होती है साथियों। परिवार में बच्चों को ये सिखाना बहुत जरूरी हो जाता है कि सभी मनुष्य बराबर होते हैं, हमें दूसरों के धर्म, संस्कृति का सम्मान करना चाहिए और किसी की भाषा, पहनावे या रहन सहन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही हमें अफवाहों पर विश्वास करने के बजाय सही जानकारी की पुष्टि भी करनी चाहिए।
1: जी हाँ कशिश, अक्सर हम सद्भावना शब्द सुनते हैं लेकिन क्या हमने कभी रुक कर सोचा कि इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या अर्थ है? अगर पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति हमारी मदद करता है और हम भी जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करते हैं तो यह सद्भावना है। अगर गांव में किसी परिवार पर संकट आता है और जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति देखे बिना गांव के लोग उसके साथ खड़े होते हैं तो यह भी सद्भावना है। अगर किसी बच्चे को स्कूल में पढ़ाई समझ नहीं आती और दूसरा बच्चा उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसे समझाता है तो यह सद्भावना है। अगर दो लोगों के बीच श्रोता साथियों किसी बात को लेकर विवाद हो जाए तो तीसरा व्यक्ति आग में घी डालने के बजाय दोनों को समझाकर मामला शांत करता है तो ये भी सद्भावना है।
0: बिल्कुल।
1: यानी कि सद्भावना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, यह हमारे छोटे छोटे व्यवहारों से पैदा होती है। हम किसी को सम्मान से संबोधित कर सकते हैं, किसी बुजुर्ग की बात को ध्यान से सुन सकते हैं तो श्रोता साथियों कभी किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, इसके दुख में अगर किसी के दुख में हम उसका साथ देते हैं तो यही छोटी छोटी जो बातें हैं वो समाज में विश्वास पैदा करती है।
0: जी हाँ।
1: कशिश, आज हमारा जीवन पहले की तुलना में बहुत ज्यादा तेजी से बदल रहा है। मोबाइल फोन और इंटरनेट ने दुनिया को हमारे साथ मिला दिया है।
0: जी जी।
1: पर हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड में देश दुनिया की खबरें जो हैं वो जान लेते हैं हम। लेकिन तकनीकी ने दूरी कम करने के साथ साथ एक चुनौती पैदा की है कि कई बार बिना पूरी जानकारी के कोई भी संदेश या वीडियो हमारे पास आता है तो हम उसे सच मानकर आगे भेज देते हैं। इससे गलत फहमी पैदा हो सकती है। कभी कभी छोटी सी बात जो है वो विवाद का कारण बन जाती है। ऐसे समय में सद्भावना की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें ये समझना होगा कि हर बात पर सहमत होना जरूरी नहीं है, लेकिन असहमति के बावजूद सम्मान बनाए रखना जरूरी है।
0: जी हाँ,
1: हम किसी व्यक्ति से के विचार से असहमत हो सकते हैं, लेकिन कशिश इसका मतलब यह नहीं है कि हम उस व्यक्ति का अपमान करें। हमारी बोली अलग हो सकती है लेकिन दिलों में दूरी जरूरी नहीं। हमारी परंपराएं अलग हो सकती हैं लेकिन एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान किया जा सकता है, और यही सद्भावना है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि हम बातें कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से कर ही रहे हैं सद्भावना दिवस को लेकर, आगे ये बातें हमारी ऐसे और भी जारी रहेंगी।
1: जी जी,
0: लेकिन अभी क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना
1: जी
0: कि
1: हाँ।
0: किस तरीके से सद्भावना का हमारे जीवन में महत्व है और हमें इसे किससे समझने की जरूरत है और इसके किस तरीके से जो प्रभाव है वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, आप सभी को कहना चाहेंगे कि आज हमारा जो जीवन है जो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। गाँव का जीवन आपसे सहयोग पर टिका होता है कशिश। गाँव में किसी के घर शादी हो तो पड़ोसी मदद के लिए पहुंच जाते हैं
1: जी,
0: किसी के घर बीमारी हो जाए तो लोग हालचाल पूछने जाते हैं। किसी किसान के खेत में अचानक परेशानी आ जाए तो आसपास के लोग उनके हाथ उनके काम में हाथ बटाते हैं। यदि ये सारी जो चीजें हैं वही सामुदायिक जो शक्ति है उसके महत्व को हमें बताती है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, हमारे गाँव की पुरानी परंपराओं में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की भावना रहती है। कुआं साफ करना हो, रास्ता ठीक करना हो, तालाब की सफाई करनी हो या किसी सामुदायिक आयोजन की तैयारी करनी हो, लोग मिलकर काम करते हैं। आज हमें उसी भावना को नए रूप में आगे बढ़ाने की जरूरत है
1: जी जी।
0: गांव में कशिश, अगर किसी परिवार के बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो केवल यह कह देना कि ये उनकी समस्या है तो पर्याप्त नहीं है। हमें परिवार को समझाना चाहिए
1: जी हाँ।
0: अगर किसी घर में बुजुर्ग अकेले है तो पड़ोसी समय निकाल कर उनसे बातचीत कर सकता है। अगर किसी परिवार के सरकारी योजना की जानकारी अगर उसे नहीं है और उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो गांव का जागरूक व्यक्ति उसे सही जानकारी तक पहुंचाने में मदद कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: जहां लोग एक दूसरे की चिंता करते हैं वहां कशिश समाज मजबूत होता है
1: जी हाँ। अंजलि जी, आपने ये बात सही कही। इसी के साथ हमारे साथियों को हम बताना चाहेंगे कि सद्भावना का सबसे बड़ा आधार संवाद भी है। साथियों, जब लोगों के बीच गलतफहमियां होती है तो बातचीत के माध्यम से उसे दूर किया जा सकता है। हमें असहमति होने पर भी हम एक दूसरे का सम्मान कर पाते हैं श्रोता साथियों। ऐसे में हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक समाज में अलग अलग विचार होना स्वाभाविक है, लेकिन विचारों की भिन्नता को दुश्मनी में बदलना उचित नहीं है। साथियों, हमारे सामुदायिक जीवन में भी सद्भावना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि गाँव में होने वाले त्योहार, मेले, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ग्राम सभाएं, सामाजिक अभियान लोगों को एक दूसरे के करीब लाने का अवसर देते हैं
0: जी हाँ।
1: यदि अंजलि जी, इन अवसरों पर सभी समुदाय मिलकर भाग लें तो सामाजिक एकता और हम कह सकते हैं कि जो चीजें होती है वो काफी मजबूत हो जाती हैं। सद्भावना का मतलब केवल दोस्तों आपसी प्रेम नहीं है बल्कि समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों के प्रति संवेदनशील होना भी है
0: जी हाँ।
1: हमें बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, गरीब परिवारों और जरूरतमंद बच्चों की सहायता के लिए हमेशा आगे आना चाहिए क्योंकि हमारी छोटी सी मदद भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है।
0: बिल्कुल कशिश, एक महत्वपूर्ण बात हमें समझनी होगी कि मतभेद होना बुरी बात नहीं है। एक परिवार में रहने वाले लोगों की पसंद अलग हो सकती है, पति पत्नी के विचार अलग हो सकते हैं, भाई बहन किसी मुद्दे पर अलग राय रख सकते हैं
1: जी जी।
0: गाँव में भी अलग अलग लोगों की अलग राय हो सकती है। श्रोता साथियों, समस्या मतभेद में नहीं बल्कि मतभेद को मनभेद में बदल देने से होती है। जब हम अपनी बात को ही हमेशा सही मानते हैं और दूसरों की बात सुनना बंद कर देते हैं तब दूरियां पड़ने लगती है
1: जी हाँ।
0: सद्भावना हमें सिखाती है कि पहले दूसरों की बात सुनिए फिर अपनी बात रखिए। किसी बात से असहमति है तो तर्क से बात कीजिए, गुस्से, अपशब्द और आरोप से नहीं क्योंकि एक कठोर शब्द कई वर्षों का रिश्ता जो है वो कमजोर कर सकता है
1: जी जी।
0: जबकि एक प्यारा भरा जो शब्द होता है वो टूटे हुए रिश्तों को भी संभाल सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। श्रोता साथियों, हमें अपने पर्यावरण के प्रति भी सद्भावना रखनी चाहिए, जैसे कि स्वच्छ गांव, स्वच्छ मोहल्ला, पेड़ पौधों की रक्षा, जल संरक्षण और सार्वजनिक स्थानों की सफाई जैसे कार्य सामुदायिक सहयोग से ही सफल हो पाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जब अंजलि जी हम सब मिलकर काम करते हैं तो न केवल समाज हमारा मजबूत होता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी बेहतर बनता है। ऐसे में दोस्तों, आज सद्भावना दिवस के मौके पर हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। हम दूसरों की भावनाओं और विचारों का सम्मान करेंगे। हम अफवाहों और नफरत फैलाने वाले संदेशों को भी आगे नहीं बढ़ाएंगे साथियों।
0: बिल्कुल,
1: और साथ ही हम जरूरतमंद लोगों की सहायता करने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। हम अपने गांव और समाज में शांति के साथ साथ स्वच्छता और भाईचारा को बढ़ावा देंगे
0: जी हाँ।
1: और सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों कि हम अपने व्यवहार से यह साबित करेंगे कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि हम अक्सर समाज को बदलने की बात करते हैं, लेकिन समाज परिवारों से मिलकर बनता है। अगर घर में ही एक दूसरे की बात नहीं सुनी जाती तो बच्चों को लगातार डांटा जाता है, बुजुर्गों की उपेक्षा की जाती है या परिवार के सदस्यों के बीच सम्मान की कमी है तो बाहर जाकर सद्भावना की बात करना अधूरा होगा। बच्चे वही सीखते हैं जो वे घर में देखते हैं। अगर माता पिता किसी पड़ोसी के बारे में हमेशा बुरा बोलेंगे तो बच्चा भी दूसरों के प्रति नकारात्मक सोच विकसित कर सकता है। लेकिन अगर हर घर में माता पिता कहते हैं कि हर इंसान का सम्मान करो, किसी का मजाक मत उड़ाओ, जरूरतमंद की मदद करो, बिना जाने किसी के बारे में राय मत बनाओ, तो यही बातें कशिश बच्चों के व्यक्तित्व का हिस्सा बनती है। सद्भावना दिवस केवल एक दिन मनाने का अवसर नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि घर से एक अच्छी शुरुआत करने का मौका भी है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो ऐसे में हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दोस्तों को यही कहना चाहेंगे कि साथियों, हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि सद्भावना किसी बड़े आयोजन से कभी पैदा नहीं होता, ये हमारे छोटे छोटे व्यवहारों से ही बनेगा। किसी को सम्मान देना, किसी की बात ध्यान से सुनना और जरूरत के समय किसी का हाथ थामना या बढ़ाना, नफरत की जगह प्रेम को चुनना श्रोता साथियों, यही सच्ची सद्भावना है।
0: बिल्कुल,
1: हम ऐसा समाज बनाने का प्रयास करें जहां हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे, हर संस्कृति का सम्मान हो और हर इंसान को आगे बढ़ने का अवसर मिले। अंजलि जी
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने बहुत अच्छे तरीके से ढेर सारी बातों को जान रहे हैं हम कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं बातचीत की ओर। जैसा कि बातें बहुत अच्छी चल रही है सद्भावना दिवस को लेकर, अंजलि जी, हम गीत से पहले भी जान रहे थे, अब यहीं अगर श्रोता साथियों को हम अक्षय ऊर्जा दिवस

0: नई ऊर्जा से भर जाता है। हम रोज सूरज को देखते हैं कशिश, हवा को महसूस करते हैं और बारिश को अपनी आंखों से देखते हैं।
1: जी जी।
0: लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यही प्रकृति हमारे घरों, खेतों और गांवों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है?
1: बिल्कुल।
0: आज हमारा कार्यक्रम का विषय है अक्षय ऊर्जा दिवस को लेकर।
1: जी हाँ, जैसा
0: कि आपने बताया था कि किस तरीके से यह जो दिवस है वो मनाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि अक्षय ऊर्जा यानी ऐसी ऊर्जा जो प्रकृति के ऐसे स्रोतों से प्राप्त होती है जो लगातार या बार बार उपलब्ध होता रहे, जैसे कि सूर्य, हवा, पानी और जैविक पदार्थ।
1: जी जी।
0: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अक्षय ऊर्जा दिवस केवल एक अवसर नहीं है, यह हमें उस दिन को याद दिलाता है जिस दिन के लिए हमें आने वाले दिनों को भूलना नहीं चाहिए। इस तरह के दिवस हमें किसी महत्वपूर्ण विषय पर सोचने, समझने और व्यवहार करने में बदलाव लाने का अवसर नहीं देते कशिश।
1: जी जी।
0: आज हमें खुद से यह पूछना चाहिए कि क्या हमारे घर में बिजली की बर्बादी होती है? क्या हम अनावश्यक रूप से पंखों और बल्ब को चलाते हैं? क्या हमारे गाँव में सौर ऊर्जा का उपयोग जो है वो हो रहा है? क्या खेती में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल उपयोगी हो सकता है? क्या पशुओं के गोबर से बायोगैस बनाई जा सकती है?
1: बिल्कुल।
0: और क्या श्रोता साथियों अपने बच्चों को ऊर्जा बचाने की आदत हम सिखा रहे हैं? इन सवालों के जवाब ही हमें अपने समुदाय के ऊर्जा भविष्य की दिशा दिखा सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। अगर यहाँ पर हमारे साथियों से हम बात करें कि हमारे जीवन में ऊर्जा का क्या महत्व होता है, तो श्रोता साथियों जरा अपने आसपास आप देखिए। जब सुबह घर में पंखा चलता है, मोबाइल चार्ज हो रहा होता है, पानी की मोटर चलती है, खेतों में सिंचाई होती है और दुकानें और बाजार रोशन होते हैं, अस्पतालों में मशीनें चलती हैं और स्कूल में पढ़ाई होती है।
0: जी जी।
1: अंजलि जी, हमारे दैनिक जीवन का लगभग हर क्षेत्र किसी न किसी रूप में ऊर्जा पर निर्भर है। आज जनसंख्या और विकास के साथ ऊर्जा की मांग बहुत बढ़ रही है दोस्तों, इसलिए केवल अधिक ऊर्जा पैदा करना ही पर्याप्त नहीं है, हमें साथ में ये भी सोचना होगा कि ऊर्जा कहाँ से आएगी, इसका उत्पादन पर्यावरण के लिए कितना सुरक्षित होगा। और यही अक्षय ऊर्जा का महत्व सामने आता है अंजलि जी।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं कि भारत जैसे देश में सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे प्राकृतिक स्रोत है। हमारे देश के अनेक हिस्सों में दोस्तों वर्ष के अधिकांश समय पर्याप्त धूप मिलती है।
0: जी जी।
1: इस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग सौर ऊर्जा के रूप में किया जाता है। अंजलि जी, सोलर पैनल सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में बदलने में मदद करते हैं। आज सौर ऊर्जा का उपयोग कई क्षेत्रों में हो रहा है, जैसा कि आपने भी बताया था कि हम घरों की बिजली में इसका उपयोग कर रहे हैं, स्ट्रीट लाइट बन रही है श्रोता साथियों, पानी गर्म करने, सिंचाई के लिए सोलर पंप, और कह सकते हैं कि ढेर सारे ऐसे काम है जहां हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी सौर ऊर्जा विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है, क्योंकि खेतों, पशुपालन और छोटे व्यवसायों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता लगातार बनी रहती है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही हम हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि हमारे जीवन में सूर्य का महत्व किसी से छिपा नहीं है।
1: जी।
0: सूर्य हमें प्रकाश देता है, पौधों को बढ़ने में मदद करता है, धरती को गर्मी देता है और मौसम और जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन श्रोता साथियों, सूर्य की रोशनी से बिजली भी पैदा हो सकती है। सोलर पैनल सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में बदलने में मदद करता है।
1: जी हाँ।
0: आज सौर ऊर्जा का उपयोग घरों, संस्थानों, खेतों और अलग अलग सामुदायिक जरूरतों के लिए किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कशिश इसकी संभावनाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि कई जगहों पर खुले स्थान और पर्याप्त धूप उपलब्ध होती है। कल्पना कीजिए श्रोता साथियों कि आपके घर की छत पर सोलर पैनल लगे हैं, दिन में सूर्य की रोशनी से बिजली पैदा हो रही है और उसी बिजली का उपयोग घर की जरूरतों को पूरा करने में किया जा रहा है।
1: जी हाँ।
0: इस तरह परिवार अपनी बिजली व्यवस्था में सौर ऊर्जा को शामिल कर सकता है। लेकिन साथियों, सोलर सिस्टम लगाने से पहले केवल किसी पड़ोसी या दुकानदार की बात पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। अपनी जरूरत के अनुसार सिस्टम की क्षमता, लागत, रखरखाव, उपकरणों की गुणवत्ता, वारंटी और उपलब्ध सरकारी सहायता की सही जानकारी लेना भी जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: सही जानकारी के साथ अपनाई गई जो तकनीक होती है कशिश, वही लंबे समय में लाभ देती है।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ कहना चाहेंगे कि हमारे ग्रामीण जीवन में खेती और पानी का गहरा संबंध है। किसानों को सिंचाई के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कई जगहों पर तो बिजली उपलब्ध है। डीजल की लागत और सिंचाई की जरूरत किसानों के लिए चुनौती बन सकती है।
1: जी बिल्कुल।
0: ऐसी स्थिति में कशिश, सौर ऊर्जा से चलने वाली कृषि पंप जो होते हैं वो उपयोगी विकल्प होते हैं।
1: जी हाँ।
0: सूरज की रोशनी उपलब्ध होने पर सोलर पैनल बिजली

0: पैदा करते हैं और उसका उपयोग पंप चलाने में किया जा सकता है। इससे डीजल पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है। लेकिन यहाँ भी किसानों को अपने खेत की स्थिति, पानी के स्रोत, पंप की क्षमता और आर्थिक गणना को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: किसी भी योजना या सब्सिडी की जानकारी के लिए संबंधित सरकारी विभाग या आधिकारिक स्रोत जो होते हैं वहाँ के नियमों की जानकारी हमें अवश्य लेनी चाहिए।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि श्रोता साथियों से हमारी कार्यक्रम के माध्यम से बातें चली रही हैं, हम जान रहे हैं अक्षय ऊर्जा दिवस को लेकर, और अक्षय ऊर्जा जो है वो हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्व रखती है,
0: बिल्कुल
1: उपयोगी है, इस विषय पर हम बातचीत कर ही रहे हैं। आगे ये बातें और भी हैं जो ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं साथियों एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।
1: तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान रहे थे, यही साथियों पानी की शक्ति से बिजली के बारे में बात करें तो पानी हमारे जीवन की सबसे जरूरी जरूरतों में से एक है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन पानी की गति में भी ऊर्जा होती है। बहते या गिरते पानी की शक्ति का इस्तेमाल हम देखते हैं कि कई चीजों को चलाने और बिजली पैदा करने में किया जाता है।
1: जी बिल्कुल।
0: इससे जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। बड़ी जल विद्युत परियोजना के अलावा कुछ स्थानों पर छोटी जल विद्युत परियोजना भी उपयोगी हो सकती है। लेकिन श्रोता साथियों, जल संसाधनों का उपयोग करते समय पर्यावरण और स्थानीय समुदाय की जरूरतों का ध्यान रखना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: विकास ऐसा होना चाहिए कशिश जिनमें प्रकृति और समुदाय दोनों का हित सुरक्षित हो। श्रोता साथियों, बात करें गाँव की तो गाँव से सीधे जुड़े एक संसाधन की तो वो है पशुओं का गोबर। हमारे गाँव में पशुपालन आम है। पशुओं से मिलने वाला गोबर अलग खुले में पड़ा रहे तो समस्या बन सकता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन उचित तकनीक में इसका उपयोग ऊर्जा और खाद दोनों के लिए किया जा सकता है। गोबर गैस संयंत्र में गोबर और अन्य उपयुक्त जैविक पदार्थों से गैस बनाई जा सकती है और इस गैस का उपयोग खाना पकाने जैसे कार्यों में किया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इसके बाद बची हुई जैविक सामग्री का उपयोग खाद के रूप में किया जा सकता है। यानी कि गोबर, बायोगैस, ऊर्जा, जैविक खाद, खेती में उपयोग। यह एक अच्छा उदाहरण है कि गांव में उपलब्ध संसाधनों को सही तरीके से उपयोग करके उन्हें उपयोगी बनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: फसल कटने के बाद खेतों में कशिश हम दिखते हैं कि कई तरीके के अवशेष बचते हैं। यदि उनका उचित प्रबंधन किया जाए तो उनमें से कुछ जैविक सामग्री का उपयोग ऊर्जा उत्पाद के लिए किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है श्रोता साथियों कि खेतों में हर तरह के अवशेष को जलाना उचित है। फसल अवशेष चलाने से धुआं और प्रदूषण बढ़ सकता है और मिट्टी के लिए भी नुकसान हो सकता है। इसलिए जहां संभव हो फसल अवशेष जो है उनका उपयोग खाद, पशु आहार, जैविक संसाधन या उपयुक्त ऊर्जा उत्पाद बनाने के लिए ही करना चाहिए और यही सबसे अच्छी विकल्प है और इसके लिए जागरूक होने की भी जरूरत है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, हमारे ग्रामीण श्रोता साथियों के लिए हम कहना चाहेंगे कि दोस्तों, किसानों को सिंचाई, पशुपालन, अनाज की सफाई, भंडारण और कृषि से जुड़े दूसरे कामों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती ही है। ऐसे में सौर ऊर्जा से चलने वाले जो पंप है वो कई परिस्थितियों में सिंचाई के लिए उपयोग हो सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इससे किसानों को ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का लाभ मिल सकता है। साथ ही इसी तरह कृषि अवशेषों, जैविक पदार्थों, बायोगैस और अन्य प्रकार की जो जैव ऊर्जा होती है अंजलि जी, वो भी तैयार की जा सकती है।
0: जी हाँ।
1: इससे दोस्तों, एक तरफ कचरे का बेहतर उपयोग भी हो सकता है और दूसरी तरफ उपयोगी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। अब प्रश्न ये है कि क्या गाँव में अक्षय ऊर्जा उपयोगी मानी जाएगी? दोस्तों, बिल्कुल मानी जाएगी, क्योंकि गाँव में अक्षय ऊर्जा के अनेक उपयोग हो सकते हैं। जैसा कि आपने भी बताया अंजलि जी, सौर ऊर्जा से घरों और गलियों में कह सकते हैं कि रोशनी की व्यवस्था की जा सकती है। सौर ऊर्जा आधारित उपकरण छोटे व्यवसायों में मदद कर सकते हैं। पशुपालन वाले परिवार गोबर से बायोगैस तैयार कर सकते हैं, जैसा कि आपने बताया।
0: बिल्कुल।
1: और जो कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा है उससे आधारित उपकरणों का उपयोग भी किया जा सकता है।
0: जी हाँ।
1: साथियों, इसका एक और फायदा ये भी है कि ऊर्जा का उत्पादन स्थानीय स्तर पर करने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी।
0: बिल्कुल। कृषि श्रोता साथियों को यही कहना चाहेंगे कि इस अक्षय ऊर्जा दिवस पर हम प्रकृति से एक वादा करें कि ऊर्जा का उपयोग करेंगे लेकिन दुरुपयोग नहीं करेंगे। प्रकृति से लेंगे लेकिन प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी भी निभाएंगे और अपने गाँव और अपने समुदाय और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ जो भविष्य है वो बनाने में अपना योगदान देंगे। तो आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम की जो बातें हैं वो हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
1: जी बिल्कुल।
0: क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता बता दें, ताकि आज का ये कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा उसके लिए वह राय सुझाव हमें पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार साथी दोस्तों, आप सभी को छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल और आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है। तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जमशेदपुर से। फिल्म का नाम है वंश। गीत के बोल हैं, आके तेरी बाहों में हर शाम लगी सिंदूरी। इस गीत की फरमाइश करता है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी जी भाटिया। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं पटेल नगर मालोट से डॉक्टर रमेश कुमार झंझोरिया, गीता रानी झंझोरिया, गंदीप झंझोरिया, गुड्डू जी झंझोरिया। इस गीत की अनुरोध करता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, रंजन शाह, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से सूरज गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है वंश। गीत के बोल ही, आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजुडवारा उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है बाजीगर, गीत के बोल हैं बाजीगर में बाजीगर। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरानी इरशाद, अरमानी इरशाद, नवीद इरशाद, हजरत अबूसम जी। बनारस से जुड़ रहे हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन जी। इस गीत के अनुरोध करता है चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, माला ठाकुर, बब्बन शीनू, कानाहारनी प्रिया जी ठाकुर। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं बाजीगर में बाजीगर। फिल्म का नाम है बाजीगर और इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने, कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मस्तानपुरा से। फिल्म का नाम है सर, गीत के बोल हैं सुन सुन बरसात की धुन। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना जी भगत। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं भागपत यूपी से, आसिफ अली खान, मुमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे जनकपुरी, सहारनपुर से जून डिकी स्टोर, रोजी डिकी स्टोर, पल डिकी स्टोर।

सिटी की स्टोम। इस गीत के अनुरोध करता है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव, अपर्णव जी नामदेव। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं सुन सुन बरसात की धुन। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, अभी हमने कुमार सोनू जी की आवाज में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे सुन सुन बरसात की धुन। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अमरावती से। फिल्म का नाम है आंखें, गीत के बोल हैं मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और इस गीत के अनुरोध करता है श्याम की टी, वंदना की टी, कार्तिक की टी, भाविका जी की टी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं दिल्ली से, तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चेतनी मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव खुराना, रिधानजी खुराना। अमरावती महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चनाताई गुड़ाने, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामन शेंडी, प्रतिभाजी गुड़ाने, महेश राम टेके जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है आंखें और गीत के बोल हैं मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल के साथ में।

0: रात कभी कभी।
1: दोस्तों अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना लता जी की आवाज़ में। गीत के बोल थे मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है यतला महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है पड़ोसन। गीत के बोल ही मेरे सामने वाली खिड़की में। इस गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, सुप्रसाद जायसवाल, अपर्णव जायसवाल, राखी जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल और तृप्ति जी जायसवाल। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जनकपुर सहारनपुर से जोन डिकिस्टो, रोज डिकिस्टो, पल डिकिस्टो, विलेज डिकिस्टो। इस गीत के अनुरोध करता है भागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बेटिया अंजलि, नीति जगमोहन, सुधीर नितन जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं दुर्गा कोहली ने हंसी से, राजू मिलकानी, बबीता मिलकानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही मेरे सामने वाली खिड़की में। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: अरे
1: 5 दोस्तों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है धनोरी तेलीवाला सी। फिल्म का नाम है हीरा रांझा, गीत के बोल हैं मिलो ना तुम तो हम घबराएं। इस गीत को आवाज़ दी लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है निसार सलमानी, नुसार सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। इसे भी जुड़ना चाह रहे वासिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरुषी, सुषमा सुरुषी, परिधि सुरुषी, मायराजी सुरुषी। इस गीत के अनुरोध करता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूला श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत रामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है हीर रांझा, गीत के बोल है मिलो ना तुम तो हम घबराएं। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है वासीम महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है किस्मत, गीत के बोल हैं कजरा मोहब्बत वाला। इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है मास्टर विठल सुरेशी, सुषमा सुरुधी, परिधि सुरुशी, मायराजी सुरुशी और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। भागपत से आसिफ अली खान, मुमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं सहारनपुर से राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव, अपन नवजी नामदेव। जलालाबाद वेस्ट से जुड़ रहे हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशाने निमित आहूजा जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बलाई छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है लोफर, गीत के बोल हैं आज मौसम बड़ा बेईमान है। इस गीत की फरमाइश करता है दीपक खटक, प्रमिला जी खटक। चंद्रनगर सहारनपुर से जुड़े हैं सुरेश डोमिन और शालिनी डोमिन। लाहौरा से जुड़ना चाह रहे हैं डोली प्रभा, नेहा जी प्रभा। इसे भी जुड़ना चाह रहे दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। पटेल नगर मालोड़ से जुड़ रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार झांझोरिया, गीता रानी झांझोरिया, गंदीप झांझोरिया, गुड्डू जी झांझोरिया। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं आज मौसम बड़ा बेईमान है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

नमस्कार श्रोता साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश का सिलसिला हमारा आपके साथ रोजाना बना रहता है, सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। साथियों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं, आप भी अपनी फरमाइश की गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, ज़रूर पहुंचा सकते हैं साथियों हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। हमारा नंबर है 9414082643। नंबर फिर से बताना चाहूँगी दोस्तों, क्योंकि इसी नंबर के ज़रिए आप अपने राय सुझाओ और फरमाइश की गीतों के लिए अपने फरमाइश भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों, हम इंतज़ार रहेगा आपके फरमाइश गीतों का। अब जैसा कि कार्यक्रम में फरमाइश का सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सभी सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता मनीषा पटेल के साथ में, और इसे अब आप आगे सुनने वाले हैं मेरे साथ, यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में। तो दोस्तों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत गंजू द्वारा उत्तर प्रदेश से आया है साथियों। फिल्म का नाम है दोस्तों मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। गीत के बोल है चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में, जो पसंद करते हैं इसी गीत को, गंजू द्वारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज बेगम, इमराना नाथ, नाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव जी, और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अनवार इशरा, अजरा तबस्सुम नवेद इरशाद जी। बनारस से हैं अब्दुल मजिद अंसारी, नौरेन आसना, मोहम्मद आफिया कैफ अंसारी जी। छत्तीसगढ़ कोरबा से जुड़ना चाह रहे हैं लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, माला ठाकुर, मानो शानो बब्बन मुनहू काना हरिप्रिया जी। हमारे साथी जुड़ रहे हैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव, अर्पणा नामदेव जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं चुरा के दिल मेरा गोरियां चली। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथी, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है हीरा पन्ना। गीत के बोल हैं, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। इस प्यारे से गीत को आवाज़ दी है किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर जी ने। फरमाइश करता है इस गीत के साथ अब जुड़ना चाह रहे हैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव, अर्पणा नामदेव, अभिषेक नामदेव और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। नाम बताना चाहूँगी, छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से जुड़ना चाह रहे हैं लक्ष्मण सिंह ठाकुर, बानु शानु मुन्हू, कान्हा हरिप्रिया जी और सावित्री देवी ठाकुर। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। मस्तानपुरना जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा चेतन, सुलोचना भगत। बागपत यूपी से आसिफ अली खान, मोमिन अनाज, सादिक अली खान, सारिक अली खान। सहारनपुर से हैं जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलिस डिकेस्टो जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तब तक आप बने रहिएगा साथियों कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। साथियों, अगली फरमाइश हमारे बीच आई है, मैं आपको बताना चाहूँगी। फिल्म का नाम है जान तेरे नाम। गीत के बोल हैं, हम लाख छुपाएं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। फरमाइशकर्ता सहारनपुर से जुड़ रहे हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रिडिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विज डिकेस्ट्रो जी, और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूँगी, जुड़ रहे हैं बागपत यूपी से आसिफ अली खान, मोमिन अनास, मुस्कान सादिक अली खान, सारिक अली खान, और भी श्रोता साथी बिहार कॉलोनी दिल्ली से हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीर्वाद चैतन्य मस्किन, मीखा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल, रचिता, किशोरी दान खुराना जी, अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुणाने, अर्चना ताई गुणाने, प्रण प्रसिद्धि, हीरामन शंडे जी, प्रतिभा गुणाने, महेश रोमटगी जी, जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनीष देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधुनूतन, शिशपाल अकेला जी, तेजपाल प्रजापति जी, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। तो आइए श्रोता साथियों, मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, हम लाख छुपाएं प्यार मगर। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

दोस्तों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, हम लाख छुपाएं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा आएगा। तो फिर से बढ़ते हैं श्रोता साथियों अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। गीत के बोल हैं परदेसी परदेसी जाना नहीं। फरमाइश करता है इस गीत के जुड़ रहे भिलाई छत्तीसगढ़ से। बताना चाहूँगी जुड़ रहे हैं दीपक खट्टक, प्रमिला खट्टक, चंद्रशहर सहारनपुर से सुरेंद्र रविंद्र, सोलानी डोमेंद्र, डोली मिन्हाज जी, प्रभा मिन्हाज जी, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगेजा, पुनम गंगेजा, विशाल प्रिया दिशानी, निमित आहूजा जी, धनौरी तेलीवाला से निशाद सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू जी। और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। वसीम महाराष्ट्र से मास्टर विठल, सुरेशी सुषमा सुरदे, पदी सुर से मायरा सुरसे जी, बक्सर बिहार शहर से जुड़ रहे हैं फातिमा राज, बेबी अंसारी, डब्ल्यू अंसारी जी, दिल्ली से हैं जुड़ना चाह रहे हैं दोस्त, आपको बताना चाहूंगी जुड़ रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगेजा, पूनम गंगेजा, विशाल दिशानी, निमित्त आहूजा जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं परदेसी परदेसी जाना नहीं। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है साथियों अंबाला हरियाणा से। फिल्म का नाम है दोस्तों बताना चाहूंगी। गीत के बोल हैं वादा ना तोड़ और फिल्म का नाम है दोस्तों दिल तुझको दिया। फरमाइश करता है इस गीत के जुड़ना चाह रहे हैं, जो पसंद करते हैं इसी गीत को। इन श्रोता साथियों ने इस गीत की फरमाइश की है हरियाणा से। रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका नमन, गुरकिरत चंदन, मन्नत, गुरसिद्ध सिंह राहुल, विजेंद्र कुमार जयचान, बाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, आनंद राठौड़, गिरजा राठौड़, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी, वेदही जोशी। खंडवा मध्य प्रदेश से हैं अब्दुल गफार डावर जी, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयवंती केवट, जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू जी। इसी बीच हमारे और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं। बताना चाहूँगी साथियों, भद्रावती से अब्दुल लोहेवाला, साजिदा शेख, राहिल शेख, अब्दुल्ला शेख, और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर गट्टे, संगीता गट्टे, साक्षी गट्टे, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टहल, बीपी कुलते, बिरजू परदेसी जी। बीड शहर से हैं जयश्री मैत्रे, कविता टहल, पुष्पा अग्रवाल, कमल कुलते, मंजूशी परदेसी, मीरा भिंसे जी। गोलजिन सनावत से हैं मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद इसाक, बब्बू डब्बू जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं वादा ना तोड़। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी साथियों। ये फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है गोलजन सनावत से। फिल्म का नाम है साथियों दिल से, गीत के बोल है चल छैया छैया। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद आसिम, मोहम्मद इसाक, बब्बू टप्पू और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। रायगढ़ बिहार से हैं उमा राज, शफी उमा, याकूब उमा, अजमल उमा जी, कलीम उमा जी और भी हमारे साथी जुड़ना चाह रहे हैं। खंडवा से दुर्गा कुमारी, सपना, राकेश ताई। डुमराव से है लालू बहु दिव्यान, दिव्या भारती जी, स्टार जी और महेंद्र यादव, दीप्ति यादव, यामिनी नरेंद्र यादव। परवड़ी महाराष्ट्र से हैं रुपेश संगे, महेश ब्रिगेश, प्रीतेश संगे, पूरा संगे परिवार और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। मैं नाम बताना चाहूँगी दोस्तों आप सभी को। जुड़ना चाह रहे हैं अकोट महाराष्ट्र से नितिन पाटिल, नलिनी पाटिल जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं चल छैया छैया। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी। फिल्म का नाम है, छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से ये फरमाइश आई है। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों विवाह गीत के बोल है, मिलन अभी आधा अधूरा है। फरमाइश करता है इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, आपको बताना चाहूँगी जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, माला ठाकुर, मानो शानो बब्बन मुनहो कान्हा हरिप्रिया जी। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव, अर्पणा नामदेव जी। मस्तानपुरा पुर्णा जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा चेतन, सुलोचना भगत। बागपत यूपी से हैं आसिफ अली खान, मोमिन अनास, मुस्कान सादिक अली खान, सारिक अली खान। सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोज डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलिस डिकेस्टो जी। उत्तर प्रदेश से हैं राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव, अर्पणा नामदेव जी। बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, मीना मस्किन, आशीष रजा, चेतन मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल, रचिता खुराना जी। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं, और भी श्रोता साथी हैं। महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुणाने, अर्चना ताई गुणाने, प्रेम प्रसिद्धि, हीरामन शिंदे, प्रतिभा गुणाने जी। इसी बीच हमारे साथी जुड़ रहे हैं, और भी जो जुड़ना चाह रहे हैं। बागपत यूपी से आसिफ अली खान, मोमिन अनास, सादिक अली खान, सारिक अली खान। सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोज डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलिस डिकेस्टो जी। और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं, जगमोहन सिंह प्रजापत, मनीष देवी, अर्जुन अंजलि, नितिन भगवान। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डप्पू जी। भिलाई छत्तीसगढ़ से दीपक खट्टक, प्रमिला खट्टक, चंद्रशर, सुरेंद्र से हैं सुरेंद्र डोमेंद्र, सोनाली डोमेंद्र, डोली मिनहास, प्रभा मिनहास जी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गर्मनेजा, पूनम गगेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमिता हुजा जी। वसीम महाराष्ट्र से है मास्टर विठल, सुरेश, सुषमा सुरेदे, परदे शुरू से, मायरा शुरू से जी। और भी दो जुड़ रहे हैं, इरशाद अमन अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इशरा, अजरा तबस्सुम जी। बनारस से जुड़ना चाह रहे हैं अब्दुल मजीद अंसारी, नोरीन अंसारी, मोहम्मद काफिया एफ अंसारी जी। छत्तीसगढ़ कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव, अर्पणा नामदेव जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, मिलन अभी आधा अधूरा है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, और सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

श्रोता साथियों, यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम आपकी फरमाइश में कुछ नई फरमाइश गीतों के साथ में। साथियों, तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

प्रिय श्रोताओ नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। साथियों, अब वक्त है शाम के खास कार्यक्रमों का जो आपके हर पल को बनाएगा खास, तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए आज के शाम के कार्यक्रम की रूपरेखा। साथियों, शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति शांति और सुकून से भरे सुरों के साथ दिन भर की थकान को अलविदा कहने का समय। इसी के साथ अगला कार्यक्रम होगा शाम 5:30 पर युवाओं की आवाज, जहां सपने बोलते हैं, विचार उड़ान भरते हैं और युवा अपनी बात खुलकर रखते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी कि मैं और कशिश पाराशर। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है श्रोता साथियों शाम 6 बजे कार्यक्रम सच्चा बचपन। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे बच्चों की मासूमियत, मुस्कान और बचपन की यादों से भरा प्यारा सा सफर। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है खेतीवाड़ी, इसे आप सुन पाएंगे 6:30 पर। ये कार्यक्रम किसानों के काम की बात, जमीन से जुड़ी सच्ची जानकारी और अनुभव है। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी के मैं। श्रोता साथियों, जैसे कि कार्यक्रम की रूपरेखा चल रही है तो हम अगला कार्यक्रम आपको बताते हैं। अगला कार्यक्रम शुरू होगा 7 बजे और इस कार्यक्रम का नाम है सच्चा स्वराज। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे समाज, सोच और सच्चाई से जुड़ी आवाज जो हमें जागरूक बनाती है। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम होगा हमारा स्वास्थ्य, जो कि सेहत और सम्मान की बातों के साथ होगा। इसे आप सुन पाएंगे 7:30 पर। इसे लेकर आएंगी आरजे कशिश पाराशर और हमारे रेडियो साथी मनीषा पटेल। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है सपनों की उड़ान, इसे आप सुन पाएंगे 8 बजे। तो श्रोताओं, जैसे कि कार्यक्रमों की रूपरेखा मैं आपको बता रही हूँ तो अंत में आप सुनेंगे 9:00 शामी कसले। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सुनेंगे अल्फाज जो छू जाए, एहसास जो ठहर जाए, सुकून भरी रात की शुरुआत। तो श्रोताओं, शाम की घड़ियां यूं ही नहीं गुजरती, ये वो पल है जहाँ भक्ति भी है, युवा सोच भी है, बचपन की हंसी भी है, किसान की मेहनत भी है, सच की आवाज भी है, सेहत और सम्मान की बात भी है, संगीत का जादू भी है और गजलों का सुकून भी है। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागर रेडियो। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखा है, तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनू, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े नी कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना कदम है ये अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं युवा और सामाजिक सद्भाव को लेकर। जैसा कि कशिश, हम अलग अलग रंगों से मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं, अलग अलग सुरों से मिलकर एक मधुर संगीत बनाते हैं और अलग अलग विचारों से मिलकर एक मजबूत समाज बनाते हैं।
0: जी हाँ।
1: तो साथियों, आज का हमारा विषय भी है कि युवा और सामाजिक सद्भाव, विविधता में एकता को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: हम ये बातें जरूर करेंगे, लेकिन शुरुआत में सुन लेते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।
0: जी
1: आप बने रहे श्रोता साथियों कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय से रूबरू आपको करा ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं युवा और सामाजिक सद्भाव को लेकर, यानी कि विविधता में एकता को लेकर आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि जागृति जी हम सभी जानते हैं कि भारत हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग खानपान है, पहनावा अलग है, परंपराएं अलग है और जीवन जीने के तरीके भी अलग अलग हैं साथियों। फिर भी इन सभी विविधताओं के बीच एक भावना जो है वो हमें जोड़ती है कि हम भारतीय हैं और हमारा समाज हम सबका साझा समाज है। इस विविधता को ताकत में बदलने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवा केवल समाज का वर्तमान नहीं बल्कि उसका आने वाला भविष्य भी है।
1: बिल्कुल कशिश, विविधता का अर्थ है अलग अलग होना और फिर भी साथ रहना। हमारे आसपास ही देखिए तो कोई अलग भाषा बोलता है, कोई दूसरी बोली, किसी की पसंद अलग है तो किसी की सोच अलग है
0: जी,
1: किसी की पारिवारिक परंपरा अलग है तो किसी का रहन सहन अलग है। लेकिन अलग होना गलत नहीं, वास्तव में विविधता समाज को समृद्ध बनाती है।
0: बिल्कुल,
1: अगर किसी बगीचे में केवल एक ही तरह के फूल हो तो वो सुंदर जरूर लगेगा, लेकिन अलग अलग रंगों और खुशबू वाले फूल उस बगीचे की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं।
0: जी हाँ,
1: ठीक उसी तरह हमारा समाज भी अलग अलग लोगों, संस्कृति और विचारों से मिलकर सुंदर बनता है।
0: जी हाँ जागृति जी, साथ ही अगर बात करें सामाजिक सद्भाव की तो साथियों सामाजिक सद्भाव होता है एक दूसरे के प्रति सम्मान, सहयोग, अपनापन और भाईचारे की भावना रखना। जब समाज में जागृति जी सद्भाव होता है तो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, समस्याओं का मिलकर समाधान खोजते हैं और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ भी देते हैं। दोस्तों इसके विपरीत अगर बात करें तो जब लोगों के बीच भेदभाव, नफरत, गलतफहमियां और असम्मान बढ़ने लगे तो समाज कमजोर होने लगता है। इसलिए सामाजिक सद्भाव केवल समाज की जिम्मेदारी नहीं है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है और युवाओं की भूमिका इसमें विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जागृति जी।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि युवा ऊर्जा, उत्साह, नए विचार और बदलाव की क्षमता से भरे होते हैं। और आज का युवा सोशल मीडिया से लेकर शिक्षा, रोजगार, कला, खेल और तकनीक तक हर क्षेत्र में सक्रिय है। उसके विचार और व्यवहार समाज के दूसरे लोगों को भी प्रभावित करते हैं।
0: जी हाँ।
1: हम देखते हैं कि अगर

0: युवा आपसी सम्मान, सहयोग और सकारात्मक सोच को अपनाएंगे तो इसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। युवा ये तय कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पर उन्हें नफरत फैलाने वाली बातों को आगे बढ़ाना है या सकारात्मक संदेशों को फैलाना है। वो ये तय कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को उसकी भाषा, पहनावे या पृष्ठभूमि के आधार पर जज करना है या उसके व्यक्तित्व को समझना है। यही छोटे छोटे निर्णय सामाजिक सद्भाव की बड़ी नींव बनते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, साथ ही हमारे युवा साथियों को ये भी समझना है कि विविधता में एकता केवल नारा नहीं है बल्कि हमारी ताकत है। श्रोता साथियों, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं विविधता में एकता ही हमारी पहचान है, लेकिन इस वाक्य का वास्तविक अर्थ तभी समझ में आता है जब हम दूसरों की अलग पहचान और विचारों का सम्मान करना सीखते हैं। जागृति जी, एकता का मतलब ये नहीं है कि सभी लोग एक जैसा सोचें। एकता का मतलब होता है अलग सोच रखने के बावजूद भी एक दूसरे का सम्मान करना।
0: बिल्कुल।
1: अगर दो युवाओं की किसी मुद्दे पर अलग राय है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे एक दूसरे के दुश्मन हैं। वे अपनी अपनी बात रख सकते हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं और असहमति के बावजूद भी सम्मान बनाए रख सकते हैं। और यही स्वस्थ समाज की पहचान है जागृति जी।
0: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि युवा और सामाजिक सद्भाव, विविधता में एकता को लेकर, तो ये बातें निरंतर हमारी बनी रहेंगी। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। हमारी बात चल रही थी युवा और सामाजिक सद्भाव विविधता में एकता को लेकर। तो कशिश, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं और बोलियां भी बोली जाती हैं। युवाओं को समझना होगा कि किसी की भाषा या बोली उसका मजाक उड़ाने की चीज नहीं है।
1: जी हाँ।
0: भाषा व्यक्ति की संस्कृति, इतिहास और पहचान से जुड़ी होती है।
1: बिल्कुल।
0: अगर कोई युवा अलग बोली बोलता है तो उसका मजाक बनाने की बजाय उससे उस बोली के नए शब्द सीखना ज्यादा खूबसूरत व्यवहार है। किसी की भाषा का सम्मान करना उसकी पहचान का सम्मान करना है।
1: जी हाँ। साथी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में सोशल मीडिया युवाओं के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक पोस्ट कुछ ही सेकंड में हजारों लोगों तक पहुंच सकती है, इसलिए श्रोता साथियों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। किसी समुदाय, भाषा, क्षेत्र या व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री को बिना सोचे समझे शेयर करना सामाजिक तनाव बढ़ा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए युवा साथियों को जागृत दीजिए, कोई भी जानकारी शेयर करने से पहले खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या ये जो वो कर रहे हैं वो सच है, क्या ये किसी को नुकसान पहुंचा सकती है या नहीं, क्या इससे समाज में नफरत बढ़ेगी या समझ बढ़ेगी। दोस्तों, अगर जवाब संतोषजनक नहीं है तो उसे आगे बढ़ाने से आपको बचना चाहिए और यही आपकी समझदारी होगी।
0: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हमारे युवा साथियों को हम कहना चाहेंगे कि समाज में अलग अलग विचार होना स्वाभाविक है। युवाओं को ये सीखना जरूरी है कि असहमति और दुश्मनी एक ही चीज नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: हम किसी की बात से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी उसके प्रति सम्मान रख सकते हैं। वास्तविक समझदारी यही है कि हम बहस को लड़ाई न बनने दें और अपनी बात रखने के साथ साथ दूसरे की बात सुनने की

0: आदत भी विकसित करें।
1: बिल्कुल,
0: सामाजिक सद्भाव के लिए हमेशा बड़े अभियान की जरूरत नहीं होती। एक युवा अपने स्तर पर भी शुरुआत कर सकता है। अपने पड़ोस में किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी नए व्यक्ति को अपनापन देना, किसी की भाषा या संस्कृति का सम्मान करना, भेदभाव का हिस्सा न बनना, गलत अफवाहों को आगे न बढ़ाना, दो लोगों के बीच गलत फहमी को बातचीत से दूर करना, ये सभी सामाजिक सद्भाव की दिशा में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
1: जी हाँ जागृति जी। साथ ही अगर बात करें शैक्षणिक संस्थान की, तो दोस्तों शैक्षणिक संस्थान युवाओं में केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी विकसित कर सकते हैं। जैसे कि अलग अलग संस्कृति, भाषा और परंपराओं को समझने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, संवाद, समूह गतिविधियाँ और सामुदायिक सेवा जैसे प्रयास युवाओं को एक दूसरे के करीब ला सकते हैं। जागृति जी,
0: बिल्कुल।
1: जब अलग अलग पृष्ठभूमि के साथ युवा साथ में बैठते हैं, साथ काम करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो कई गलत धारणाएं अपने आप ही खत्म होने लगती है।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि कई बार हम किसी व्यक्ति के बारे में बिना जाने ही धारणा बना लेते हैं, ये ऐसा होगा, ये लोग ऐसे होते होंगे, इसकी भाषा ऐसी है तो इसकी सोच भी ऐसी होगी।
1: बिल्कुल,
0: ऐसी धारणाएं सामाजिक दूरी पैदा करती है। श्रोता साथियों, हमारे युवा साथियों को चाहिए कि वे किसी व्यक्ति को उसकी पहचान के आधार पर नहीं बल्कि उसके व्यवहार, विचार और व्यक्तित्व के आधार पर समझने की कोशिश करें।
1: जी
0: हाँ। किसी को जानने से पहले उसके बारे में फैसला न करना ही सच्ची सामाजिक समझ है।
1: जी हाँ।
0: भारत का भविष्य हमारे युवाओं के हाथों में है। अगर युवा आपसी सम्मान, सहयोग और सद्भाव को अपनाते हैं कशिश, तो देश की सामाजिक शक्ति मजबूत होती है। देश केवल सड़कों, इमारतों और तकनीकों से मजबूत नहीं बनता, देश तब मजबूत बनता है जब उसके नागरिक एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: अगर हमारे युवा साथी समाज में जोड़ने का काम करेंगे तो वे केवल अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे बल्कि राष्ट्र निर्माण के सक्रिय भागीदार भी बनेंगे।
1: जी हाँ जागृति जी, ऐसे में हमारे युवा साथियों को कुछ संकल्प लेने की जरूरत है। जैसे कि साथियों, पहला संकल्प आप ये ले कि हम किसी भी भाषा, संस्कृति या पहचान का कभी मजाक नहीं बनाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा यह है कि हम सोशल मीडिया पर बिना सत्यापन के कोई अफवाह आगे नहीं बढ़ाएंगे। तीसरा यह साथियों कि हम अपनी असहमति को सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करेंगे। चौथा यह कि हम भेदभाव के बजाय समानता और सहयोग को महत्व देंगे। हम अपने आसपास लोगों के बीच प्रेम, सम्मान और संवाद को बढ़ाने की कोशिश करेंगे साथियों। और हम किसी व्यक्ति को केवल उसकी पहचान देखकर नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व और व्यवहार से समझने की कोशिश करेंगे।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि जागृति जी, अगर ऐसे संकल्प हमारे युवा साथी लेते हैं तो वो कई हद तक राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं।
0: जी हाँ, और हम कह सकते हैं कि आज की बातचीत से हमें समझने की जरूरत है कि विविधता हमारे बीच की दूरी नहीं बल्कि हमारी खूबसूरती है। हम अलग हो सकते हैं लेकिन अलगाव में रहना जरूरी नहीं है।
1: जी।
0: हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारी पसंद अलग हो सकती है, हमारी परंपराएं अलग हो सकती है, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के सम्मान के साथ चल सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए दोस्तों, एकता का मतलब एक जैसा होना नहीं बल्कि अलग अलग होकर भी एक दूसरे का सम्मान करना है। आज का युवा अगर नफरत के बजाय संवाद को, भेदभाव के बजाय समानता को और दूरी के बजाय सहयोग को चुनेगा तो हमारा समाज निश्चित रूप से मजबूत बनेगा।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि सामाजिक सद्भाव किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, हम सब की साझी जिम्मेदारी है।
1: जी
0: और
1: हाँ।
0: इसकी शुरुआत किसी और से नहीं, हमसे और हमारे छोटे छोटे व्यवहारों से होती है।
1: बिल्कुल,
0: इसी सकारात्मक सोच के साथ श्रोता साथियों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि मुस्कुराते रहिए और अपने समाज में सद्भाव की एक छोटी सी रोशनी जरूर जलाते रहिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी रही युवा और सामाजिक सद्भाव को लेकर, और जैसा कि ये बातें पूरी हो चुकी है और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे श्रोता साथियों को यहाँ पर एक और गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर।
0: इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काड़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, क्या आपने बच्चों को मौसम बदलते ही सर्दी जुखाम या बुखार होते दिखा है? क्या बरसात के दिनों में बच्चों को दस्त, उल्टी या मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है?
0: जी जी।
1: क्या आप जानना चाहते हैं श्रोता साथियों कि कुछ आसान सावधानियों से बच्चों को मौसमी बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है?
0: बिल्कुल।
1: तो आज का हमारा विशेष कार्यक्रम बच्चों को मौसमी बीमारियों से कैसे बचाएं उसको लेकर ही है।
0: जी हाँ।
1: बच्चे हमारे परिवार की सबसे अनमोल पूंजी होते हैं कशिश। उनका स्वस्थ रहना केवल माता पिता के लिए ही नहीं बल्कि समाज की जिम्मेदारी है। तो आइए जानते हैं कि बदलते मौसम में बच्चों की देखभाल कैसे करें और उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित कैसे रखें।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी होंगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसा कि हमारे साथी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत के साथ हम उन्हें कार्यक्रम के माध्यम से पहले मनोरंजन करवाते हैं, तो क्यों ना आज भी शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ हम करें।
1: बिल्कुल। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को मौसमी बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि अंजलि जी आपने गीत से पहले हमारे श्रोता साथियों को ये बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि जब भी मौसम में थोड़ा सा भी अगर परिवर्तन होता है तो सबसे पहले बीमार हमारे बच्चे ही पड़ते हैं, क्योंकि श्रोता साथियों बचपन जो है वो जीवन का सबसे कोमल और संवेदनशील समय होता है।
1: जी जी,
0: इस उम्र में बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं हो पाती है,

0: इसलिए मौसम बदलते ही वे जल्दी बीमार पड़ सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि कभी सर्दी खांसी हो जाती है तो कभी बुखार आ जाता है बच्चों को, कभी दस्त तो कभी त्वचा संबंधित समस्याएं बच्चों को परेशान करने लगती है।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, विशेषकर हम बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में और सर्दी के मौसम में बच्चों को संक्रमित होते हुए देखते हैं। लेकिन इन सभी बातों में अच्छी बात ये है दोस्तों कि थोड़ी सी सावधानी, संतुलित आहार, स्वच्छता और सही देखभाल के माध्यम से हम अपने बच्चों को कई मौसमी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो आइए श्रोता साथियों, जानते हैं कि बच्चों को मौसमी बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है।
1: जी हाँ, श्रोता साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि मौसमी बीमारियां वे बीमारियां हैं जो मौसम में परिवर्तन होने पर अधिक फैलती हैं। बच्चों में सामान्यतः हम देखते हैं कशिश, सर्दी, जुखाम, वायरल बुखार, खांसी, दस्त, उल्टी, डेंगू मलेरिया, त्वचा संक्रमण, आंखों का संक्रमण, एलर्जी और सांस संबंधित समस्याएं फैलती हैं। इन बीमारियों का मुख्य कारण संक्रमण, गंदगी, दूषित पानी, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता और मौसम के अनुसार उचित देखभाल का अभाव होता है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कशिश कार्यक्रम के माध्यम से कि बच्चों को बीमारियों से बचाने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है स्वच्छता।
0: जी जी
1: जी हाँ श्रोता साथियों, बच्चों को भोजन से पहले और सोच के बाद साबुन से हाथ धोने की आदत डालें, नाखून नियमित रूप से काटें, घर और आसपास का वातावरण साफ रखें, पीने का जो पानी है वो हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रखें, बच्चों के खिलौनों की समय समय पर सफाई करें, खुले में रखे भोजन से बच्चों को दूर रखें, क्योंकि स्वच्छता न केवल बीमारी को रोकती है बल्कि बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। अब यही साथियों को अगर बताएं कि पौष्टिक भोजन बच्चों के लिए किस प्रकार से सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हो सकता है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर होती है।
1: जी जी,
0: ऐसे में साथियों, बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाने में संतुलित भोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के भोजन में हम हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, दालें, अंकुरित अनाज, दूध और दुग्ध से बने उत्पाद, सूखे मेवे, मोटे अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार और रागी, ये शामिल कर सकते हैं।
1: जी जी,
0: साथ ही श्रोता साथियों, जंक फूड, अधिक तली भुनी चीजें और बाजार के खुले जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उनसे हमारे बच्चों को हमें दूर रखना है।
1: बिल्कुल,
0: पौष्टिक भोजन जो है वो बच्चों को अंदर से मजबूत बनाता है अंजलि जी, साथ ही संक्रमण से लड़ने की क्षमता भी बच्चों में बढ़ाता है।
1: जी हाँ, यही कशिश अब बात आती है कि अक्सर माता पिता मौसम के बदलाव को नजरअंदाज कर देते हैं जिससे बच्चे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। जैसे कि अगर गर्मियों का मौसम है तो हमें बच्चों को हल्के सूती कपड़े पहनाने चाहिए, पर्याप्त पानी पिलाना चाहिए, तेज धूप में बाहर जाने से बचाना चाहिए, और अगर बरसात का मौसम हो तो बच्चों के जो भीगे कपड़े होते हैं उन्हें हमें तुरंत बदलना है।
0: जी हाँ,
1: साफ और सूखे कपड़े पहनाने हैं, मच्छरों से सुरक्षा करनी है, और सर्दियों का मौसम होता है तो उसमें हमें बच्चों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनाने हैं, सिर, कान और पैरों को ढककर रखना है, और सुबह शाम की ठंडी हवा से बचाने की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि अंजलि जी, हमारी बातें हमारे श्रोता साथियों से बहुत अच्छी चल रही है, और हम जान रहे हैं कि किस प्रकार से मौसमी बीमारियों से हम अपने बच्चों को बचाएं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें आगे भी ऐसे ही चलती रहेंगी, लेकिन अभी क्यों ना यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि किस तरीके से हमें बच्चों को मौसमी बीमारियों से बचाने की जरूरत है, मौसमी बीमारियों से क्या होता है, विशेष सावधानी हमें क्या रखनी है, पौष्टिक भोजन किस तरीके से कशिश सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन सकता है, साथ ही हमने जाना कि मौसम के अनुसार कपड़ों का चयन और बच्चों का ध्यान रखने की हमें जरूरत है।
1: बिल्कुल।
0: यही बात करें टीकाकरण के महत्व की, तो श्रोता साथियों, टीकाकरण बच्चों को कई गंभीर बीमारियों से बचाता है। और माता पिता को चाहिए कि बच्चों का समय पर टीकाकरण करवाएं, टीकाकरण कार्ड सुरक्षित रखें, किसी भी टीके की खुराक न छूटने दें। टीके बच्चों के स्वास्थ्य की मजबूत नींव तैयार करते हैं।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ बरसात के मौसम में डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए घर के आसपास पानी जमा न होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, बच्चों को पूरे कपड़े पहनाएं, कूलर और पानी की टंकियों की नियमित सफाई करें। इसी के साथ एक छोटी सी लापरवाही श्रोता साथियों बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए स्वस्थ शरीर के लिए बच्चों के लिए पर्याप्त नींद बेहतर आवश्यक है।
1: जी
0: छोटे
1: हाँ,
0: बच्चों को उम्र के अनुसार पूरी नींद मिलनी चाहिए। बच्चों को मोबाइल और टीवी से दूर रखकर खेल कूद के लिए प्रेरित करना है। योग और हल्की शारीरिक गतिविधियां भी जरूरी है, क्योंकि कशिश अच्छी नींद और नियमित गतिविधियां शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो ये तो आपने बात करी कि हमारे बच्चों को मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए हम क्या सावधानी बरत सकते हैं और कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है।
0: बिल्कुल।
1: यही अगर साथियों बात करें कि बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, जैसे कि यदि आपके बच्चे में कुछ लक्षण दिखाई दे तो श्रोता साथियों उन पर आप तुरंत ध्यान दें। जैसे कि बच्चे को लगातार बुखार बना रहता है, खांसी या सांस लेने में परेशानी है, बार बार दस्त या उल्टी बनी रहती है, अत्यधिक कमजोरी है बच्चों में, और भूख न लगना भी एक कह सकते हैं अंजलि जी लक्षण हो सकता है मौसमी बीमारियों की शुरुआत का।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे में साथियों समय पर चिकित्सीय सलाह लेने से बीमारी गंभीर होने से बच सकती है। अगर अंजलि जी हम ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में विशेष सावधानियों को लेकर बात करें तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वागड़ क्षेत्र सहित ग्रामीण इलाकों में बच्चों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पूरे समुदाय की होती है।
0: जी हाँ।
1: ऐसे में आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों से नियमित संपर्क बनाकर रखें साथियों। बच्चों का वजन और स्वास्थ्य जांच करवाते रहें समय समय पर, साफ पानी और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित आप करें, और गांव में स्वच्छता अभियान और जन जागरूकता गतिविधियों में भी आप बच्चों के साथ भाग ले सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि अंजलि जी, जब पूरा समुदाय जागरूक होता है तब बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनता है।
0: जी हाँ। यही श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगे कि बच्चे केवल हमारे परिवार की ही नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं।
1: जी हाँ।
0: उनका स्वस्थ रहना हमारे आने वाले कल की मजबूती का आधार है। मौसम बदलना प्रकृति का नियम है, लेकिन सही जानकारी और समय पर सावधानी अपनाकर हम बच्चों को कई बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: स्वच्छता, पौष्टिक भोजन, समय पर टीकाकरण, पर्याप्त नींद और प्यार भरी देखभाल बच्चों के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा की ढाल है। हम सभी को मिलकर यह संकल्प लेना होगा कि अपने घर, आंगन और गांव के हर बच्चे के स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि स्वस्थ बच्चा ही स्वस्थ समाज और उज्जवल भविष्य की पहचान है। क्योंकि श्रोता साथियों, किसी भी समाज की असली पहचान उनके बच्चों की मुस्कान, उनके स्वास्थ्य और उनके सुरक्षित भविष्य से होती है।
1: जी जी।
0: जब कशिश बच्चे स्वस्थ होते हैं तभी वे खुलकर सीखते हैं, खेलते हैं, सपने देखते हैं और आगे चलकर समाज के जिम्मेदार नागरिक बनते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए बच्चों की देखभाल केवल माता पिता की ही नहीं बल्कि पूरे समुदाय का दायित्व है। घर, विद्यालय, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र और गांव, प्रत्येक व्यक्ति यदि बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे तो मौसमी बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है।
1: जी हाँ अंजलि जी। साथ ही हमारे श्रोता साथियों से हम ये भी कहना चाहेंगे कि दोस्तों आज के समय में जानकारी की कमी नहीं है, आवश्यकता है तो सिर्फ सही जानकारी को अपनाने की और उसे व्यवहार में लाने की।
0: बिल्कुल
1: अंजलि जी। कई बार छोटी छोटी सावधानियां जैसे कि साफ पानी पीना, साफ पानी का उपयोग करना, हाथ धोने की आदत, समय पर डॉक्टर की सलाह और पौष्टिक भोजन के साथ साथ स्वच्छ वातावरण बच्चों को कई परेशानियों से बचा सकता है।
0: जी हाँ।
1: साथियों बीमारी का इलाज जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बीमारी को होने से रोका जाए। यही समझ अंजलि जी एक स्वस्थ और जागरूक समाज की पहचान मानी जाती है। ऐसे में दोस्तों हमें अपने बच्चों को केवल अच्छा जीवन ही नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन देने का संकल्प भी लेना चाहिए।
0: जी हाँ।
1: उन्हें ऐसा वातावरण दे जहाँ वे निडर होकर आगे बढ़ सके, अपनी प्रतिभा को पहचान सके और अपने सपनों को साकार कर सके। श्रोता साथियों, आज बच्चों के स्वास्थ्य पर किया गया निवेश आने वाले कल के मजबूत समृद्ध समाज की नींव बनता है।
0: बिल्कुल कशिश, तो इस तरीके से कार्यक्रम में हम ये जान पाए कि मौसमी बीमारियों से हमें हमारे बच्चों को कैसे बचाना है और किन किन विशेष बातों का माता पिता को ध्यान रखने की जरूरत है।
1: बिल्कुल,
0: आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक रुपया से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल अंजलि जी।
2: चकरक चीचा चो चकलोरम गंडो वंडो लकरक टम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई विडी पाई चिकी चकचो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकरक हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिली सिली सिली गो बगड़ दुम चकड़ दुम चिकी चकचो।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अभी ही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही कि हम अपने बच्चों को मौसमी बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं और इसमें हमें क्या सावधानी बरतनी है, ये भी हम कार्यक्रम के माध्यम से जान पाए हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये सभी बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाघधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है
4: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा
0: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर
3: हिंडो स्कूल जा आपड़े अपना भी अपना पूरा करो
4: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है
0: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा
4: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
5: थारी में पासो लावो जूनू हवाद सेहत बनेगा एकदम शानदार बाजरा ज्वार रागी ने मक्का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू बारते नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातु जोड़ो
6: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा
7: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
8: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमारा वारा हंग्र किसान भाई बोनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हामरी रहो आपणो सामुदायिक रेडियो वाघ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणे मान स्वागत कर अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की किसान भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थे ज कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो आज हमारी अब तक की बातचीत नो विषय है कि आपड़े जे किसान भाई बोन है ई जलवायु परिवर्तन में प्राकृतिक जे ऊर्जा स्रोत है एना नो महत्व हरते हमसे। किमकी आपड़े देख हा के आपड़े जे परिवर्तन थे रू है इनमें घणी एवी चीजें हैं जो जिम्मेदार हैं। तो आपड़े हरते हमस जे प्राकृतिक स्रोत है एना ने माध्यम तकी आपड़े जे आ जलवायु परिवर्तन थे रू है इन्हें थवा तकी रोकी सका। तो आज अना विषय माते अमारी अब तक की कार्यक्रम खेतीवाड़ी में घना आकानी बातें थाएंगा। पण कार्यक्रम शुरू कर इन्हें पहले आपने हमरा विदा गीत मोरे कर आपड़ी बातें। तो किसान भाई बुन आप हम्बरता रेजू आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: किसान भाई बोन गीत तो आयशु पूरू ने अण गीत बात एक वक्त फेरी आप सबनु घणे मान स्वागत करा हूं अमारे आज ने कार्यक्रम खेती वाड़ी में जिम की किसान भाई बोनो अमे अपने गीत की पहले विषय बता दी तू तू के आज अमे बात करवा वारा हूं के आ जलवायु परिवर्तन में अपने जे प्राकृतिक स्रोत है एणा नो हूं महत्व है तो अणा विषय माते जानकारी अलवा बल्ले आज अपने स्टूडियो में पधार्या है श्रीमान प्रमोद जी रोकड़िया साहब तो सप्ते की पहले अपने हमरी लैणा नी वाते मोरे करा अपनी वाते सर नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: वागड़ रेडियो के सभी श्रोता बंधुओं आपका बहुत बहुत नमस्कार।
0: सर, जैसा कि आप जब भी हमारे किसान भाई बहनों से कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो खेती से लेकर हमारे पर्यावरण से लेकर ढेर सारी जानकारी आप हमारे किसान भाई बहनों को देते हैं, तो आज कार्यक्रम में आज हमारी आपसे बातचीत का विषय है कि जलवायु परिवर्तन में प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत जो होते हैं उनका क्या महत्व है और हम कैसे इसके महत्व को समझ सकते हैं।
1: किसान भाइयों, जैसा अपन बात कर रहे हैं कि आज प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों के बारे में अपन बात करेंगे, प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत या कैसे है उसको अपारंपरिकत जो ऊर्जा स्रोत है
0: जी जी,
1: तो उनके बारे में कि वो कौन कौन से होते हैं और उसके लिए अपना क्या महत्व है ऊर्जा का जो
0: जी जी।
1: तो पहले तो ये देखेंगे अपन पारंपरिक क्या है
0: जी, बिल्कुल सर,
1: है ना, और अपारंपरिक क्या है। पारंपरिक तो अपन जैसे कह रहे हैं ऊर्जा में जैसे हम कहते हैं लाइट है
0: जी जी,
1: तो ऊर्जा लाइट बनती है तो उसके कई तरह से बनती है जिसमें कि वो कोयले का खर्च होता है और कंबरसम होता है, ईंधन का जलाव होता है और जलवायु का नुकसान होता है
0: जी, बिल्कुल सर।
1: तो ऐसे स्रोतों का पता करना कि जिसमें जलवायु का कम से कम नुकसान हो या बिल्कुल नुकसान ना हो और हमारी ऊर्जा भी पैदा हो जाए
0: जी, बिल्कुल,
1: यानी लाइट भी पैदा हो जाए और कोई पर्यावरण को नुकसान ना हो
0: जी, बिल्कुल।
1: तो पर्यावरण क्योंकि अपन कहते हैं जलवायु से संबंधित है, तो जलवायु को अगर बचाव करना है तो हम ऐसे ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करें जिसमें कि जो अपना पर्यावरण है उसका बिल्कुल भी बिगाड़ना
0: जी, बिल्कुल।
1: तो इस तरह के ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर हमारी जो दैनिक आवश्यकता है, खेती की आवश्यकता है और हमारे जो फसल उत्पादन के लिए, जल के लिए, पानी सिंचाई के लिए, इनकी जो उत्पादन उस करने की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए जो अपने स्रोत उपयोग कर रहे हैं तो उसके बारे में आज अपन बात कर रहे हैं। और अभी अपन देखते हैं कि भाई इनके क्या फायदे होते हैं
0: जी, बिल्कुल।
1: परंपरागत अभी अपन बात कर रहे हैं तो ये क्या है कि अपन जैसे प्रकृति में जो बिल्कुल मुफ्त मिलते हैं के जैसे अपन बात करें लाइट की
0: जी,
1: तो सोलर लाइट, सोलर यानी सूर्य का प्रकाश, इसके कोई पैसे देने नहीं पड़ते अपने को
0: जी, बिल्कुल।
1: ये तो हमेशा अपने सूरज से मिलता ही है। अगर सूरज प्रकाश के देखेंगे तो साल के अंदर 300 दिन सूरज का उगता है
0: जी, बिल्कुल,
1: और 300 दिन तक सूर्य का प्रकाश हमें प्राप्त होता है
0: जी, बिल्कुल।
1: तो अगर उस सूर्य के प्रकाश को हम प्राप्त करके ऊर्जा में इसको परिवर्तित करें तो वो हम फायदा ले सकते हैं
0: जी हाँ।
1: फिर दूसरा इसका फायदा ये होता है कि हमारे जो प्रदूषण की समस्या है जैसे अपन कहते हैं पॉल्यूशन, प्रदूषण जिससे कि कई बार हमारे वातावरण में भी विकार होता है, जलवायु का परिवर्तन का कारण भी है, हमारे जो शारीरिक जो बिगाड़ होते हैं वो भी प्रदूषण के कारण होते हैं, जैसे धूल मिट्टी और जो जहरीली वायु होती है, जो हमारे गैसेस होती है या जो हमारे रसायन तत्व हैं, इनकी वजह से कुछ प्रदूषण होता है जो हमारे शरीर को भी विकार करता है और साथ साथ हमारे जो वातावरण को भी विकार करता है। वातावरण को बिगाड़ने से हमारी फसलों में, जो हमारे मौसम के परिवर्तन, ये सारे कारण बन जाते हैं इस प्रदूषण की वजह से
0: जी, बिल्कुल।
1: तो ये जो प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है ये प्रदूषण का जो समस्या है उसको कमी करते हैं
0: जी,
1: मतलब क्योंकि ये जो हमारे क्योंकि स्थानीय वातावरण से संबंधित होते हैं तो उसमें प्रदूषण बिल्कुल लगभग नहीं होता
0: जी, बिल्कुल।
1: और तीसरी जो बात अपन कहते हैं कि भाई इसमें क्या होगा कि जो महंगी ऊर्जा है, अभी अपन जैसे लाइट की बात करते हैं तो लाइट से हमारा बिजली जो आती है हमारे बिजली घर से आती है और बिजली घर से आकर हम हमारे घर की जो लाइटें और जो रेडियो टीवी और जो उसका भी उपयोग करते हैं, साथ में हमारे खेती की जो सिंचाई के लिए मोटर चलाना और ये पंप वगैरह चलाना और वो सब का उपयोग करते हैं
0: जी जी।
1: लेकिन जो बिजली बनती कहाँ से, तो बिजली बनने के लिए तो हमें कोयले को लाना पड़ता है
0: जी, बिल्कुल,
1: कोयले से बनती है, पानी से बनती है। तो इस तरह से जो बिजली कोयले से बन रही है ना, थर्मल बिजली जैसे अपन कहते हैं ना
0: जी,
1: तो कोयले का जलाना और तो कोयले से बिजली प्राप्त करना, कोयले को उपयोग करना, कोयला हमारे यहाँ होता नहीं तो उसके लिए हमें कोयले की खदानों से उसको मंगवाना, तो इसमें पूरा जो हमारा जो ऊर्जा को बनाने का काम है वो
0: महंगा हो जाता है जी, बिल्कुल।
1: तो इस महंगे ऊर्जा से बचाव के लिए हमें अपना जो प्राकृतिक स्थानीय स्रोत है उसका उपयोग करते हुए बनाए जाते
0: जी जी।
1: और इस तरह से जितने भी हमारे स्थानीय स्रोत है तो इनको उपयोग करके जो भी हमारी ऊर्जा की खपत, जो हमारी आवश्यकता है उसकी उपयोग कर ले, तो वो हमें कहते हैं कि ये अपरंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है उनका उपयोग करके हमारे

0: होता नहीं और कोयले को अपन मंगाना पड़ता है जो खदानों से निकलता है
1: जी जी।
0: उसको लाना, पहले तो निकालना खदानों को, खदानों का दोहन करना, उसका बाद में वहां से ट्रेनों द्वारा या जो भी हमारे परिवहन के साधन है उससे लाना और फिर यहाँ पर ऊर्जा बनाना। तो ये और उसमें हमारा जो ऊर्जा बनाने के साथ में जो वातावरण का बिगाड़, प्रदूषण होना, क्योंकि वो जलेगा कोयला
1: जी जी।
0: तो वातावरण में जो गर्मी और उससे होकर हमारा जो स्थानीय जो वातावरण बिगड़ेगा और जलवायु परिवर्तन में वो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है
1: जी बिल्कुल।
0: तो इसके मुकाबले जब हम देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन से ऊर्जा बनाए तो कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं
1: जी बिल्कुल।
0: तो जैसा अपन पहले ही बात की, एक सोलर ऊर्जा यानी सूर्य ऊर्जा
1: जी बिल्कुल,
0: है ना। तो सोलर की ऊर्जा से अपन बनाते हैं, जैसे अपन कई बार देखते हैं कि सोलर की ऊर्जा के जगह जगह प्लांट लगे हुए हैं, आजकल तो बहुत चलन में आ रहा है कि छतों के ऊपर लगाया जाए सोलर प्लेट लगाई जाए। तो इस तरह की एक सोलर ऊर्जा होती है, एक होती है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जैसे अपन देखते हैं पवन चक्कियां, अपन बचपन में पढ़ते भी थे, और पवन चक्कियां जो होती है वो पवन ऊर्जा बनाने का काम करती है। इसमें क्या है कि हवा जो होती है, हवा जो चल रही बह रही है तो उसका एक गति होती है, उसका एक वेग होता है। तो उस वेग का उपयोग करते हुए उसकी जो जो पंखे है वो चलाए जाते हैं, और पंखे चलाने से टर्बाइन के द्वारा जो है वो ऊर्जा का निर्माण कहते हैं। तो जो उसको कहते हैं हम पवन ऊर्जा। अब क्योंकि पवन जो है यानी हवा है उसका तो कोई लागत नहीं लगती
1: जी बिल्कुल,
0: ये तो प्रकृति में है, इसके तो कोई खर्चा नहीं आता। जैसे अपन सूरज की बात करें, सूरज पूरे साल के अंदर 300 दिन चमक रहा है
1: जी जी,
0: और उसका उपयोग वो सूरज कभी मना नहीं करता कि मेरे से क्या ऊर्जा ले रहे हो
1: जी बिल्कुल सर।
0: और ना उसकी लागत लगती है, ना उसमें कोई हमारा बिगाड़ होता है
1: जी जी।
0: तो इस तरह सूरज की है, इसी तरह से पवन की है। पवन का भी जैसे अपन बताया कि पवन जो गति चल रही है उससे हम चक्के लगा कर उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं
1: जी बिल्कुल।
0: इसी तरह से एक बायोगैस होती है, बायोगैस जानते ना अपन, बायोगैस जैसे हमारे जितने भी वातावरण में या हमारी खेती के जितने भी चाहे गोबर है, चाहे हमारे जो लकड़ियों के वेस्ट है, या हमारा जो खरपतवार के जो बचा हुआ जो पौधे के तत्व हैं, या कुछ भी ऐसे जो वेस्टेज हैं
1: जी जी।
0: जिनका उपयोग विशेष नहीं है लेकिन वो प्रकृति के संसाधन है, तो उनका उपयोग करके हम बायोगैस का निर्माण करते हैं, और बायोगैस का निर्माण करके वो भी हमारी एक ऊर्जा का एक स्रोत बनता है
1: जी बिल्कुल।
0: उससे भी हम कब किसी तरह से कई तरह से ईंधन का और हमारे जो दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए पंप चलाना वगैरह, लाइट बनाना, ये सब काम बायोगैस से भी कर सकते हैं
1: जी जी।
0: और एक उन्नत चूल्हा होता है, उन्नत चूल्हा जैसे हम जब जो चूल्हे का काम करते हैं घरों में, तो वो भी एक अपरंपरिक जो ऊर्जा स्रोत का एक साधन होता है, क्योंकि उसमें हमारा जो वो जिसको उन्नत चूल्हा या कहते हैं निर्धूम चूल्हा, निर्धूम चूल्हा ऐसा होता है कि जिसमें इस तरह का चूल्हा होता है जिसमें धुआं नहीं निकलता, क्योंकि जो महिलाएं होती है वो अगर जब खाना बनाती है तो उसमें धुआं निकलता है और वो भी वातावरण का बिगाड़ करता है
1: जी बिल्कुल। क्योंकि
0: हम बात जलवायु परिवर्तन की भी कर रहे हैं और ऊर्जा की भी बात कर रहे हैं, तो हम इस चूल्हे को भी हम लेते हैं कि चूल्हे से ऐसी धुआं रहित चूल्हा हो, निर्धूम चूल्हा हो, जिसमें कि कोई वातावरण में बिगाड़ ना हो, और जब वातावरण में बिगाड़ नहीं होगा तो जलवायु परिवर्तन का कोई कारण नहीं बनेगा
1: जी बिल्कुल।
0: तो इस तरह से जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो विभिन्न हमारे जो है वो ऊर्जा बनाते हैं। तो इस जैसे पवन ऊर्जा भी बता दिया अपन ने, बायोगैस का भी बता दिया। बायोगैस में भी क्या किया जाता है कि सब जो अपना गोबर है और इनको इकट्ठा करके और उसको बंद कर दिया जाता है, और उसमें उसका विघटन किया जाता है, उनका
1: जी जी।
0: जो तत्व होते हैं उसका विघटन किया जाता है, विघटन करने से जो गैस का निर्माण होता है और उस गैस के निर्माण से जो हमारी ऊर्जा बनती है, और जो उसका बाद में जो अपघटन होने के बाद में जो भी तत्व बचेगा तो वो खाद के रूप में भी काम आता है
1: जी बिल्कुल सर।
0: तो इस तरह से हमारे कई सारी चीजों का ये जितने ऊर्जा के स्रोत हैं वो कई सारे काम आते हैं। अब ये जैसे अपन सोलर ऊर्जा की बात करेंगे तो सोलर ऊर्जा से जो भी हमारी लाइट बनती है तो हमारे कई सारे जो अपने काम है, जैसे खेती बाड़ी के हमारे जो काम है, जैसे सिंचाई करना, मोटर चलाना, और हमारे जो जल का अभी अपन देखते हैं तो लाइट का उपयोग अपन दिमाग में आता है कि क्या है, तो लाइट के उपयोग के अलावा हमारा जो जल का शुद्धिकरण का काम है उसको भी हम कर सकते हैं। उसके बाद में हम जो से अपने कोल्ड स्टोरेज करते हैं, हमारे यहाँ काफी कमी है कि कोल्ड स्टोरेज नहीं है, मतलब जो शीत जो घर होते हैं जिसमें कि हम कुछ सब्जियों का और फलों का या फसलों का हम उसमें स्टोरेज करके उसका केंद्रीकरण करके और काफी समय तक उसको रख सकते हैं ताकि उसका बिगाड़ ना हो।
1: क्योंकि
0: अपन देखते हैं कि जितने भी हमारे फल है या सब्जियां हैं वो बहुत जल्दी खराब
1: हो जाते हैं जी जी।
0: अभी जैसे घरों में तो अपन कहते हैं फ्रिज में रख दिया तो उसमें शीतलन हो जाता है, उसमें ठंडा हो जाता है और उससे उसका लाइफ बढ़ जाती है
1: जी बिल्कुल।
0: तो इसमें जो उसका बिगाड़ है जब बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होते हैं तो उसमें भी हमारे अनाज और फसल और जो हमारी सब्जियों के बड़े बड़े उत्पाद हैं उनका बिगाड़ नहीं होता, तो उसके लिए भी, क्योंकि अब जब कोल्ड स्टोरेज को चलाने के लिए लाइट की उपयोगिता होती
1: जी
0: है
1: जी।
0: और लाइट की उपयोगिता जो है वो अगर हमारे सोलर से बन रही है तो हमारे लिए वो एक बिल्कुल फ्री का साधन हो जाता
1: जी
0: है, तो उसका भी हमारा उपयोग करके हम उसका बहुत बड़े काम में लिया जाता है। इसके अलावा जो अभी हमारा जैसे आजकल अपन

0: ग्रीन हाउसेस की बात करते हैं, जो हमारे बड़े बड़े जो ग्रीन हाउस नेट हाउस जिसमें कि कई तरह के स्टोरेज के लिए फव्वारा वगैरह चलाना, उसके वातावरण को मेंटेन करना, और इसके लिए भी हमें जो बिजली की आवश्यकता होती है वो हमारे सोलर लाइट से, जो सोलर ऊर्जा है
1: सूर्य ऊर्जा
0: से, उससे हमें उपयोग करके ली जाती है। और इसके अतिरिक्त तो बिजली का तो अपन उपयोग जानते हैं, जैसे अपने घरों की बिजली है, पंखे चलाना है, हमारे नल चलाना है, जो भी है हमारे जितने भी, तो उनका भी उपयोग करते हैं। तो इस तरह से जो ऐसे संसाधन जिसमें प्रकृति का ही संसाधन हो, प्रकृति में ही वापस से उसका परिवर्तन हो जाए और उसमें किसी तरह का प्रदूषण ना हो, इस तरह का जो ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके जो हम बिजली का उत्पादन करते हैं या हमारे घर के लिए या खेती के लिए जो आवश्यकता की आपूर्ति करते हैं, तो उसको हम उपयोग करते हुए जलवायु का जो परिवर्तन है उसको बिल्कुल बिगाड़ नहीं करने से बिल्कुल बचेंगे अपन, किसी तरह से उसका बिगाड़ ना हो, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा संसाधन होगा।
1: जी बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने बहुत अच्छी जानकारी के माध्यम से हमारे किसान भाई बहनों को ये बात समझा दी है कि जलवायु परिवर्तन में जो प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उन ऊर्जा स्रोतों का अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारी प्रकृति का बिगाड़ नहीं हो पाता है और साथ ही हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा बना रह सकता है। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे और हमारे किसान भाई बहनों को अपनी इतनी अच्छी जानकारी दी।
0: धन्यवाद।
1: जिम की किसान भाई बहनों, अवड़े अपने वेस में रुकड़िया जी सर जुड़ियो तक होता ने एने अपना ने घनी असल तरीका तक बता दीदू है कि हरते अपना ने जो प्राकृतिक जो ऊर्जा स्त्रोत है अपने बल्ले एना नु महत्व समझव है, ने हरते अपने भी जो खेती करा हाँ तो इनमें भी एना नु घना आका नु महत्व है। तो आशा करा हाँ कि आ सब बातें आप समझी गया होंगे, ने अभी हमें देखी रहा कि टाइम थी गयो है हमारे अणस कार्यक्रम तक सूटा पड़वा, तो हमें सूटा तो पड़ा, पर जाते पहले हामरी लायक और गीत ने मोरे पड़ा सूटा।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर एक कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है मुसीबत में घर बनेगा आर्थिक सहारे को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि अंजलि हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं तो ये विषय जो है वो भावनात्मक और व्यवहारिक दोनों ही दृष्टि से अच्छा है। यानी कि मुसीबत कभी बताकर नहीं आती, लेकिन अगर परिवार आर्थिक रूप से तैयार हो तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी लगने लगती है। श्रोताओं, घर केवल रहने की जगह नहीं बल्कि सुरक्षा, अपनापन और भविष्य की उम्मीद का केंद्र होता है।
0: जी जी,
1: इसलिए आज की छोटी छोटी आर्थिक बचत और सही योजना कल मुश्किल समय में पूरे परिवार का सहारा बन सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं मुसीबत में घर बनेगा आर्थिक सहारा। अंजलि, मुसीबत कभी दस्तक देकर नहीं आती, जैसा कि हमने पहले भी हमारे श्रोता साथियों को गीत से पहले बताया था। कभी अचानक बीमारी सामने खड़ी हो जाती है, कभी रोजगार का संकट पैदा हो जाता है, कभी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, परिवार की जमा पूंजी जो होती है वो हमें प्रभावित कर देती है।
1: जी जी।
0: कभी किसी अनपेक्षित जरूरत के सामने आर्थिक कठिनाइयां भी आ जाती है। ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हम अपने परिवार को इस मुश्किल से कैसे संभालें।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसलिए आर्थिक सुरक्षा केवल अमीर बनने का विषय नहीं है बल्कि हर परिवार की जरूरत है, क्योंकि कम आय वाला परिवार भी यदि अपनी आमदनी के अनुसार बचत करे, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखे, स्थायी संसाधनों का सही उपयोग करे और आय के नए संसाधन विकसित करे तो कठिन समय में किसी के सामने हाथ फैलाने की मजबूरी कम हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: सच्चा स्वराज केवल श्रोता साथियों राजनीतिक स्वतंत्रता का नाम नहीं है। सच्चा स्वराज तब मजबूत होता है जब व्यक्ति, परिवार और समुदाय अपने जीवन के जरूरी निर्णयों में आत्मनिर्भर बने, क्योंकि जागृति जी आर्थिक रूप से सक्षम परिवार इस स्वराज की मजबूत नींव है। इसलिए कहा जा सकता है कि मुसीबत के समय अपना घर ही पहला आर्थिक सहारा बने, यही आर्थिक स्वावलंबन ही सच्ची शुरुआत है।
0: जी अंजलि, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। कभी बीमारी, दुर्घटना, रोजगार में बदलाव, फसल खराब होना, प्राकृतिक आपदा आना या अचानक होने वाला बड़ा खर्च, किसी भी परिवार के सामने ये आ सकता है। दोस्तों, अगर परिवार के पास कोई आर्थिक तैयारी नहीं है तो छोटी सी परेशानी भी बड़ा संकट हमारे सामने बन सकती है।
1: जी जी।
0: इसके विपरीत ही अंजलि, अगर हम बात करें कि परिवार ने नियमित बचत की है और अपनी जरूरत के अनुसार आर्थिक योजना बनाई है तो संकट के समय निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि आर्थिक सुरक्षा का मतलब बहुत अधिक धन होना नहीं होता, इसका अर्थ है कि आमदनी के अनुसार जिम्मेदारी से खर्च करना, कुछ हिस्सा बचाना और भविष्य की अनिश्चित परिस्थितियों के लिए तैयार रहना।
1: बिल्कुल जागृति जी, अक्सर हम सोचते हैं कि बचत जो है वो तभी संभव है जब आमदनी बहुत अधिक हो।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोता साथियों, बचत का संबंध केवल आय से नहीं बल्कि आदत और अनुशासन से भी है। हम हर महीने अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ी राशि अलग रख सकते हैं ताकि भविष्य जो है वो हमारा सुरक्षित रहे।
0: बिल्कुल।
1: छोटी छोटी बचत मिलकर बड़ी सहायता बन सकती है। जैसे बूंद बूंद पानी मिलकर घड़ा भरता है, वैसे ही नियमित बचत धीरे धीरे आर्थिक सुरक्षा का आधार बनाती है। परिवार को यह तय करना चाहिए कि आमदनी में से कितना हिस्सा आवश्यक खर्चों में जाएगा और कितना भविष्य के लिए सुरक्षित रहा जा सकता है।
0: जी हाँ।
1: बचत को बोझ नहीं बल्कि परिवार की सुरक्षा की आदत समझना चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि, एक बात है कि जरूरत और इच्छा में अंतर होता है, यानी कि श्रोता साथियों आर्थिक परेशानी का एक कारण यह भी है कि कई बार हम जरूरत और इच्छा के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं। जो चीज हमें पसंद है वो जरूरी हो या आवश्यक नहीं। अगर परिवार खर्च करने से पहले ये सोच ले अंजलि कि क्या ये वास्तव में जरूरी है, तो अनावश्यक खर्च कम किए जा सकते हैं। दिखावे, जल्दबाजी में खरीदारी और बिना योजना के खर्च से बचना आर्थिक मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका अर्थ ये नहीं है दोस्तों कि जीवन में खुशियों पर खर्च न किया जाए, बल्कि उद्देश्य ये है कि आज की खुशी के साथ कल की जरूरत को भी ध्यान में रखा जाएगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हर परिवार को अपनी क्षमता के अनुसार आपातकालीन बचत रखने की कोशिश करनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: यह पैसा रोजमर्रा के खर्चों के लिए नहीं श्रोता साथियों, बल्कि अचानक आने वाली जरूरी परिस्थितियों के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। बीमारी, रोजगार में अस्थायी रुकावट या घर की किसी जरूरी मरम्मत जैसी परिस्थिति में यह बचत बहुत उपयोगी हो सकती है। इससे परिवार को तुरंत किसी से उधार लेने की जरूरत कम पड़ सकती है। यही आर्थिक स्वराज की भावना जागृति जी मुसीबत में सबसे पहले अपने परिवार की तैयारी में काम आती है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से मुसीबत में घर बनेगा हमारा आर्थिक सहारा, तो ये बातें निरंतर ऐसे ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना कि आर्थिक सुरक्षा क्यों जरूरी है, छोटी बचत से किस तरीके से हमें बड़ा सहारा मिल सकता है, जरूरत और इच्छा में क्या अंतर है, और इसी के साथ हमने जाना कि आपातकालीन जो निधि है वो मुसीबत के समय में कैसे सुरक्षा कवच बन सकती है। यही बात करें गांव और स्थानीय अर्थव्यवस्था की भूमिका की, तो श्रोता साथियों, सच्चा स्वराज केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि गांव और समुदाय के स्तर पर भी जरूरी है। यदि गांव में ही रोजगार और आय के अवसर बढ़े जागृति जी, तो लोगों को मजबूरी में पलायन करने की आवश्यकता कम हो सकती है। स्थानीय खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, स्थानीय उत्पाद और छोटे व्यवसाय परिवार की आय बढ़ाने में भूमिका निभा सकते हैं। गांव के संसाधनों और स्थायी कौशल का उपयोग करके आय के नए रास्ते बनाए जा सकते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, जब गांव का पैसा गांव में ही अधिक समय तक घूमता है तो स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलता है और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, तो पूरे सामुदायिक जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत बन पाती है।
1: बिल्कुल अंजलि, हम देखते हैं कि केवल एक आय के स्रोत पर निर्भर रहना कई परिवारों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। परिवार अपनी क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार अतिरिक्त आय के अवसर तलाश सकता है। खेती के साथ पशुपालन कर सकता है, छोटे व्यवसाय, हस्तकला, सिलाई, खाद्य उत्पाद, स्थानीय सेवा या अन्य कौशल आधारित कार्य आय के अतिरिक्त साधन बन सकते हैं। श्रोताओं, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आय बढ़ाने का मतलब केवल अधिक काम करना नहीं बल्कि अपने कौशल और संसाधनों का बेहतर उपयोग करना भी है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं अंजलि कि परिवार की आर्थिक मजबूती में महिलाओं की भूमिका बहुत जरूरी होती है। महिलाओं के पास अक्सर बचत, घरेलू प्रबंध, कृषि, पशुपालन, हस्तकला और अन्य कई क्षेत्रों का अनुभव होता है।
0: बिल्कुल,
1: अगर महिलाएं चाहें तो कौशल, बाजार और उचित अवसर उन्हें मिलेंगे तो वे परिवार की आय में योगदान देने के साथ साथ आर्थिक निर्णयों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। श्रोताओं, हम देखते हैं कि महिलाएं स्वयं सहायता समूह इस दिशा में सामूहिक प्रयास का उदाहरण मिला है। मिलकर बचत करना, कौशल विकसित करना और छोटे आर्थिक कार्य शुरू करना परिवार और समुदाय दोनों को मजबूत कर सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसके लिए हमें बच्चों में बचपन से ही आर्थिक समझ विकसित करने की जरूरत है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, आर्थिक स्वराज की शुरुआत अगली पीढ़ी से भी होती है। बच्चों को पैसों का महत्व समझाना जरूरी है, उन्हें यह सिखाया जा सकता है कि पैसा मेहनत से आता है, इसलिए उसका उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। बच्चों में बचत, जिम्मेदारी और जरूरत के अनुसार खर्च करने की आदत विकसित करना भविष्य के लिए उपयोगी है, इससे वे बड़े होकर आर्थिक फैसले अधिक समझदारी से ले सकेंगे।
1: बिल्कुल,
0: मुसीबत में कर्ज कभी कभी जरूरी हो सकता है, लेकिन श्रोता साथियों, बिना सोचे समझे लिया गया कर्ज परिवार पर लंबे समय तक आर्थिक दबाव डाल सकता है। किसी भी ऋण को लेने से पहले उसकी शर्तें, ब्याज, किश्त और उसे चुकाने की अपनी क्षमता को समझना आवश्यक है। जरूरत और दिखावे के बीच अंतर करना भी जरूरी है, क्योंकि आर्थिक स्वराज का अर्थ यह नहीं है कि कभी कर्ज न लेना पड़े, बल्कि इसका अर्थ है कि आर्थिक निर्णय समझदारी और जिम्मेदारी से लिए जाएं।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, हमारे घर और गांव में कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम स्वयं तैयार कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर उत्पादन और उपभोग बढ़ाने से खर्च कम करने और स्थानीय रोजगार बढ़ाने में मदद भी मिल सकती है। अगर किसान अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए प्रसंस्करण, पैकेजिंग या सामूहिक विपणन की दिशा में आगे बढ़े अंजलि, तो उनकी आर्थिक स्थिति और भी मजबूत हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसी प्रकार श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ये भी कहना चाहेंगे कि स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्यमियों के उत्पादों को प्राथमिकता देना भी आर्थिक स्वराज की भावना को मजबूत करता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि सच्चा स्वराज व्यक्ति को केवल अधिकारों का बोध नहीं कराता बल्कि जिम्मेदारियों का भी एहसास कराता है।
1: बिल्कुल,
0: आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने परिवार के फैसलों में अधिक स्वतंत्रता महसूस करता है। आर्थिक रूप से मजबूत परिवार संकट में अधिक मजबूती से खड़ा हो सकता है और आर्थिक रूप से सक्षम गांव अपने विकास के लिए बाहरी सहायता पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहता।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए सच्चे स्वराज की यात्रा में बचत, आत्मनिर्भरता, स्थानीय रोजगार, कौशल विकास, जिम्मेदार खर्च और सामुदायिक सहयोग सभी महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल, इसी के साथ मुसीबत केवल एक परिवार की समस्या नहीं होती दोस्तों, कई बार पूरा समुदाय किसी संकट से प्रभावित होता है अंजलि। ऐसे समय में सामूहिक सहयोग बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। गांव में आपसी सहयोग, स्वयं सहायता समूह, सामुदायिक संस्थाएं और स्थानीय संगठन जरूरतमंद परिवारों को सही जानकारी और उचित सहायता उपलब्ध कराने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन सबसे मजबूत व्यवस्था वही होगी श्रोताओं, जिसमें सहायता के साथ साथ परिवार को भविष्य में स्वयं मजबूत बनने का अवसर भी मिले।
0: बिल्कुल चक्रति जी, कह सकते हैं कि आर्थिक सुरक्षा कोई एक दिन बनने वाली व्यवस्था नहीं है, छोटी छोटी आदतों से बनती है। थोड़ी बचत, सोच समझ कर खर्च, सही योजना, कौशल विकास, स्थानीय संसाधनों का उपयोग और परिवार के सभी सदस्यों की भागीदारी, क्योंकि श्रोता साथियों, मुसीबत आने के बाद तैयारी शुरू करने से बेहतर है कि तैयारी आज से ही शुरू कर दी जाए, क्योंकि संकट के समय दूसरों की सहायता महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन हमारा अपना घर आर्थिक रूप से थोड़ा तैयार है तो मुश्किल का सामना करने का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। सच्चा स्वराज तभी सार्थक है श्रोता साथियों, जब हमारा परिवार मजबूत नहीं सक्षम हो, हमारा गाँव निर्भर नहीं आत्मनिर्भर हो, हमारी अर्थव्यवस्था केवल जरूरत के समय सहारा मांगने वाली नहीं जागृति जी, बल्कि संकट के समय दूसरों को भी सहारा देने वाली बने।
1: बिल्कुल अंजलि, तो हम यही कहना चाहेंगे कि बचत की छोटी सी आदत श्रोताओं आत्मनिर्भरता की बड़ी शुरुआत होती है। आज अपने घर को आर्थिक रूप से आप मजबूत बनाइए, ताकि कल मुसीबत आए तो घर टूटे नहीं, बल्कि अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा रहे। यही आर्थिक आत्मनिर्भरता है और यही सच्चे स्वराज की मजबूत नींव है।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि जागृति जी कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बातें ढेर सारी हो गई हैं, अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। श्रोता साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाल जीवन और बेहतर भविष्य से जुड़ा हुआ है। आज कार्यक्रम में बातचीत का विषय है स्वस्थ रहने के लिए नियमित शारीरिक गतिविधियों के महत्व को लेकर।
0: बिल्कुल
1: मनीषा, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि शरीर की देखभाल के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। हम देखते हैं कि सुबह से शाम तक काम, फिर मोबाइल, टीवी और बहुत सारी अन्य जिम्मेदारियों के बीच हमारा शरीर जो है वो धीरे धीरे निष्क्रिय होता जा रहा है।
0: बिल्कुल।
1: और इसका परिणाम ये होता है कि कम उम्र में ही लोग मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, जोड़ों के दर्द और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना करने लगते हैं। विश्व स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि स्वस्थ जीवन के लिए नियमित शारीरिक गतिविधियां उतनी ही आवश्यक हैं जितना कि संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय अपने शरीर को सक्रिय रखने के लिए समय निकालें तो कई बीमारियों से हम बच सकते हैं और एक ऊर्जावान जीवन जी सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी जी।
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दी।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय से तो रूबरू कराई चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं स्वस्थ रहने के लिए नियमित गतिविधियों की क्या भूमिका होती है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि स्वास्थ्य मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तभी श्रोता साथियों हम अपने दैनिक कार्यों को अच्छी तरह से कर पाते हैं और जीवन का आनंद ले पाते हैं। साथियों कहना चाहेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए केवल पौष्टिक भोजन करना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियां करना भी जरूरी है। शारीरिक गतिविधियों का अर्थ केवल श्रोता साथियों कठिन व्यायाम या जिम जाना नहीं है। पैदल चलना, दौड़ना, योग करना, साइकिल चलाना, तैरना, खेलना या घर के छोटे बड़े कार्य है वो भी अंजलि जी हम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जिससे साथियों हम देखते हैं कि हमारा शरीर है वो सक्रिय रहता है। हम देखते हैं कि आज की आधुनिक जीवन शैली में शारीरिक गतिविधियों का महत्व है वो और भी बढ़ गया है। पहले लोग अपने दैनिक कामों में अधिक चलते फिरते थे, लेकिन श्रोता साथियों आज तकनीकी और सुविधाओं के कारण हमारा जीवन काफी आनंददायक हो गया है।
1: बिल्कुल,
0: थोड़ी दूरी के लिए भी वाहन का उपयोग करना, घंटों मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना, साथ ही अंजलि जी हम देखते हैं कि लंबे समय तक बैठे रहना हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है।
1: बिल्कुल,
0: इसका सीधा प्रभाव श्रोता साथियों हम देखते हैं कि हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए नियमित शारीरिक गतिविधियां करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल मनीषा, शारीरिक गतिविधि का अर्थ केवल व्यायाम करना नहीं है। शरीर को चलाने वाली हर गतिविधि शारीरिक गतिविधि कहलाती है, जैसे कि सुबह टहलना, दौड़ लगाना, योग करना, साइकिल चलाना, खेतों में काम करना, घर की साफ सफाई करना, सीढ़ियां चढ़ना उतरना, खेल कूद में भाग लेना, नृत्य करना, ये सभी गतिविधियां शरीर को सक्रिय बनाती है और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि नियमित शारीरिक गतिविधियों का महत्व बहुत अलग है, जिससे शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने में मदद मिलती है। श्रोता साथियों, अगर नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियां मजबूत होती है, शरीर में लचीलापन पड़ता है, हड्डियां मजबूत होती है, इससे व्यक्ति अधिक समय तक सक्रिय और सक्षम बना रहता है।
0: जी हाँ,
1: इसी के साथ चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना जैसी गतिविधियां जो है वो हृदय की क्षमता को बढ़ाती है। इससे रक्त संचार बेहतर होता है और हृदय रोगों का खतरा कम होता है।
0: जी हाँ,
1: श्रोता साथियों आज हम देख रहे हैं कि मोटापा एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। शारीरिक गतिविधियों से शरीर की अतिरिक्त कैलोरी खर्च होती है, जिससे वजन नियंत्रित रहता है और मोटापे की संभावनाएं कम होती है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे कि नियमित व्यायाम शरीर में शुगर के स्तर को संतुलित रखने में मदद करता है, साथ ही रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए जब हम शारीरिक गतिविधियां करते हैं मनीषा, तो शरीर में ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो खुशी और सकारात्मकता का अनुभव कराते हैं।
0: जी
1: हाँ, इससे तनाव, चिंता, अवसाद जैसी समस्याएं कम होती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि स्वास्थ्य का अर्थ केवल रोगों से मुक्त होना नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी श्रोता साथियों उतना ही आवश्यक है। आज पढ़ाई, काम, परिवार की जिम्मेदारी और जीवन की अन्य परिस्थितियों के कारण अंजलि जी हम देखते हैं कि तनाव है वो बढ़ता जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: शारीरिक गतिविधियां मन को सक्रिय और सकारात्मक बनाए रखने में सहायता कर सकती हैं। पैदल चलने, योग करने, खेल खेलने या अपनी पसंद की कोई सक्रिय गतिविधि करने से श्रोता साथियों हमारे मन को आराम महसूस होता है।
1: जी जी,
0: खुली हवा में कुछ समय पैदल चलना और प्रकृति के बीच रहना हमारे मन को अच्छा रखता है और हमारे मन को शांति देता है।
1: जी जी,
0: इससे अंजलि जी हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में तनाव कुछ समय के लिए भूल जाता है और अपने जीवन का आनंद लेता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि आजकल बच्चे अधिक समय तक मोबाइल और टीवी देखने लगे हैं, इससे उनका शारीरिक विकास प्रभावित होता है। बच्चों को प्रतिदिन हमें खेल कूद, दौड़, रस्सी कूद, कबड्डी, खो खो और अन्य खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
0: जी हाँ,
1: खेल कूद से बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं, एकाग्रता बढ़ती है, आत्मविश्वास विकसित होता है, इसी के साथ अनुशासन की भावना आती है और टीम भावना विकसित होती है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि महिलाओं के लिए भी शारीरिक गतिविधियों का एक अलग महत्व है। महिलाएं घर और परिवार की जिम्मेदारी में व्यस्त रहती हैं, लेकिन उन्हें भी मनीषा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। नियमित योग, तेज चाल से चलना, हल्के व्यायाम महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है। इससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, हड्डियां मजबूत होती है, तनाव कम रहता है, गर्भावस्था और प्रसव के बाद स्वास्थ्य बेहतर रहता है और बढ़ती उम्र में होने वाली समस्याओं का खतरा भी कम होता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं, तो ये बातें हमारी आगे भी हमारे साथियों से ऐसे ही जारी रहेंगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य की ओर रुख करते हैं। आशा करते हैं कि जो बातचीत कार्यक्रम के माध्यम से चल रही है वो आपको अवश्य पसंद आ रही होगी। श्रोता साथियों, अब यही बात करें बुजुर्गों की तो मनीषा, बढ़ती उम्र के साथ शरीर को सक्रिय रखना और भी आवश्यक हो जाता है।
1: जी हाँ,
0: बुजुर्गों को अपनी क्षमता के अनुसार नियमित रूप से टहलना, योग और हल्के व्यायाम करने चाहिए। इससे जोड़ों में जकड़न कम होती है, संतुलन बना रहता है, गिरने का खतरा कम होता है, मानसिक सक्रियता बनी रहती है, जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है।
1: जी हाँ,
0: कहना चाहेंगे कि ग्रामीण जीवन में पहले लोग जो है वो खेतों में काम करते थे, पैदल चलते थे, प्राकृतिक रूप से सक्रिय रहते थे, लेकिन अब मशीनें और सुविधाओं के बढ़ते उपयोग से शारीरिक श्रम कम हो गया है। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने दैनिक जीवन में कुछ समय व्यायाम और सक्रिय गतिविधियों के लिए समय निकालें। गांव में लोग जो हैं वो सुबह सामुदायिक योग कर सकते हैं, खेल प्रतियोगिता आयोजित कर सकते हैं, पैदल चलने की आदत विकसित कर सकते हैं, बच्चों को खेल कूद के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। श्रोता साथियों, स्वस्थ जीवन के लिए कुछ सरल नियम है जो हमें बनाने होंगे, जैसे कि प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तेज चाल हम चलें, सुबह शाम योग करें, लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का प्रयोग करें, लंबे समय तक एक जगह बैठे न रहें, बच्चों के साथ खेलें, पर्याप्त पानी पिएं, संतुलित भोजन लें और पर्याप्त नींद।

0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ आज के समय में हम ज्यादातर देख रहे हैं कि मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। इसका सही उपयोग भी हमारे लिए श्रोता साथियों बहुत जरूरी है, लेकिन लगातार कई घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रहने से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य वो बिगड़ सकता है।
1: बिल्कुल,
0: लंबे समय तक बैठे रहने से शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है, इसलिए श्रोता साथियों पढ़ाई करते समय या काम करते समय हमें छोटे छोटे ब्रेक लेने हैं। उसमें हमें चलना फिरना है, लोगों से बातें करनी है, हमारी जो भी छोटी मोटी गतिविधियां हैं वो हमें करनी है, जिससे अंजलि जी हम देखते हैं कि हमारा पढ़ाई में और अन्य कार्य है उनमें भी मन लगता है और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी बेहतर रहता है। खासकर श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि बच्चों और युवाओं को स्क्रीन के साथ साथ खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए भी पर्याप्त समय निकालना चाहिए।
1: जी हाँ बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। इसलिए हम कह सकते हैं कार्यक्रम के माध्यम से कि कई लोग सोचते हैं कि केवल जिम जाने से ही स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ये पूरी तरह सही नहीं है। नियमित चलना, योग करना, खेतों में काम करना या घर के काम करना भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जरूरी यह है कि शरीर रोज सक्रिय रहे। श्रोता साथियों, स्वस्थ जीवन किसी दवा के देन नहीं बल्कि हमारी अच्छी आदतों का परिणाम है। नियमित शारीरिक गतिविधियाँ हमें केवल बीमारियों से नहीं बचाती है बल्कि जीवन में उत्साह, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा भी भरती है। स्वस्थ शरीर ही हमारे सपनों को पूरा करने का सबसे बड़ा साधन है। इसलिए आज ही संकल्प लें कि हम अपने दिन का कुछ समय शारीरिक गतिविधियों के लिए अवश्य निकालेंगे, चाहे वह सुबह की सैर हो, योग हो, खेलकूद हो या कोई अन्य सक्रिय कार्य। हर कदम हमें बेहतर स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। इसलिए स्वयं स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें और एक स्वस्थ, जागरूक और सशक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान अवश्य दें।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से स्वस्थ रहने के लिए हमारे जीवन में शारीरिक गतिविधियां वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं।
1: बिल्कुल,
0: और अब हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपनी राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर हाजिर होते हैं तो बात करते हैं एक नए विषय को लेकर। तो आज भी कार्यक्रम सपनों की उड़ान के माध्यम से हम बात करेंगे दोस्तों उन सपनों की जो हमारी आंखों में ही नहीं बल्कि हमारे दिल में भी बसे होते हैं। साथियों, आपने सुना ही होगा कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि जिंदगी एक सीधी सड़क नहीं है, कभी रास्ते आसान होते हैं तो कभी अचानक कोई मोड़ आ जाता है। कई बार साथियों, हम जिस रास्ते पर उम्मीद से चलते हैं कुछ दूर जाकर लगता है कि शायद हमने गलत रास्ता चुन लिया, कोई फैसला गलत हो सकता है, कोई अवसर हाथ से निकल जाता है और किसी काम में सफलता हमें मिलती है या फिर बनाई हुई हमारी योजना दोस्तों अचानक बदल जाती है। ये सारी जो चीजें हैं वो कई बार हमारे साथ होती है श्रोता साथियों, और हमें ऐसा लगता है कि हमने गलत रास्ता चुन लिया है और अब हमें असफलता ही मिलेगी, सफलता हमें नहीं मिलेगी और हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, उस समय हमारे मन में सिर्फ एक सवाल रहता है और वो है कि क्या सच में मैंने गलत फैसला ले लिया। लेकिन आज का जो हमारा विषय है श्रोता साथियों, वो इसी सोच को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करेगा। जी हाँ साथियों, हम बात करेंगे गलत मोड़ हमेशा गलत मंजिल नहीं देता। तो इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाने का भी कार्यक्रम का दस्तूर है, तो आइए साथियों पहले मनोरंजन करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं और स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले बातचीत की शुरुआत हो चुकी है और बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि गलत मोड़ हमेशा गलत मंजिल नहीं देता, इस विषय को लेकर। श्रोता साथियों, ये जो विषय है वो आज हमारी सोच को बदल देगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जिंदगी में कुछ मोड़ हमेशा मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं होते, बल्कि हमें उस इंसान में बदलने के लिए होते हैं जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के योग्य बन सके। यानी कि साथियों, कई बार असफलता हमें सफलता के और करीब लेकर जाती है। कई बार हमारे द्वारा लिए गए कुछ गलत फैसले श्रोता साथियों हमें आगे के सही फैसलों के लिए तैयार करती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है साथियों कि हर गलत फैसला जिंदगी की हार नहीं होता। हम देखते हैं कि युवावस्था में हम कई फैसले लेते हैं, पढ़ाई से जुड़े हुए, करियर से जुड़े हुए, नौकरी, दोस्ती या फिर हमारे हुनर और भविष्य को लेकर। कभी श्रोता साथियों हमारा फैसला सही साबित होता है तो कभी हम पीछे मुड़कर सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। लेकिन किसी फैसले का मनचाहा परिणाम न मिलना साथियों ये

साबित नहीं करता कि आपकी पूरी जिंदगी गलत दिशा में चली गई है। कई बार हमें अपने फैसलों से ये पता चलता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। और श्रोता साथियों, आपको बताऊं तो ये समझ भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जब आपको ये पता चलता है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही नहीं है, तो आप धीरे धीरे उस रास्ते की ओर बढ़ने लगते हैं जो वास्तव में आपके लिए बेहतर होता है। साथियों, इसलिए आप हमेशा ये बात ध्यान में रखें कि हर गलत फैसला जिंदगी की हार नहीं होता। कई बार साथियों, गलत फैसले हमें सही फैसले लेने के लिए मजबूर करते हैं। इसी के साथ आपको बताऊं तो रास्ता बदलना और हार मान लेना दो अलग अलग बातें होती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कई युवा साथी ऐसा सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपना लक्ष्य या रास्ता बदल लिया तो इसका मतलब है कि वे असफल हो गए हैं। लेकिन युवा साथियों, ऐसा वास्तव में नहीं होता। कभी कभी रास्ता बदलना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी होती है। मान लीजिए कि किसी युवा ने एक क्षेत्र को अपना करियर बनाने का फैसला लिया है। उसने मेहनत उसमें बहुत सारी की, लेकिन कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी रुचि और क्षमता किसी दूसरे क्षेत्र में ज्यादा है। अब श्रोता साथियों, अगर वह अपनी गलती समझकर दिशा बदलता है तो ये उसकी हार नहीं होगी, बल्कि ये खुद को बेहतर तरीके से समझने की शुरुआत होगी। साथियों, किसी ने सही कहा है कि मंजिल वही हो ये जरूरी नहीं है, जरूरी तो ये है कि यात्रा आपको आगे ले जा रही है या नहीं। तो इस तरीके से दोस्तों, जैसा कि कार्यक्रम में मेरी आपसे बातें बहुत अच्छी चल रही है और हम बात कर रहे हैं कि गलत मोड़ हमेशा गलत मंजिल हमें नहीं देता है, तो ये बातें मेरी आगे आपसे और भी जारी रहेंगी ऐसे ही। लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवाऊं। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा गीत। आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और सुनते रहिएगा आपका अपना वागड़ रेडियो 90.8 FM।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करती हूँ हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों बातें हम ढेर सारी कर रहे थे गीत से पहले भी, और हमने जाना था कि हर गलत फैसला जिंदगी की हार नहीं होता। साथ ही हम ये भी जान पाए थे कि रास्ता बदलना और हार मान लेना दो अलग अलग बातें होती हैं, और उन दोनों बातों की श्रोता साथियों अलग अलग महत्वता होती है। यहीं अगर बात बताऊं तो कुछ गलत मोड़ हमें खुद से भी मिलाते हैं। हम अक्सर श्रोता साथियों मंजिल की चिंता में ये भूल जाते हैं कि रास्ते हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। कभी असफलता हमें धैर्य सिखाती है, कभी रिजेक्शन हमें अपनी कमियां पहचानने का अवसर देता है, तो कभी श्रोता साथियों किसी का अवसर छूट जाना हमें नए अवसर तलाशना सिखाता है, और कभी कोई गलत निर्णय हमें ये समझा देता है कि मुझे वास्तव में जिंदगी में चाहिए क्या। इसलिए श्रोता साथियों हर मुश्किल अनुभव को सिर्फ नुकसान के रूप में आप मत देखिए, बल्कि उसे मिलने वाली सीख को भी आपको देखना चाहिए। हम फिल्मों और कहानियों में अक्सर देखते हैं श्रोता साथियों कि किसी व्यक्ति ने लक्ष्य बनाया और लगातार मेहनत की, फिर सीधे सफलता हासिल कर ली। लेकिन असली जिंदगी ऐसी नहीं होती दोस्तों। किसी की यात्रा में कई बार रुकावट आती है, किसी को दिशा बदलनी पड़ती है, किसी को दोबारा शुरुआत करनी पड़ती है साथियों, तो किसी को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। अगर आपकी जिंदगी में अभी भी कोई चीज आपकी योजना के अनुसार नहीं चल रही है, तो तुरंत ये निष्कर्ष मत निकालिए साथियों कि सब कुछ खत्म हो चुका है। हो सकता है कि आपकी कहानी अभी उस मोड़ पर हो जहां से एक नई दिशा शुरू होने वाली हो। बिल्कुल साथियों, अगर आप इस तरीके का सकारात्मक विचार अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। साथ ही दूसरों की मंजिल देखकर अपनी यात्रा को गलत भी आप मत समझा कीजिए। आज श्रोता साथियों जैसा कि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के दौर में तुलना करना बहुत आसान हो चुका है। हम किसी की नौकरी देखते हैं, किसी की सफलता देखते हैं, तो किसी का करियर देखते हैं और सोचने लगते हैं कि सब आगे निकल गए हैं तो मैं पीछे कैसे रह गया। लेकिन हमें साथ में ये भी याद रखना चाहिए कि हम किसी और के जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा देख रहे हैं। हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, हर व्यक्ति की शुरुआत अलग होती है साथियों, हर व्यक्ति की क्षमता और प्राथमिकता अलग होती है। इसलिए किसी और की यात्रा में अपनी यात्रा की कीमत तय करना बिल्कुल गलत है। आपकी गति अलग हो सकती है, लेकिन आपकी यात्रा कम महत्वपूर्ण नहीं मानी जा सकती साथियों। अगर आपको महसूस हो गया है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, तो सबसे जरूरी काम है रुक कर सोचना। साथियों आप खुद से ये पूछिए कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ और अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। मेरे पिछले फैसले में मैंने क्या सीखा, आगे मुझे क्या अलग करना चाहिए, क्या मुझे अपनी दिशा बदलने की जरूरत है या नहीं। कभी कभी श्रोता साथियों जिंदगी में सबसे बहादुर कम आगे बढ़ने वाले नहीं, बल्कि यह स्वीकार करने वाले होते हैं कि यह रास्ता मेरे लिए सही नहीं है, इसलिए मैं दिशा बदल रहा हूँ। एक गलती श्रोता साथियों आपकी पूरी पहचान कभी नहीं बन सकती। अगर किसी परीक्षा में सफलता आपको नहीं मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप असफल व्यक्ति हैं। अगर किसी काम में उम्मीद के अनुसार आपको परिणाम नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। गलती को श्रोता साथियों एक घटना की तरह देखिए, अपनी पहचान की तरह नहीं। आप खुद से ये कहिए कि मुझसे गलती हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी गलती से सीख जरूर सकता हूँ। फिर श्रोता साथियों आप खुद ही ये देखेंगे कि आपकी ये जो सोच है वो आपको कई गुना आगे बढ़ा देगी। जीवन में परिस्थितियाँ बदल सकती है साथियों। जिस करियर का सपना आपने 18 साल की उम्र में देखा होगा, वो हो सकता है कि कुछ साल बाद आपकी रुचि में बदल जाए। ये बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि इंसान के साथ उसकी सोच भी विकसित होती है। जरूरी नहीं है कि सपना हमेशा बिल्कुल उसी रूप में पूरा हो जैसा आपने पहली बार सोचा था। कभी सपना अपना रूप बदलता है साथियों, लेकिन उसके पीछे की भावना वही रहती है, कुछ अच्छा करना, आगे बढ़ना और अपनी पहचान बनाना। ऐसे में कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आज आपको लगता है युवा साथियों कि आपकी जिंदगी में कोई गलत मोड़ आ गया है, तो आपको थोड़ा सा रुकना है और खुद से ये कहना है कि ये मेरी कहानी का अंत नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक मोड़ है। हो सकता है कि इस मोड़ ने आपको थोड़ा धीमा कर दिया हो, लेकिन दोस्तों इसने आपको कोई ऐसी सीख दी है जो आगे आपकी बहुत मदद करेगी। इसलिए अपने बीते हुए फैसले को लेकर खुद को लगातार दोष देने के बजाय उनसे आप सीखिए। बीता हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन उससे मिलने वाली सीख आपके आने वाले समय को जरूर बदल सकती है। एक छोटी सी बात आप हमेशा याद रखिए साथियों, अगर सड़क चलते हमें पता चले कि रास्ता गलत है, तो क्या हम उसी रास्ते पर सिर्फ इसलिए चलते रहेंगे क्योंकि हमने कुछ दूरी तय कर ली है? हम दिशा बदलेंगे साथियों। ठीक उसी तरह
जिंदगी में भी अगर आपको महसूस होता है कि कोई दिशा आपके लिए सही नहीं है, तो बदलाव से डरिए मत। कभी कभी पीछे हटना भी आगे बढ़ने की एक तैयारी होती है। तो युवा साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से बस इतना याद रखिए कि हर गलत मोड़ आपकी मंजिल छीनने नहीं आता, कुछ मोड़ आपको आपकी असली मंजिल दिखाने भी आते हैं। अगर जिंदगी में कोई फैसला उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा साथियों, तो खुद को खत्म समझने की जरूरत नहीं है। रुकिए, सोचिए और फिर सीखिए, और साथ ही जरूरत पड़े तो अपने दिशा बदल दीजिए, क्योंकि जिंदगी की खूबसूरती यही है कि हमें हर मोड़ पर एक नई शुरुआत का अवसर मिल सकता है। और शायद आपकी जिंदगी का आज का मुश्किल मोड़ ही आपकी कल की सफलता बनेगा। तो चलिए साथियों, सीखते रहिए, बदलते रहिए और अपने सपनों को उड़ान देते रहिए। इन्हीं बातों के साथ और इन्हीं उम्मीदों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। जाने से पहले दोस्तों, आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और पहले से गीत के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं साथियों, हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो साथियों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का